वंदे मातरम सुप्रभात। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूँ आप सभी का रेडियो दोस्त सैकत चैटर्जी। आप सभी का दिन मंगलमय हो, आप सभी स्वस्थ रहें।

सानंद रहें। इसी मंगल कामना के साथ आपका स्वागत है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में। आज है दिन सोमवार, अंग्रेजी सन ईस्वी 2026 की मई माह की 25 तारीख, तदनुसार शक संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की 4 तारीख। अभी हमारी स्टूडियो की घड़ी में 5:58 होने को है। प्रारंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: आइए दोस्तों जुड़ते हैं अपने दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं हिंदी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में भावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।

0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
1: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी

हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी समाचार। आइए दोस्तों, फिर से एक बार जुड़ते हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर और बात करते हैं खेत खलिहानों की, किसान भाइयों की। सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें। विषय है कीटनाशी छिड़काव में सावधानियां। संकलन एवं वाचन स्वर रेडियो साथी प्रतिमा वर्मा का है।
1: नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम खेती की बातें में आज बातें कीटनाशकों के प्रयोग में सावधानियों की। किसान भाइयों, कीटनाशकों के खेतों में प्रयोग करते समय कुछ खास बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जी हाँ किसान भाइयों, फसलों की सुरक्षा के लिए कीटनाशकों के छिड़काव के समय अगर सावधानी ना बरती गई तो किसानों की जान तक जा सकती है। ऐसे में किसान कुछ सावधानी बरतकर बचाव कर सकते हैं। जरा सी असावधानी खतरनाक साबित हो सकती है। कीटनाशक रासायनिक और विषैले होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कीटनाशक का प्रयोग करते समय यह देख लेना चाहिए कि उपकरण में लीकेज तो नहीं है। कभी भी कीटनाशक उपकरण पर मुंह लगाकर घोल खींचने का प्रयास ना करें। तरल कीटनाशकों को सावधानी पूर्वक उपकरण में डालना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि यह शरीर के किसी अंग में ना जाए। अगर ऐसा होता है तो तुरंत साफ पानी से कई बार धोना चाहिए। कीटनाशकों के छिड़काव के लिए उपयुक्त समय सुबह या सायंकाल होता है। इनका प्रयोग करते समय यह ध्यान रखें कि आसपास हवा तेज गति से ना चल रही हो। जब आप कीटनाशक को खेत में छिड़काव करने के लिए तैयार कर रहे हो तो उसमें साफ पानी का इस्तेमाल करें। हमेशा अपने हाथ, नाक, आंखें, कान और मुंह को ढक लें। सिर को भी ढक लें। हाथों को ढकने के लिए पॉलिथीन बैग से बने दस्ताने पहने। सिर को ढकने के लिए पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल ना करें। सिर को कैप या तौली से ढकें और चेहरे को रुमाल, साफ कपड़े या मास्क से ढकें। छिड़काव का घोल तैयार करने से पहले कंटेनर के ऊपर जो लेबल लगा हो उसे पढ़ लें। उसमें घोल तैयार करने का तरीका लिखा होता है। सांद्रित कीटनाशक को खोलते समय विशेष सावधानी रखें कि वो आपके हाथ पर ना गिरे। स्प्रेयर टैंक को कभी न सूंघें। स्प्रेयर टैंक को भरते समय ध्यान रखें कि कीटनाशक जमीन पर ना फैले। स्प्रेयर तैयार करते समय खाना पीना वर्जित होता है। उपकरण लीक करने वाला या कहीं से भी खराब उपकरण को छिड़काव करने के लिए प्रयोग में ना लें। नोजल सही होनी चाहिए। कभी भी नोजल को मुंह से फूंक कर साफ ना करें। इसके लिए स्प्रे से बंधे पुराने टूथब्रश का उपयोग करें और पानी से साफ करें। घास फूस नाशक और कीटनाशक को कभी भी एक स्प्रे से छिड़काव ना करें। खाली कीटनाशक कंटेनर को किसी भी दूसरे काम में इस्तेमाल ना करें। जी हाँ किसान भाइयों, कृषि वैज्ञानिक द्वारा बताई गई या कीटनाशक के कंटेनर पर लिखी मात्रा में ही छिड़काव करें। बहुत गर्म दिन में या जिस दिन तेज हवा चल रही हो कीटनाशक का छिड़काव ना करें। हमेशा हवा के 90 डिग्री कोण पर छिड़काव करें। जब बारिश होने वाली हो तब या बारिश होने के तुरंत बाद छिड़काव ना करें। हवा के बहाव की विपरीत दिशा में छिड़काव ना करें। नोजल की ऊंचाई करीब 1.5 फुट रखें और इधर उधर ना घुमाएं। किसान भाइयों, कीटनाशक का घोल बनाते समय जिस कंटेनर या बाल्टी का इस्तेमाल करें उसे दोबारा कभी किसी घरेलू काम में उपयोग में ना लाएं। कीटनाशक के छिड़काव के बाद जानवरों या किसी भी व्यक्ति को खेत में ना जाने दें। कभी भी खाली पेट छिड़काव ना करें। कीटनाशक तैयार करते समय शरीर को जिस तरह ढका था उसी तरह उसका छिड़काव करते समय भी ढक लें। छिड़काव के बाद सारे कपड़े गर्म पानी में साबुन से धोएं और साबुन से स्नान भी कर लें। कीटनाशी का छिड़काव करने के बाद बचे हुए कीटनाशक को कभी भी किसी तालाब, कुएं या किसी भी पानी के स्रोत में ना बहाएं, बल्कि कोशिश करें कि इसे ऐसी बंजर जमीन पर फेंकें जहां किसी का आना जाना ना हो। खाली कंटेनर को किसी पत्थर से तोड़कर उसे पानी से दूर कहीं जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें। स्प्रेयर और बाल्टी को इस्तेमाल करने के बाद साबुन से 4 से 5 बार धोएं। किसान भाइयों, घर में कीटनाशक कभी भी ना रखें। इसके असली कंटेनर में ही इसे रखें और कंटेनर को ठीक से बंद करें। दूसरे कंटेनर में

0: कीटनाशक ना डालें। कीटनाशक को ऐसी जगह ना रखें जहां खाना या चारा रखा हो। पानी और सूरज की रोशनी की पहुंच से दूर रखें। कीटनाशक और घास फूस नाशक को एक साथ ना रखें। किसान भाइयों, ये हुई बातें कीटनाशकों के छिड़काव के समय बरती जाने वाली सावधानियों की। इसी के साथ कार्यक्रम से अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें। आइए अब जुड़ते हैं रामचरित मानस गान से और सुनते हैं रामचरित मानस गान की कड़ी संख्या 158।
2: एपिसोड नंबर 158, 158।

संतान के आसन्न विरह में तड़पते सिर धुनते राजा दशरथ ने पुत्र वधु को अनेक प्रकार से वनगमन से विमुख करने की चेष्टा की। संकोचवश सीता ने प्रतिवाद नहीं किया, किंतु उनका मन श्री राम के चरणों में अनुरक्त था, अतः उन्हें पति को छोड़कर घर में रहना श्रेयस्कर नहीं लगा और न ही वनगमन भयावह लगा। कैकेयी ने तमककर मुनियों के वस्त्र, माला, मेखला आदि और कमंडलु राम के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। प्रेम के वश में दुर्बल हृदय वाले राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ सकते। उनके पुण्य, यश और परलोक भले ही बिगड़ जाएं, वे तुम्हें वन जाने को भी नहीं कहेंगे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता कैकेयी की सीख श्री राम को भली लगी, किंतु राजा दशरथ को ये वचन वाण की भांति लगे और वो मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को सोच नहीं पड़ता कि वे क्या कहें। श्री राम मुनि का वेश धारण कर माता पिता के सम्मुख शीश नवाकर चल पड़े। राजमहल से निकलकर वे कुलगुरु वशिष्ठ के द्वार पर आ खड़े हुए। वहां ब्राह्मणों तथा याचकों की टोली को वर्षासन देकर उन्होंने दास दासियों को गुरु को सौंपा और हाथ जोड़कर कुलगुरु से प्रार्थना की कि वे माता पिता और पालक की भांति उनकी देख रेख करें। अयोध्या वासियों से उनकी प्रार्थना थी कि वे माता पिता को किसी भांति का कष्ट न होने दें। Thank you.

दोस्तों आप सुन रहे थे रामचरित मानस गान। आपने सुना रामचरित मानस गान की कड़ी संख्या 158। आइए दोस्तों अब जुड़ते हैं कार्यक्रम चिंतन के साथ और सुनते हैं स्वभाव। आलेख एवं वाचन स्वर रेडियो साथी स्मृति लाल का है।

जीवन क्षणभंगुर है। जीवन के हर पल में हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलता है, समय के साथ प्रकृति से भी जुड़ता है, लेकिन अगर उसका स्वभाव उसके साथ नहीं होता है तो ज़िंदगी में उसे बहुत कुछ खोना पड़ता है। और यदि उसका स्वभाव सबके साथ सम होता है तो वो बहुत कुछ पा लेता है। एक ऐसी ही बात है, घटना है, जिसे जानकर व्यक्ति अपने अंदर बदलाव ला सकता है। एक समय की बात है, किसी खेत में बहुत सारे किसान काम कर रहे थे। किसान काम तो कर रहे थे, लेकिन जिनका खेत था वो एक ज़मींदार थे। ज़मींदार के खेत में किसान को काम करते देख के दूसरे खेत के लोग बहुत आश्चर्यचकित हो जाते थे। कारण आप भी जानना चाहेंगे। हुआ ऐसा कि जो किसान या उन्हें मजदूर कहें कि खेतों में काम कर रहे थे, उनके साथ उस खेत के जमींदार भी साथ में मिलकर काम करने लगे। जब किसान काम करते करते थक गए, यानी कि मजदूर काम करते करते थक गए, तो किसान के साथ जमींदार भी साथ आकर बैठे और उनसे कहा, थोड़ी देर आराम कर लो, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा खाना खा लो, थोड़ा आराम करके फिर से करो, काम तो होता रहेगा। लेकिन हम सभी मनुष्य हैं, हम सभी को एक साथ ही रहना है। ऐसे में जैसे आपके शरीर में थकावट होती है, हमारे शरीर में भी हो जाती है। इतना सुनकर सभी मजदूर किसान बहुत आश्चर्यचकित हो गए। शांत भाव से सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। क्या कोई ऐसा मालिक भी होगा जो जीवन के हमारे इस काम के प्रति हमारे लिए सोच सकेगा? ऐसा सोचकर सभी व्यक्ति बैठ गए और पानी पिया, थोड़ा सा विश्राम किया और उसके बाद फिर काम में लग गए। ज़मींदार साहब वहाँ से उन लोगों को काम की तरीके को बताकर और काम क्या करना है इसकी जानकारी देकर घर चले गए। शाम को बगल के जो किसान थे, दूसरे खेत के मजदूर थे, उन्होंने ज़मींदार साहब से पूछा, आप तो वहाँ नहीं थे, लेकिन आपके सारे मजदूर किसान सारे काम को करते चले जा रहे थे। आपने ना उनको टोका, ना रोका, ना उनसे कुछ कहा, सिर्फ आपने उन्हें तरीका बताया और आप वहाँ से चले गए। काम तो आपका हम लोगों से पहले ख़त्म हो गया, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा सुनकर ज़मींदार साहब ने कहा, होता कुछ नहीं है, यदि आपका स्वभाव सामने वाले के स्वभाव से मिल जाए, यानी मनुष्य मनुष्य को समझ ले, उसके तकलीफ को अपना तकलीफ समझे, उसके दर्द का अपने दर्द के साथ साझा करे या उसके मनोभाव

तो काम बड़ा आसान हो जाता है। यदि हम सामने वाले को अपने बराबर समझ लेंगे तो सामने वाला प्रसन्नता के साथ सारे काम को करता चला जाएगा। हमें करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ अपने स्वभाव को थोड़ा बदलना होता है, लोगों के साथ मिलकर चलना होता है। यदि इंसान को इंसान समझेंगे तो कौन ऐसा इंसान है जो आपके साथ नहीं होगा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कह दी, क्योंकि जब हम दूसरे के दर्द और तकलीफ को समझ सकते हैं तो सामने वाला भी हमारे साथ दो कदम जरूर चलता है। तो यही शिक्षा मिलती है कि अपने स्वभाव को क्षणभंगुर जीवन में हमेशा और हमेशा ऐसा बना के रखना चाहिए जिससे सामने वाला हमेशा आपके साथ रहे, क्योंकि यही वो पूंजी है जिस पूंजी से व्यक्ति इस संसार में अपनी पहचान बना पाता है।

दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, आलेख एवं वाचन स्वर रेडियो साथी स्मृति लाल का था। आइए दोस्तों अब जुड़ते हैं भक्ति संगीत पर आधारित आकाशवाणी डाल्टनगंज का कार्यक्रम आराधना से। आराधना के तहत आइए सबसे पहले सुनते हैं तृप्ति शाक्या को।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से प्रसारित भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आइए दोस्तों, आराधना के तहत फिर से एक बार सुनते हैं तृप्ति शाकिया को।

दोस्तों आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित आकाशवाणी डाल्टनगंज का कार्यक्रम आराधना। आराधना के तहत आप सुन रहे हैं तृप्ति शाकिया को। आइए दोस्तों आराधना के तहत ही फिर से एक बार सुनते हैं तृप्ति शाकिया की आवाज में यह खूबसूरत सा भक्ति गीत।

0: की आवाज में कई भक्ति संगीत। आइए दोस्तों, आप स्वास्थ्य चर्चा की तरफ कदम बढ़ाते हैं और सुनते हैं कृत्रिम दांत और उसके देखभाल। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर विष्णुपति सिंह।
1: दोस्तों, दांतों की समस्या से हर लोगों को गुजरना पड़ता है, चाहे वो छोटे बच्चे हों या हमारे वृद्धजन हों। किसी कारण से दांत सड़ जाती है और हमें दांतों को निकालना पड़ता है, और इसके एवज में हमें नकली दांत, जिसे हम कृत्रिम दांत कहते हैं या आर्टिफिशियल टीथ कहते हैं, वो हमें लगानी पड़ती है। तो इसी संबंध में आज हम चर्चा करेंगे कि जो नकली दांत है या कृत्रिम दांत है किस तरह का होता है, उसकी देखरेख कैसे करें ताकि जो कृत्रिम दांत है उसकी उम्र लंबी हो और आपको किसी तरह की भविष्य में समस्या नहीं हो। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ आमंत्रित हैं रिम्स के सह प्राध्यापक दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विष्णुपति सिंह। डॉक्टर साहब, स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, दांतों से समस्या हर लोगों को होती है, तो हम बात करें कृत्रिम दांतों की। तो कृत्रिम दांत कितने तरह की होती है और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कृत्रिम दांत लगवाने के समय में?
2: सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो कृत्रिम दांत होते हैं या आर्टिफिशियल टीथ जिसे हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, वो मुख्यतः दो तरीके का बनाया जा सकता है। एक तो होता है फिक्स्ड दांत, जो कि आपके मुंह में बचे हुए दांतों से सपोर्ट लेकर के जो प्रोस्थेसिस बनती है और जिसे हम अपनी मर्जी से निकाल नहीं सकते हैं, वो एक फिक्स्ड तरीके की विधि हो गई और फिक्स्ड प्रोस्थेसिस उसे बोलते हैं। और दूसरे तरीके का जो दांत का रिप्लेसमेंट होता है, कृत्रिम दांत जो बनते हैं, वो होता है एक रिमूवेबल मींस, मतलब उसको बनने के बाद पहनाया तो डॉक्टर के द्वारा ही जाता है, लेकिन मरीज अपनी सुविधा के अनुसार उसे बाहर निकाल सकता है अपने मुख से और एक प्लास्टिक के बंद डब्बे में, पानी में उसे रख सकता है। फिक्स्ड में ही दो तीन ऑप्शंस और होते हैं, जो आजकल एक नया तरीका है दांतों को मुंह में फिक्स तरीके से लगाने का, उसको इम्प्लांट्स भी बोलते हैं। एक डेंटल इम्प्लांट टाइटेनियम का बना होता है, जो हड्डी के अंदर हम उसे ड्रिल करके डालते हैं और उसके ऊपर हम आर्टिफिशियल टीथ बनाते हैं, तो ये भी एक फिक्स्ड उपाय है दांतों को रिप्लेस करने का।
1: किसी साथी की एक दांत खराब हो या उसकी पूरी दांत खराब हो गई हो, तो वो कैसे देख रेख करें, क्या उपाय करें कि उसकी 32 दांत पूरी तरह से कृत्रिम रूप से लग जाए और उसकी देख रेख सही से करते रहे और उसका खान पान सही से होता रहे?
2: मुख्यतः हमें ध्यान ये देना है कि दांतों की परेशानी की जब शुरुआत हो तभी हमें सचेत हो जाना है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि शुरुआती दिनों में जब ये दर्द नहीं कर होता, दांत की दर्द से पाप परेशान नहीं होते हैं, मामूली सी कुछ दिक्कत होती है तो हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे अन्य रोगों के साथ भी करते हैं कि हम उसे बहुत सीरियसली तब लेते हैं जब हम उससे परेशान होने लगते हैं। तो जैसे पायरिया के शुरुआती लक्षण हैं कि अगर आपके मुंह से ब्रश करते टाइम खून आने लगे, या जब आप बात करते हो किसी से और आपकी सांसों में दुर्गंध आने लगे, तो ऐसी शुरुआती लक्षण हमें बताते हैं कि हम पायरिया की तरफ अग्रसित हो रहे हैं, तो हमें एक अच्छी डेंटिस्ट के पास जाके जांच करानी चाहिए और पायरिया का पूर्णतः इलाज आज संभव है। दांतों की साफ़ सफाई करने के बाद अब उसकी एडवांस सर्जरी भी होती है और ये सब करके हम दांतों को बहुत अच्छा रख सकते हैं और उसकी लाइफ को हम बढ़ा सकते हैं। हमें तो कोशिश ये करना चाहिए कि हमें कृत्रिम दांतों की आवश्यकता ही ना हो, क्योंकि कोई भी आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट, कभी भी जो नेचुरल टीथ हमें भगवान के द्वारा दिया गया है उसका रिप्लेसमेंट कभी नहीं कर सकता, वो
1: उसका मुकाबला नहीं कर सकता।
2: वो उसके बहुत नज़दीक जाता है और उसके फंक्शंस, उसके एस्थेटिक और उसके बाकी सारे चीज़ों का वो रूप ले लेता है, बट हूबहू नेचुरल टीथ जैसा कुछ हो जाए ये कभी नहीं हो सकता। तो हमें देख रेख तो बहुत अच्छे से करना चाहिए अपने नेचुरल दांतों का, और शुरुआती लक्षण दिखते ही दांतों में सड़न का, खाने का फंसना या बदबू आना, ब्रश करते टाइम खून आना, तो हमें एक उपयुक्त डेंटिस्ट के पास जा कर के इसकी सलाह मशवरा करना चाहिए इससे संबंधित, और इसकी देख रेख करके हमें इसकी लाइफ को बढ़ा लेना चाहिए
1: जी।
2: ब्रशिंग हमें सुबह और शाम दोनों टाइम करना चाहिए, ये बार बार बोला जाता है और लोगों को पता भी होता है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो रात का ब्रशिंग भी उतना ही ज़रूरी है जितना सुबह का ब्रशिंग ज़रूरी है, क्योंकि रात को अगर आप ब्रश

0: नहीं करते हैं तो क्या है, आप सो जाते हैं और लगभग 10-12 घंटे का समय आप मुंह के जो बैक्टीरिया हैं उनको देते हैं, खाने के ऊपर वो बैठते हैं, जो भी खाना दांतों में लगा हुआ है, फिर वो एसिड प्रोड्यूस करता है और फिर वो दांतों में सड़न पैदा करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम रात को ब्रश करें, दिन को तो करना आवश्यक है ही, बट रात को ब्रश करना उतना ही आवश्यक है। तो खाने के बाद जैसे थोड़ा सा कुल्ला कर लिया, क्योंकि एक अच्छी ब्रशिंग टेक्निक से ब्रश करने से निश्चित तौर पे ज़्यादा फ़ायदा होगा उसके मुकाबले जो आप अगर अच्छी ब्रशिंग टेक्निक नहीं जानते हो और उस तरीके से ब्रश करते हो।
1: डॉक्टर साहब, हम थोड़ी खर्च की बात करें, कृत्रिम दांत हम लगवाते हैं, चाहे एक हो चाहे पूरी दांत हम लगवाते हैं, तो खर्च कितना आता है और आपके यहाँ क्या व्यवस्था है इसकी?
0: मैं आपके रेडियो के माध्यम से सारे झारखंड वासियों को सूचित करना चाहूँगा कि रिम्स के प्रोस्टोरोंटिक्स विभाग में जो कृत्रिम दांत हैं वो मुफ्त में बनते हैं और रिमूवेबल दांत की सुविधा अभी उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात है जो 32 बनती है, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं किसी कारणवश जिनके मुंह में अब एक भी दांत नहीं है या 4-5 दांत बच गए हैं, वो हिलते डुलते अवस्था में हैं, उनसे वो अपने खान पान को सही ढंग से खा नहीं पा रहे हैं, तो वैसे 4-5 दांतों को निकाल करके पूरी की पूरी 32 रिम्स के प्रोस्थेटिक्स विभाग में बनती है और वो मुफ्त में बनती है। तो मैं तो चाहूँगा कि जो कोई भी लोग जिनको ज़रूरत हो 32 बनाने की तो वो रिम्स में आए, 5 अपॉइंटमेंट विजिट होता है, नकली दांत बनाने का जो 32 बनती है वो 5 अपॉइंटमेंट में बनती है और एक एक दो दो दिन के अंतराल पे हम अपॉइंटमेंट देते हैं और लगभग 15-20 दिनों में आपको कृत्रिम दांत जो 32 है वो बन के तैयार हो जाती है। तो प्राइवेट में तो बहुत इसका कॉस्ट है तो उसके डिटेल में तो मैं नहीं जाना चाहूँगा, बट ये मैं बताना चाहूँगा कि रिम्स के प्रोस्थेटिक्स विभाग में जो कृत्रिम दांत हैं रिमूवेबल प्रोस्थेसिस, या तो 32 हो या 5-7 दांत नहीं हो, 8 दांत नहीं हो, 10 दांत नहीं हो, बिल्कुल मुफ्त में बनता है और बहुत अच्छे क्वालिटी का बनता है, सक्षम डॉक्टरों के द्वारा बनाया जाता है जो विशेषज्ञ होते हैं इसी पर्टिकुलर फील्ड के, उसको हम प्रोस्थोडोंटिस्ट बोलते हैं। तो ये सुविधा तो रिम्स में अब उपलब्ध है।
1: तो दोस्तों, यदि दांतों की कोई भी समस्या हो तो चाहे आपको दांत नकली लगवानी हो, रिम्स में आप चले जाएं, बिल्कुल निशुल्क सेवा आपको दी जाएगी, एक पैसे भी नहीं लगेंगे। और यही सेवा आप यदि बाहर किसी निजी चिकित्सक के पास जाते हैं, निजी डिस्पेंसरी में जाते हैं, तो आपके बहुत सारे पैसे लगेंगे। तो इस सुविधा का लाभ उठाइए और डॉक्टर साहब मसूड़े चमकते रहे, मोती जैसे चमचम करते रहे आपके दांतें, क्या कहेंगे अपने सुनने वाले साथियों को?
0: दांत अगर आपके किसी कारण गिर गए हो तो तुरंत ही उसका रिप्लेसमेंट जरूर कराएं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता बट धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा डाइट का रिप्लेसमेंट हो जाता है। बहुत कड़े चीज़ जो आप अपने नेचुरल टीथ से खा सकते थे, अब धीरे धीरे अगर आपके मुंह के अंदर दांत कम होने लगते हैं तो आप वो अपने पसंदीदा भोजन का सेवन नहीं कर पाते हैं और इससे फिर आपका स्वास्थ्य गिरने लगता है। और चूँकि ये सब इतना धीरे धीरे हो रहा होता है कि जब तक वो आपके स्वास्थ्य को गंभीर रूप से परेशान करता है तब तक थोड़ी देर हो चुकी होती है, आपका वज़न घट जाता है और आप बहुत सारे बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि माउथ इज़ द मिरर ऑफ द होल बॉडी। कभी कभी हम मुंह के अंदर झांक के शरीर की भी बहुत सारी बीमारियों के बारे में पता लगा लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग हैं, आपको जब भी कुछ ज़रूरत हो किसी तरीके की सेवा की तो आप रिम्स में आ सकते हैं, डेंटल में, और हर तरीके की सुविधा वहाँ पे आपको उपलब्ध है।
1: तो मित्रों, यदि आपके दांत मोती जैसे चमकते हैं, स्वस्थ हैं, तो यदि दांत स्वस्थ रहेंगे तो आप खूबसूरत दिखेंगे, आपका चांद जैसा चेहरा दिखाएगा और आपका व्यक्तित्व भी उतना ही प्रभावशाली होगा। तो डॉक्टर विष्णुपति सिंह, सह प्राध्यापक रिम्स, आज आप कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आपने सुना कृत्रिम दांत और उसकी देखभाल कैसे करें। भेंटवार्ताकार थे डॉक्टर विष्णुपति सिंह, जबकि उनसे बात कर रहे थे संजीव कुमार लाल। आइए दोस्तों, अब वक्त हो चला है कि हम अपने दिल्ली केंद्र से जुड़े, जहां से हम बारी बारी से सुनेंगे संस्कृत, हिंदी व अंग्रेजी समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजाति समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने का विशेष प्रबंध किया है। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों की पूरी तरह संरक्षण करना है। नई दिल्ली में जनजाति सांस्कृतिक समागम में गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
1: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा को बधाई दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने खुद को प्रधानमंत्री मोदी का

बहुत बड़ा प्रशंसक बताया और कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर

दोस्तों आपसे कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम पलाश। पलाश के तहत आज हम आपको सुनाएंगे धर्मु नायक एवं साथियों तथा साहबुद्दीन अंसारी एवं साथियों के गाए कुछ बेमिसाल नागपुरी लोकगीत। पलाश जो कि लोकगीतों का कार्यक्रम होगा, उसके खत्म होते ही सुबह 7:45 पर हम जुड़ जाएंगे सुगम संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम स्वर सरिता से। और स्वर सरिता के तहत आज हम सुनेंगे रूप कुमार राठौर एवं सोनाली राठौर को। साथियों, लोकगीतों का एवं सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त होते ही हम फिर से एक बार जुड़ जाएंगे राजधानी से यानी कि दिल्ली से और सुनेंगे दिल्ली केंद्र से रिले समाचार प्रभात सुबह 8:00 और 8:15 पे सुनेंगे दिल्ली केंद्र से ही रिले मॉर्निंग न्यूज। और इसके बाद हम रुख करेंगे झारखंड की राजधानी रांची की ओर और सुनेंगे हमारी रांची केंद्र से रिले प्रादेशिक समाचार जिसका समय होगा 8:30। दोस्तों, रांची से वापस फिर एक बार 8:45 पे हम जुड़ जाएंगे आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से एफएम के 103 MHz पर और सुनेंगे पुराने फिल्म गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। साथियों, गीत गुंजन समाप्त होते ही सुबह 9:00 हम जुड़ेंगे कार्यक्रम जोहार पलामू से और सुबह 9:30 पे जुड़ेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग से और सुनेंगे उमंग की कड़ी संख्या 1291। सुबह 10:00 का समय वापस एक बार दिल्ली केंद्र से जुड़ने का होगा जहां से हम सुनेंगे हिंदी समाचार। सुबह 10:05 पे सुनेंगे अंग्रेजी समाचार और उसके बाद जुड़ेंगे मायानगरी यानी कि मुंबई केंद्र से जहां से हम सुनेंगे सुबह 10:10 पे विविध भारती का कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। दोस्तों, विविध भारती का कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा और सुबह 11:00 हम सुनेंगे नाट्य प्रस्तुति रंग तरंग जबकि 12:00 हम सुन पाएंगे यादों की महफिल। एक बजे का समय दिल्ली केंद्र से जुड़ने का होगा जहां से हम सुनेंगे हिंदी समाचार, 1:05 पे अंग्रेजी समाचार और 1:10 पे सुनेंगे रांची केंद्र से रिले प्रादेशिक समाचार। दोस्तों, इसी तरह से हमारा जुड़ाव लगातार शाम 5:30 तक दिल्ली रांची व मुंबई केंद्र से चलता रहेगा जहां से हम सुन पाएंगे हिंदी समाचार, अंग्रेजी समाचार, प्रादेशिक समाचार एवं मुंबई केंद्र से प्रस्तुत सुरीला सफर, दोपहर सभा, सदाबहार नगमे, सखी सहेली, सेहतनामा और छाया गीत जैसे कार्यक्रमों को। दोस्तों, शाम 5:30 पे हम फिर से एक बार वापस जुड़ेंगे आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से एफएम के 103 MHz पर जहां हम सुनेंगे हमारे रेडियो साथी से सायंकालीन सभा में प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। आइए दोस्तों, सबसे पहले पलाश के तहत सुनते हैं धर्मु नायक एवं साथियों से लोकगीत।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम पलाश। आप सुन रहे थे धर्मू नायक एवं साथियों की आवाज में कुछ लोकगीत। आइए अब सुनते हैं शहाबुद्दीन अंसारी एवं साथियों की आवाज में कुछ और लोकगीत।
1: इस

0: दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम पलाश। पलाश के तहत आपने सुना धर्मू नायक एवं साथियों को तथा साहबुद्दीन अंसारी एवं साथियों की आवाज में लोकगीत। आइए दोस्तों अब चलते हैं सुगम संगीत की ओर और सुनते हैं कार्यक्रम स्वर सरिता। आज के स्वर सरिता के हमारे कलाकार हैं रूप कुमार राठौर एवं सोनाली राठौर।
1: मेरे मालिक ने मेरे हक में ये एहसान किया, खाकी नाचीज था मैं, सो मुझे इंसान किया। मुझको शायर न कहो मीर कि साहब मैंने, दर्द गम कितने किए जमा तो दीवान किया।

सो वो पाया नहीं जाता कहीं। एक आलम जुस्तजू में जी को अपने खो गया। बेकसी मुद्दत तलक बरसा की अपनी गौर पर, जो हमारी खाक पर से होके गुजरा रो गया।

भरे रहते हैं सारे फूल ही जिसके गरीबा में, वो क्या जाने कि टुकड़े हैं जिगर के मेरे दामा में। हवाए अब्र में क्या मीर हंसता बाग में वो था, गिरी पड़ती है बिजली आज कुछ सहने गुलिस्ता में।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वर सरिता। यह कार्यक्रम सुगम संगीत पर आधारित था और आपने सुना रूप कुमार राठौर एवं सोनाली राठौर की आवाज में कुछ खूबसूरत सा सुगम संगीत। यह है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब जुड़ते हैं दिल्ली और रांची केंद्रों से, जहां से हम बारी बारी से सुनेंगे समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज।
1: मीडियम वेव 546.45 मीटर और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं, अब आप क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
2: भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम

0: सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CET स्नातक परीक्षा 2026 से स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
3: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
4: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
2: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
5: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
2: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है।

0: समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल दो दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
3: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
3: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगी क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान

0: राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हुर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हुर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले, हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमेरिका और ईरान के बीच हुर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है, फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, फालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल। प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन बीएलए ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नौतपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 46.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah says government has excluded all tribal communities from ambit of Uniform Civil Code. Petrol price hiked by 2.61 rupees per litre, while that of diesel by 2.71 rupees per litre. National Testing Agency postpones CUET UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. External Affairs Minister S. Jaishankar says India and US have strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. US President Donald Trump says India can trust on him, also says he's a big fan of Prime Minister Modi. And in IPL cricket,

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नैंसी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से करेंगी सम्मानित। मरणोपरांत दिशोम गुरु शिबू सोरेन को दी जाएगी पद्म भूषण पुरस्कार। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर अमित शाह ने किया ऐलान, जनजातीय समाज यूसीसी से रहेगा अलग। राज्य के 47 स्थानों पर आज मनाया जाएगा दामोदर महोत्सव, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार करेंगे महोत्सव की शुरुआत। राज्य में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के करीब। मौसम विभाग ने गढ़वा पलामू चतरा में हीट वेव का अलर्ट किया जारी। और 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के तीसरे दिन टूटे कई रिकॉर्ड, देव मीणा कुलदीप कुमार ने कॉमनवेल्थ के लिए किया।

0: इंडिया क्वालिफाई। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। मरणोपरांत दिशोम गुरु शिबू सोरेन को पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजाति अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: राज्य के 47 स्थानों में आज दामोदर महोत्सव मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत लोहरदगा स्थित दामोदर नदी के उद्गम स्थल चूल्हा पानी में दामोदर महोत्सव आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार इस महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से 11 जून तक राज्य के विकास योजनाओं की प्रगति और वर्तमान वित्तीय वर्ष की कार्य योजना को लेकर विभिन्न विभागों की समीक्षा करेंगे। समीक्षा बैठकों में आज जल संसाधन, पेयजल एवं वाणिज्य कर विभाग, 26 मई को स्कूली शिक्षा, महिला एवं बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग, जबकि 27 मई को ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की समीक्षा की जाएगी। बकरीद को लेकर सभी जिलों की पुलिस अलर्ट मोड में है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। इसे लेकर रामगढ़ पुलिस केंद्र में मॉक ड्रिल कराया गया। पुलिस अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करने और लोगों से भाईचारे के साथ त्यौहार मनाने की अपील की। इधर रांची में बकरीद पर्व को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ महावीर मंडल, सेंट्रल मुहर्रम कमेटी, अंजुमन इस्लामिया और अन्य सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरकार ने पिछले 11 दिनों में चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। आज से देश भर में पेट्रोल 2.61 रुपये और डीजल 2.71 रुपये महंगा कर दिया गया है। राजधानी रांची में अब पेट्रोल की कीमत 105 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं, जबकि डीजल की कीमत 100 रुपये 37 पैसे हो गए हैं। पिछले 11 दिनों में पेट्रोल की कीमतों में 7 रुपये 35 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है, जबकि डीजल की कीमत में 7 रुपये 53 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है। दुमका के मसानजोर डैम में कल शाम नौका विहार के दौरान एक पर्यटक की डूबने से मौत हो गई। मसानजोर थाना प्रभारी अवधेश कुमार के अनुसार घटना में चार पर्यटक

0: पर्यटक तैरकर सुरक्षित किनारे आ गए, जबकि एक पर्यटक गहरे पानी में डूब गया। इधर दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में कल रात स्वर्ण व्यवसायी से लूटपाट की कोशिश की गई। इस दौरान अपराधियों ने हवा में 2 राउंड फायरिंग भी की। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सिमडेगा पुलिस ने गौ तस्करी के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस उपाधीक्षक रणवीर सिंह ने बताया कि आरोपी गौवंशीय पशुओं की अवैध तस्करी में शामिल था और ओडिशा से सिमडेगा होकर पशुओं से लदे वाहनों को पार कराने का काम करता था।
1: गौवंशीय पशुओं की तस्करी का संगठित ग्रोह चला रहे थे, ओडिशा से सभी को मैनेज करते थे। उसके बाद सिमडेगा की जिम्मेदारी इन्होंने अन्य लोगों का नाम स्पष्ट किया है। उसके बाद कुछ लोगों की जिम्मेदारी खुटी के लोगों की थी। उसके बाद रांची होते हुए ये अवैध गौवंशीय पशुओं को ओडिशा भेजने का काम करते थे। अब तक इन पे ओडिशा और सिमडेगा जिला के अंतर्गत कुल 8 कांड दर्ज हैं और अन्य भी अनुसंधान जारी है।
0: राज्य भर में पड़ रही भीषण गर्मी और लू से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। राज्य के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। डाल्टनगंज राज्य का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रांची में भी पारा 39 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज गढ़वा, पलामू और चतरा जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। भीषण गर्मी और लू के कारण पिछले 3 दिनों में जमशेदपुर 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। ताज़ा मामला गोलमुरी थाना क्षेत्र के न्यू केबल टाउन बस्ती का है, जहां बिरला मंदिर के पास एक व्यक्ति अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे जांचा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के तीसरे दिन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई नए रिकॉर्ड बनाए। प्रतियोगिता में पोल वॉल्ट, लंबी कूद, ऊंची कूद और हर्डल स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ क्वालिफिकेशन हासिल कर अपनी प्रतिभा का दम दिखाया। एक रिपोर्ट।
2: महिलाओं की 10,000 मीटर रेस वॉक में हरियाणा की रवीना ने अपनी रफ्तार से सबको पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। वहीं दूसरी ओर महिलाओं के हैमर थ्रो मुकाबले में पंजाब की मनप्रीत कौर ने शानदार थ्रो फेंक कर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया है। सर्वेश अनिल कुसारे ने 2.28 मीटर की शानदार छलांग लगाई। उनके साथ ही आदर्श राम ने 2.22 मीटर की कूद लगाकर कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। एक बड़ा धमाका विश्व के पोल वॉल्ट में भी हुआ, जहां मध्य प्रदेश अकादमी के देव मीना ने 5.42 मीटर की छलांग लगाकर नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है।
3: आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य के लगभग सभी अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आज से की जाने वाली समीक्षा बैठकों की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, आज से 11 जून तक सीएम करेंगे विकास योजनाओं की समीक्षा। प्रभात खबर की सुर्खी है, राज्य के सभी हाईस्कूल होंगे प्लस टू में अपग्रेड। दैनिक जागरण और हिंदुस्तान ने राज्य में बढ़ती गर्मी के प्रकोप को सुर्खी बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से करेंगी सम्मानित। मरणोपरांत दिशोम गुरु शिबू सोरेन को दी जाएगी पद्म भूषण पुरस्कार। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर अमित शाह ने किया ऐलान, जनजातीय समाज यूसीसी से रहेगा अलग। राज्य के 47 स्थानों पर आज मनाया जाएगा दामोदर महोत्सव, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार करेंगे महोत्सव की शुरुआत। राज्य में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के करीब। मौसम विभाग ने गढ़वा, पलामू, चतरा में हीट वेव का अलर्ट किया जारी। 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन और प्रतियोगिता के तीसरे दिन टूटे कई रिकॉर्ड। देव मीणा, कुलदीप कुमार ने कॉमनवेल्थ के लिए किया क्वालिफाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉड पर एक मेल भेजा, रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डालें, और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर लिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था, मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: ये आकाशवाणी रांची है।
1: दोस्तों, आज आप सभी के लिए गीत गुंजन कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए पहली पादान पर रख रहा हूं उस गीत को, जिसे राज कपूर और नूतन की बेमिसाल अदाकारी के लिए जाना जाता है। साथ ही इसके गीतों ने उस दौर में लोगों के दिलो दिमाग पर राज करने के लिए भी जाने जाते थे। 1959 के इस फिल्म का नाम था अनाड़ी। शब्द थे शैलेंद्र के, सुर शंकर जयकिशन के, तो आवाज मुकेश चंद्र माथुर और लता मंगेशकर की।

दोस्तों, बात राज साहब की चल रही हो और नरगिस के साथ उनका जिक्र न हो तो बात अधूरी सी रह जाती है। 60 से 70 के जमाने के इस सुपर हिट जोड़ी को फिल्म के दर्शकों से जितना प्यार मिला, ये दोनों ने भी अपनी बेहतरीन अदाकारी से दर्शकों का उतना ही मनोरंजन किया। तो आइए सुनते हैं वर्ष 1956 में आई राज नरगिस की फिल्म चोरी चोरी, और सुनते हैं उस मदहोश कर देने वाले गीत को जिसे गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने। गतकार हैं हसरत जयपुरी और म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन।

दोस्तों हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के द ग्रेटेस्ट शोमैन राज कपूर का। राज साहब अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के बड़े बेटे थे। राज साहब के दो अन्य भाई थे शम्मी कपूर और शशि कपूर। ये दोनों भी अपने अपने खास स्टाइल के लिए जाने जाते थे। तो आइए अब राज कपूर के दो बेहतरीन गीतों के बाद सुनते हैं शम्मी कपूर के फिल्मों के गीतों को। इस कड़ी में जो पहला गीत सुनाने जा रहा हूं दोस्तों, उसे मैंने लिया है फिल्म दिल तेरा दीवाना से, जो 1962 में रिलीज हुई थी। इसमें शम्मी कपूर के साथ पर्दे पर दिखी थी माला सिन्हा। गीत को गाया था लता और मोहम्मद रफी ने, गतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन।

दोस्तों शम्मी साहब अपने दौर के लगभग सभी हीरोइनों के साथ सफलता पूर्वक अभिनय किया था, लेकिन शर्मिला टैगोर के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया जाता था। तो आइए इन दो खूबसूरत सितारों पर फिल्माए गए उस सुपर हिट गीत को सुनते हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस से। गीतकार है शैलेंद्र और संगीतकार फिर से एक बार शंकर जयकिशन और आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की।

दोस्तों आज का सुरीला सफर जारी है। आप जुड़े हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर और मैं हूं आपका रेडियो साथी सैकत। दोस्तों अभी तक हम राज साहब और शम्मी कपूर पर फिल्माए गए दो दो गीतों को तो सुन लिया है। अब आइए रुख करते हैं इन तीन भाइयों में सबसे छोटे शशि कपूर पर फिल्माए गए गीतों की तरफ। इसके पहले पादान पर हमने रखा है उस गीत को जिसे हमने लिया है फिल्म हसीना मान जाएगी से। फिल्म में शशि कपूर और बबीता की जोड़ी थी जबकि गायक जोड़ी में शामिल थे रफी और लता। म्यूजिक डायरेक्टर थे कल्याण जी आनंद जी और गीतकार थे अख्तर रुमानी।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत गुंजन। आइए दोस्तों अब हम चलते हैं एक और सदाबहार कार्यक्रम जोहार पलामू की तरफ।
1: जोहार पलामू।

0: श्रोताओं, जोहार पलामू कार्यक्रम का प्रस्तुति स्वर है मेरा, यानी कि आप सभी का रेडियो साथी सैकत चटर्जी का, और इसके प्रस्तुत करता है, संयोजन करता है संजीव कुमार लाल।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सैकत और ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हम हर कार्यक्रम में बात करते हैं किसी खास शख्सियत से और उनके जुबानी जानते हैं उनकी संघर्ष की कहानियों को, उनकी सफलता की कहानियों को, कैसे एक इंसान खुद को गढ़ता है और फिर समाज के सामने प्रस्तुत करता है। आज शिवनंदन त्रिपाठी जी, जो गढ़वा के अचौला गांव के रहने वाले हैं। शिवनंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार, धन्यवाद।
1: शिवनंदन जी, आपसे बातें शुरू करें इससे पहले मैं श्रोताओं को आपके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। श्रोताओं, शिवनंदन त्रिपाठी जी जो हैं, उनको इसलिए यहाँ पे आज बुलाया गया है क्योंकि हालिया अभी जो कुछ दिन पहले नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय की तृतीय दीक्षांत समारोह हुई थी, उसमें शिवनंदन जी को भूगोल शास्त्र में मास्टर इन आर्ट्स यानी कि एमए करने के लिए शानदार परफॉर्मेंस के लिए उन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा गया है, और उसी लिए इनसे बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में ये आए हैं। इन्हें ससम्मान बुलाया गया है और हम इनसे बात करेंगे। तो शिवनंदन जी, बात की शुरुआत करें तो सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे कि भूगोल ये अपने आप में एक बड़ा जटिल विषय है, अब आपने भूगोल को ही क्यों चुना बहुत सारे सब्जेक्ट में से?
2: भूगोल एक बहुत ही रुचिकर विषय है और इससे हमें अपने देशीय, अंतर्देशीय और तमाम भौगोलिक विषयों के बारे में बहुत ही डीपली जानकारी प्राप्त होती है, और इससे हमें जो दैनिक गतिविधि है और किसान हैं और ये मौसमी जानकारियाँ हो गई, इनसे भी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है। और मैं एक

0: सिखा, समझा, जाना, बूझा और फिर उन्हें मदद करने के लिए एक दिमाग में बातें आई और आपने भूगोल शास्त्र विषय को चुना। ये बहुत अच्छी बात है, हम प्रशंसा करते हैं आपकी सोच की।
1: धन्यवाद
0: जी। अच्छा शिवनंदन जी, एक बात बताइए, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हम तो ये जान गए कि आपने भूगोल क्यों चुना, लेकिन अब अपने शुरुआती दिनों के बारे में थोड़ा बताइए। आपने कहा आप किसान परिवार से आते हैं, तो कितना संघर्ष रहा यहाँ तक पहुँचने में, आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालें।
1: जी, मेरा बचपन बनारस में गुजरा, मेरा जन्म बनारस का है और उस समय सरकारी नौकरी तो इतनी आसानी से नहीं मिलती थी और उतने पद नहीं होते थे, तो हमारे पिताजी कुछ प्राइवेट फर्म में काम किया करते थे और घर पे किसानी होती थी, उसी आधार पे हम लोग का परिवार चलता था। और मेरा जो स्कूलिंग हुआ, जो मैट्रिकुलेशन हुआ, वह गढ़वा से ही हुआ। उसके बाद मैं डिप्लोमा किया जो कि धनबाद से हुआ, उसके बाद मैं इंटरमीडिएट विद साइंस किया जो कि मैं रंका, गढ़वा जिला में ही एक प्रखंड है रंका, वहाँ से मैंने किया। और उसके बाद मैंने स्नातक किया जो हमारे ज़िले में एक महाविद्यालय है, SSJSN कॉलेज, वहाँ से मैंने किया। और उसके बाद मैंने मास्टर ऑफ आर्ट्स किया जो कि SSJSN नामधारी कॉलेज से ही किया। और मैं उसी शिक्षा के आधार पे इस योग्य हुआ कि मुझे गोल्ड मेडल से सुशोभित किया गया।
0: कितने प्रतिशत अंक आए थे आपको?
1: जी, मेरे उसमें 76.5% आए थे, जिस जो कि मेरे पीछे के 3-4 वर्ष और मेरे बाद के 3-4 वर्ष के किसी भी छात्र या छात्रा का नहीं था।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फिर से एक बार बधाई स्वीकार करें शिवनंदन जी। और मैंने सुना आपने जो बता, आप जो बता रहे थे अपने बारे में, तो कई जगह शिक्षा के दौरान आप घूमे, बनारस, फिर गढ़वा, फिर धनबाद, फिर गढ़वा, कई जगह आना जाना हुआ। और आपको याद होगा प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री और लेखक UN संघ का मानना था, आप कितना भी पढ़ लिख लो, जब तक दुनिया नहीं देखोगे, जब तक घर से बाहर नहीं जाओगे, घूमोगे नहीं, लोगों से मिलोगे नहीं, आपकी शिक्षा पूरी नहीं होगी। तो ये आपने घूम घूम कर शिक्षा अर्जित किया, इसका काम निस्संदेह आपके जीवन में मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा, आने वाले दिनों में इसका अनुभव का फायदा आप उठाएंगे। शिवनंदन जी, एक बात और जानना चाहेंगे, अपने संघर्ष के बारे में थोड़ा सा बताएं आप।
1: जी सर, मेरा जीवन शुरू से ही संघर्षपूर्ण रहा, आर्थिक स्थिति हमारे परिवार की अच्छी नहीं रही और हमारा परिवार एक बड़ा परिवार था और हम लोग शुरू से ही ज्वाइंट फैमिली में रहे, और जो कि आज हम लोग वर्तमान समय में एकल परिवार होने लगे हैं, लेकिन ज्वाइंट फैमिली में हम लोग शुरू से रहे। वर्तमान समय में सभी लोग अपनी अपनी जगह पे हैं और एकल परिवार लगभग हो चुका है, लेकिन ज्वाइंट फैमिली में रहे, सभी को सभी की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना और अभिभावक के लिए बहुत बड़ी मुश्किल भड़ी घड़ी होती थी। तो उसमें मैंने प्रारंभिक शिक्षा तो पिताजी के द्वारा जो भी सपोर्ट मिला उस आधार पे की, लेकिन मैं उसके बाद शिक्षण करके अपनी शिक्षा प्राप्त किया और मैं होम ट्यूशन देता था। उसके बाद मैं उसी आधार पे जो भी मुझे आय होती थी उसी आधार पे मैं अपनी पढ़ाई करता था और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करता हूँ और फॉर्म्स भी फिलअप करता हूँ, उस आधार पे परीक्षा देता रहता हूँ, और अगर भगवान ने चाहा तो एक समय ऐसा आएगा जब मैं भी सफल हो जाऊँ।
0: जी बेशक, हमारी ओर से भी आपको ढेरों शुभकामनाएं, आप अपने जीवन में सफल हो, ऐसी दुआ करते हैं हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज परिवार की ओर से। शिवनंदन जी, बहुत अच्छा लगा आपके संघर्ष को, बातों को सुनकर। आगे आप ये बताएं, आप अभी बता रहे थे कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो किस ओर जाना है, एकेडमिक क्षेत्र को चुनेंगे या किसी और क्षेत्र को?
1: जी, मैं अभी तो मेरा मन एकेडमिक क्षेत्र की ओर ही तरफ ज्यादा जाता है, क्योंकि मैं MA भी कर चुका हूँ और मैं BEd की शिक्षा भी पूर्ण कर चुका हूँ, इसलिए मैं एकेडमिक शिक्षण की ओर ही जाना चाहूँगा। और मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि मैं आज तो जब मेहनत करता हूँ और समय नहीं मिल पाता है, इस आधार पर मैं 2-3 होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ और उसका कुछ मेहनताना लेता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं किसी पद से सुशोभित हो जाऊँ या किसी सरकारी नौकरी को पालूँ, तो उसके बाद मैं पीड़ित, दलित और पिछड़े लोगों के लिए मैं एक निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध करना चाहता हूँ, जिसमें मैं लगभग 50 से 100 के बीच छात्रों को मैं निःशुल्क पढ़ाना चाहता हूँ।
0: बहुत ही बढ़िया, बहुत ही नेक कार्य कर पाएंगे आप अगर ऐसा आप सोचते हैं, और ये सोच निस्संदेह मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में सफलीभूत होगा। और सिर्फ आप ही नहीं, आपके साथ साथ 100 बच्चों का आपने टारगेट रखा है, तो सोचिए वो 100 बच्चों का कारवां जब तैयार होगा तो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए कितना अच्छी बात, कितनी

0: बात होगी। शिवनंदन जी, एक बात आपसे पूछना चाहूंगा। जब आपके संघर्ष के दिन थे, अभी भी है, अभी भी आप संघर्ष कर रहे हैं, तो कैसे उसकी तैयारी करते थे आप? अपने लक्ष्य को कैसे स्थिर रखते हैं, खुद को कैसे मोटिवेट करते हैं आप?
1: जी सर, देखिए, मोटिवेट करने हम लोग खुद के बहुत बड़े मोटिवेटर होते हैं।
0: वाह, क्या बात है।
1: बस हमें जानना है कि हम खुद को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, और हमें हमारे भारतीय संस्कृति में महर्षि सुश्रुत हो गए और भी कई वेद ऋषियों ने हमें एक बहुत बड़ी ही कीमती चीज दी है, जिसे हम योग कहते हैं। अगर हम योग करें, ध्यान करें और खुद पर काम करें, खुद को समय दें। हम लोग आज जो वर्तमान में काफी व्यस्त चलते हैं, तो हमें खुद को सुबह में आधा घंटा एक घंटा समय देना चाहिए, और योग और ध्यान हमें खुद को मोटिवेट करने की प्रेरणा देता है, सपोर्ट देता है। प्लस हमारे समाज में कई तरह के ऐसे लोग होते हैं, कई लोग होते हैं जो हमें हमेशा निगेटिविटी प्रदान करते हैं और हमें उलाहना देते हैं, कमेंट करते हैं, तो उसको निगेटिवली ना लेकर के हम अगर पॉजिटिवली लेंगे। और अगर एक मैंने बहुत ही बचपन में एक बात सुनी थी, हमारे दादाजी ने कहा था कि अगर किसी ने आपके सामने एक लकीर खींची है, तो उस लकीर पर विवाद मत कीजिए, उस लकीर पर क्रोध मत कीजिए, और उस लकीर से भड़किए मत। आप उस लकीर के आगे एक उससे बड़ी लकीर खींचने की कोशिश कीजिए, ताकि आप उसमें उलझ कर ना अपना भविष्य संवारिए, खुद के भविष्य को संवारने का प्रयास कीजिए।
0: बहुत बढ़िया, बहुत
1: आपके लिए अच्छा होगा।
0: जी जी, बहुत बहुत अच्छा संदेश दिया शिवनंदन जी। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, आप खुद युवा हैं और आपके जैसे हजारों युवा हमारे आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से प्रसारित कार्यक्रमों को सुनते हैं, उस पे अमल करते हैं, ध्यान देते हैं। बहुत अच्छा, वो अभी जो प्रसारित होने वाला है ये कार्यक्रम आपका, तो बहुत सारे युवा सुनेंगे, और मैं युवा दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा कि शिवनंदन जी जो कह रहे हैं उन बातों को आप अपने जीवन पर उतारने का प्रयास कीजिए। और शिवनंदन जी, एक बात, जैसे आप कह रहे थे संघर्ष के दिनों में आप खुद के मोटिवेटर खुद ही थे, तो जो आप बताते थे खुद को, खुद से बातें करते होंगे, कैसे वो करते होंगे तैयार खुद को, उसके बारे में थोड़ा बताएं, मुझे बहुत रोचक लग रहा है।
1: जी सर, देखिए, मैं जब भी कभी ऐसा होता है कि हमारे अभिभावक ही हम पे टिप्पणी करने लगते हैं कि क्या कर रहे हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो,
0: हाँ, जब सफलताएं नहीं आती है तो थोड़ा सा
1: कब तक ये होगा, माँ पूछती है कि कब तक ये सब होगा, कब तुम किसी मुकाम।
0: अच्छा, माँ की बात आई, मैं बीच में रोकना चाहूंगा शिवनंदन जी, आपके पिता माता का नाम मैंने अभी तक नहीं पूछा।
1: हमारे पिताजी का शुभ नाम है श्री विद्यासागर तिवारी।
0: विद्यासागर तिवारी
1: जी जी। और मेरी माँ का नाम है श्रीमती कुसुम देवी
0: जी।
1: और मेरी माँ शिक्षित नहीं है, लेकिन वो आज तक, और जब से उनका विवाह हुआ, पहले तो कम उम्र में ही शादी हो जाती
0: जी
1: थी।
0: जी,
1: लेकिन उन्होंने पूरे परिवार की जिम्मेदारी को संभाला है, संवारा है, और वो जब भी मेरे माता पिता हमसे पूछते थे कि कब तक ये होगा, और अभी भी कई दिन ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि उन लोग अधीर हो जाते हैं और हमसे पूछते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आज के प्रतियोगी परीक्षा का क्या वातावरण है, पेपर लीक की समस्या हो गई, वैकेंसी की समस्या हो गई, रेगुलर वैकेंसीज नहीं क्लियर होती, आती भी नहीं है, तो वो सिर्फ हम समझ सकते हैं। तो वहाँ पे हमें कहीं पे मौन रहना पड़ता है, कहीं पे जवाब देना पड़ता है, और कहीं पे खुद को समझाना पड़ता है। फिर हमारा समाज जो है, हमारा समाज भी हमें उलाहना देता है, हमारा समाज भी हम पे प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है कि ये लड़का तो बस ऐसे ही घूमते रहता है, ये
0: जी जी अक्सर होता है,
1: कर नहीं रहा है, ये है वो है, और पिताजी के खर्चे पर पल रहा है, लेकिन हमारी वास्तविकता को वो नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के सामने मैं अक्सर मौन रहता हूँ, और मैं यही प्रयास करता हूँ कि एक समय ऐसा आएगा, और भगवान भी हमें वो सुदिन देगा, कि जब मैं सफल हो जाऊंगा तो ये लोग खुद ब खुद चुप हो जाएंगे।
0: बेशक बेशक बेशक, ये खामोशी आपकी हथियार है, आपकी लड़ाई की ताकत है ये खामोशी, और आप अभी खामोश रहेंगे तो आने वाला दिन में आप बोलेंगे और लाखों लोग सुनेगा। और एक शेर आप पे अर्ज करना चाहता हूँ मैं, श्रोताओं ध्यान देंगे, ये शिवनंदन त्रिपाठी जी के लिए खास तौर पे मेरे जहन में आया और मैं सुनाना चाहता हूँ कि जीतोगे तुम भी अगर इरादा करो, जी हाँ, जीतोगे तुम भी अगर इरादा करो, अपने आप से अगर आज वादा करो, और पत्थरों की तरह मजबूत बनो जिंदगानी में, यकीन खुद पर औरों से भी ज्यादा करो। और आपने यही किया है शिवनंदन जी, अपने आप पे यकीन रखा है और अपने रास्ते पे बढ़ते चले गए। अच्छा, ये तो पढ़ाई की बातें हो रही थी, संघर्ष की बातें हो रही थी, लेकिन हमेशा ऐसा थोड़ी होता है कि जीवन में संघर्ष ही करते रहो, लड़ते ही रहो, कभी कभी तो रिलैक्स करने का भी मन करता है, तो इस दौरान आपकी हॉबीज क्या क्या होती है?
1: जी सर, मेरी हॉबीज में है, मैं किताबें पढ़ना पसंद करता

0: गुड जॉब।
1: पहले तो बचपन में कॉमिक्स पढ़ा करता था, लेकिन अब कहानी
0: कॉमिक्स शिवनंदन जी मैंने भी खूब पढ़ा, वो एकदम बचपन से कितनी डांटे सुनी पिताजी से, और कभी कभी वो लाइब्रेरी चलाया करता था चार पांच दोस्त मिलकर कि तुम वो खरीदना मैं ये खरीदूंगा, वो एक शानदार दौर था कॉमिक्सों का।
1: तो उस समय मैं कॉमिक्स पढ़ा करता था और कॉमिक्स के लिए मैंने कई बार डांट भी सुनी है कि तुम्हें कुछ खाने के लिए भी कुछ मिलता है तो तुम जाकर के कॉमिक्स खरीद। और मैं उसके बाद एक नंदन पत्रिका आती
0: जी जी जी नंदन चंपक
1: जी जी जी तो नंदन पत्रिका आती थी तो मैं नंदन पत्रिका को भी जाकर अक्सर खरीद लिया करता था और उसको पढ़ा करता था। हालांकि समय के साथ ये सभी पत्रिकाएं विलुप्त हो गई और फिर अभी मैं किताबें पढ़ता।
0: एक चंदा मामा पत्रिका भी आती
1: थी। जी जी जी जी
0: बड़ी जानकारी की बातें रहती थी उसमें।
1: एक बालहंस भी
0: बालहंस जी जी
1: बालहंस भी थी। तो मैं वो किताबें पढ़ा करता हूँ, मुझे ये कार्टून बनाना पसंद है, मैं कार्टून भी बनाता हूँ।
0: वाह।
1: और अब तो अब ऐसा समय है और जैसी प्रतिस्पर्धा है बहुत ज्यादा समय तो नहीं मिलता। मैं जब बहुत ही तनाव में होता हूँ तो मैं गाना गुनगुना लिया।
0: जी जी जी योग के साथ साथ ये गाना गुनगुनाना, ये नहीं जरूरी नहीं कि आप सिंगर हो, बट गुनगुनाना ये तनाव रहित करता है आपको। तो शिवनंदन जी क्या थोड़ा हम सुन सकते हैं कैसे गुनगुनाते हैं आप?
1: जी जरूर
0: जी जी हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे आपसे।

0: शिवनंदन जी आइए, ये जो आपने गुनगुनाया इस गाने को मैं सुना देता हूँ आपको, हमारे श्रोता भी सुन लेंगे।
1: बड़े अच्छे लगते हैं
2: क्या

0: श्रोताओं आप सुन रहे थे हमारे शिवनंदन जी का पसंदीदा एक गाना जो उन्होंने गुनगुना कर भी सुनाया। और आइए अब फिर से बातचीत के दौर में चलते हैं। तो शिवनंदन जी, जैसा कि आप कह रहे थे कि स्ट्रगल, संघर्ष ये जिंदगी को मजबूत बनाता है, तो हमारे जो युवा श्रोता सुन रहे हैं उन्हें आप जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं सभी युवा श्रोताओं से ये कहना चाहूंगा कि हमारा जीवन संघर्ष और नकारात्मकता से भरा पड़ा है, लेकिन हमें इसमें खुद को खुद ही मोटिवेट करके और सकारात्मकता से खुद को भरना होगा और धीरे धीरे करके हमको हर संघर्ष को पार करना होगा और लगातार लगे रहना होगा। जैसे लोग कहते हैं और मेरा भी मानना है कि कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज में अगर हम लगातार लगे हुए हैं, एक समय ऐसा जरूर आएगा, थोड़ी देर होगी, लेकिन एक समय ऐसा जरूर आएगा कि हम सभी सफल होंगे। और नकारात्मकता को झेलना है, नकारात्मकता को खुद पे हावी नहीं होने देना है, मेरा ये।
0: जी जी, बहुत बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। और मेरा मानना है शिवनंदन जी कि ये जो नकारात्मक सकारात्मक चीजें हैं ना, ये जिंदगी के पहलू है। अगर नकारात्मक चीजें ना हो, सिर्फ सकारात्मक चीजें ही हो, तो उन सकारात्मकता की मजा नहीं है जिंदगी में। ऐसे आप अनुभव करें कि मान लीजिए आपकी जिंदगी में सिर्फ रोशनी ही रोशनी हो, तो आप रात को सोएंगे कब? अंधेरा को महसूस कैसे करेंगे? और अंधेरा है तभी तो आपकी जिंदगी में रोशनी की जरूरत है। आपको चाहत होती है कि भाई अंधेरा है, अब मुझे रोशनी चाहिए। तो ये दोनों चलते रहते हैं जीवन में, और इसे सकारात्मक तरीके से ग्रहण करना पड़ता है, जैसे कि आपने कहा विचलित नहीं होना चाहिए। तो शिवनंदन जी, आप अपने शिक्षा ग्रहण करने के दौरान कई जगह गए, बनारस से धनबाद, गढ़वा, पलामू, बहुत जगह घूमे, बहुत कई शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा लिया आपने। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि पलामू, गढ़वा, लातेहार, इस क्षेत्र की, हमारी क्षेत्र की बात करें, तो क्या स्थिति पाते हैं आप दूसरे जगह के मुकाबले शैक्षणिक परिवेश का?
1: जी, मैं लगभग 20 वर्षों से गढ़वा पलामू क्षेत्र में हूँ और यहाँ पे अध्ययन कर रहा हूँ। तो मैं जो ये यहाँ देखता हूँ, यहाँ की साक्षरता दर लगभग 66% है और यहाँ 16% ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो उच्चतर शिक्षा की तरफ ही उच्चतर शिक्षा की तरफ जा पाते हैं, बाकी लोग नहीं जाते हैं। बाकी लोग स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट कर लेते हैं, स्कूल ड्रॉप आउट कर लेते हैं। तो यहाँ की शैक्षणिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और अभी भी यहाँ पर शिक्षा अपने मुकाम को हासिल करने के लिए काफ़ी संघर्ष कर रही है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, कहीं पे आर्थिक स्थिति सही नहीं है, कहीं पे पारिवारिक स्थिति सही नहीं है, कहीं पे सामाजिक स्थिति सही नहीं है, कहीं पे ये शैक्षणिक ढांचा जो है, जो प्रशासनिक ढांचा है, वह सही नहीं है। तो कई सारे कारण हैं जो कि हमारे गढ़वा पलामू को शैक्षणिक दृष्टिकोण से पीछे ले जाते हैं।
0: जी, तो क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं?
1: जी, मैं जब नई शिक्षा नीति 2020 को, NEP 2020 को मैंने देखा और उसके क्रियान्वयन को मैं जिस हिसाब से देख पा रहा हूँ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में प्रति छात्र जो नियम है कि इतने छात्रों पे इतने शिक्षक होने चाहिए, और एक सर्व शिक्षा अभियान भी है, और भी कई सारी जो मूलभूत संरचनाओं में बदलाव किया जा रहा है, उससे मुझे उम्मीद लगती है कि आने वाले कुछ समय के बाद या भविष्य में कभी एक ऐसा समय आएगा जब लोग शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक होंगे और प्रशासनिक उनको समर्थन भी होगा, ढांचा का भी समर्थन होगा, जिससे लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और हमारे गढ़वा पलामू क्षेत्र की साक्षरता दर भी बढ़ेगी और बहुत सारे सुधार आएंगे।
0: बहुत बढ़िया, आप बातों में बता रहे थे कि आपकी माँ शिक्षित नहीं हो पाई थी उस समय की बात। वर्तमान समय में आप लड़कियों का, महिलाओं का शिक्षा को कैसे पाते हैं हमारे क्षेत्र में?
1: जी, मैं वर्तमान समय में महिलाओं की शिक्षा को उस समय की शिक्षा से बहुत ही बेहतर पाता हूँ। अगर आप इसे वर्तमान परिदृश्य में एक उदाहरण के तौर पर लें, तो जिस दिन 6 अक्टूबर 2025 को हमें नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ, उस दिन हम सभी कुल 77 छात्र छात्राएं थे, जिसमें संभवतः 51 छात्राएं थी।
0: अरे बाप रे बाप, तो बहुत ही बढ़िया है, 77 में लगभग 51 छात्राएं थी।
1: जी,
0: बहुत, शायद राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में ये कहा भी था, मुझे जहां तक याद आ रहा है।
1: जी सर, उन्होंने जिक्र किया था और कुलपति महोदय ने भी जिक्र किया था।
0: जी,
1: तो इसी से यह पता चलता है कि बालिकाएं या लड़कियां किस तरह शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह आगे बढ़ रही हैं, और अब हर एक क्षेत्र में, हर एक वर्ग में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है, और एक श्रमिक वर्ग भी यही, एक अभिभावक जो है, जो डेली बेसिस पे कमाते हैं, डेली बेसिस पे जिनकी आय है, वह भी यह विचार रखते हैं कि मेरे बच्चे बच्चे को मैं सरकारी नहीं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाऊंगा, और जो भी इसका खर्च होगा मैं उठाऊंगा। तो अभी एक ऐसा समय है कि सभी लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है, बस जरूरत यही है कि उन्हें समर्थन मिले और आर्थिक साथ ही साथ आर्थिक सपोर्ट भी मिले।
0: जी, बहुत अच्छी बातें कही आपने। अब विदा लेने का वक्त आ गया है, तो मेरे जहन में फिर से कुछ बातें आई हैं जो आपसे साझा करना चाहूंगा। शिवनंदन जी, साझा नहीं बल्कि यूं कहिए कि आप ही को समर्पित करना चाहूंगा, और साथ ही आपके जैसे जितने संघर्षशील युवा भविष्य के सपना अपने आंखों में संजोए इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन्हें भी समर्पित करना चाहूंगा। वो लाइनें ऐसी है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे। शिवनंदन जी, आप ही को कह रहा हूं मैं, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। ये आप ही को समर्पित है, युवाओं को समर्पित है। और इसी के साथ शिवनंदन, काफी अच्छी, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, बढ़िया बातचीत हुई। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार और ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी भविष्य के लिए।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।
2: दोस्तों, आप सुन रहे थे जोहार पलामू कार्यक्रम। आइए अब जुड़ते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग के साथ।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
1: जीवन में सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले मुश्किल से मिलते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का इलाज आसान नहीं है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले और श्रोताओं के नाम हैं।
1: खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे जी ने लिखा है,
2: आपका उमंग कार्यक्रम मुझे बेहद उपयोगी, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद लगता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती है, जो काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। साथ ही साथ गीत संगीत से कार्यक्रम की रोचकता बनी रहती है। आप सभी की अथक मेहनत, लगनशीलता और अनुपम प्रस्तुति को हम दिल से नमन करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण यूं ही बरकरार रहे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। गाँव गणेश धाम परसूली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धर्मंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है। सप्रेम अजीत साहेब और विमलेश मैडम जी, वंदगी जी। आगे लिखते हैं,
2: अजीत साहेब जी का कार्यक्रम आप दोनों के साथ शुरुआत होता है और बहुत शानदार रहता है। इस सप्ताह विमलेश मैडम कोई भी कार्यक्रम में नहीं आया। आप दोनों का वाणी विचार इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाता है। आप दोनों का स्नेह श्रोताओं को मिलता रहे। 30 अप्रैल 2026 को एक टोकरी मिट्टी कहानी सुनने को मिला, बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा। दिल से धन्यवाद।
1: आपको भी दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
1: और साथ ही साथ खुर्जा उत्तर

0: प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का संदेश हमें मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, संदेश लगातार भेजने के लिए आपसे निवेदन है। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे और आपके उमंग कार्यक्रम से। आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
1: इसका उत्तर है, पीसा की मीनार इटली में स्थित है। इसकी नींव नरम और दलदली मिट्टी पर बनी हुई थी। इसकी मिट्टी कम गहरी है, जब इसे और ऊंचा बनाया गया तो ये धीरे धीरे तिरछी होनी शुरू हो गई।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अधिकांश वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ने की वजह से वर्षा भी खूब होती है।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अमेजन वर्षा वन के क्षेत्र में अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
1: अमेजन क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण अक्सर अमेजन नदी अपना तटबंध बदलती रहती है, इसलिए निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि पुल कहां से कहां तक बनाया जाए।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
1: इसका उत्तर है साथियों, मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। वे छोटे पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से पोषण देते हैं।
0: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों?
1: इसका उत्तर भी बड़ा अनोखा है साथियों। मैंग्रोव वनों के पेड़ों की पत्तियां खारे पानी के नमक को छानकर निकाल देती हैं और उन्हें मीठे पानी में बदल देती हैं, जिसके कारण वहां के पेड़ खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो आप सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,
1: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
0: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: और श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है, शेर और चूहे की दोस्ती।
2: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था, अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाए। उस जाल में शेर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
2: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, कलाकार बाबला कोचर, मुइनुल हसन नियाजी और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।

दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है
1: अर्देशीर बुड़जोड़जी तारापुर। ये कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना के जांबाज कर्नल अर्देशीर बुड़जोड़जी तारापुर के जीवन और भारत पाक युद्ध के दौरान उनके अप्रतिम शौर्य और रण कौशल के प्रदर्शन की जानकारी देता है।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर।
1: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतनजीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतनजीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेनानायक थे।
1: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतनजीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
2: काल क्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
1: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
3: जवानों,
4: जी सर,
3: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
4: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
3: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
5: जी सर।
3: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
5: जी जनाब।
3: हाथ गोला हाथ में लो।
5: ले लिया जनाब।
3: अब पिन रिलीज करो।
6: फेंको,
5: फेंका जनाब।
6: अरे अरे, ये क्या हुआ,
5: ये क्या हुआ? अरे बचो,
6: फट गया,
5: सब निकल जाओ, जमीन पे लेट जाओ,
6: अरे निकल जाओ, निकल जाओ।
2: साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
1: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली किसी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
5: ये आदि क्या कर रहा है?
1: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
4: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
5: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
7: सही में
5: बहादुर सैनिक हो तुम। हाँ।
2: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
8: May I come in, sir?
9: Yes, come in.
8: Sir.
9: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
8: सर।
9: वेल डन एडी, तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
7: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
9: हाँ हाँ, कहो।
7: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
9: ओके ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
7: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
9: गो अहेड यंग मैन।
7: सर,
2: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
1: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
2: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
1: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
8: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
3: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
8: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
10: जी जनाब।
4: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
7: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
3: जी सर, हम आपके टैंक को कवर देंगे। सर वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
7: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमला, और जस्ट द गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
3: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
7: फायर।
3: सर, ये टैंक तो गया।
7: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है। जल्दी करो प्रेमलाल, फायर, समय मत गवाओ, फायर।
3: सर, ये टैंक तो गया।
7: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
3: यस सर।
2: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौविंडा छोड़कर चली गई।
1: इस तरह चौविंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोग्रांडी की ओर आगे बढ़ी। और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरम उत्कर्ष का। बुटूर और डोग्रांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था, ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
2: सितंबर 1965 का दिन। उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटन टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। कलाकार बावला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी। ध्वनियांकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी। निर्माण कुसुमलता। ये कार्यक्रम CIET NCERT

0: नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

दोस्तों आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आइए अब जुड़ते हैं दिल्ली, मुंबई व रांची केंद्रों से, जहां से बारी बारी से सुनेंगे हिंदी समाचार, अंग्रेजी समाचार, प्रादेशिक समाचार और विविध भारती द्वारा प्रस्तुत विभिन्न कार्यक्रमों को। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

यह है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, अब से कुछ ही देर बाद हम जुड़ेंगे दिल्ली केंद्र से और सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। उसके बाद 10:10 में मुंबई केंद्र से जुड़कर सुनेंगे विविध भारती की प्रस्तुति उजाले, उनकी यादों के रंग तरंग, वो यादों की महफिल जैसे कार्यक्रमों को। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
2: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।

पेट्रोल के मूल्य में आज 2 रुपए 61 पैसे और डीजल में 2 रुपए 71 पैसे की वृद्धि की गई। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे और डीजल 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। नवीनतम जानकारी के लिए विद्यार्थियों को एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट से संपर्क रखने को कहा गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये फैसला लिया गया है। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 18 ओवर और 4 गेंद में 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामना की है कि प्रकृति की असीम कृपा, सूर्यदेव की ऊर्जा और वर्षा बूंदों के आशीर्वाद से हर एक का जीवन आनंद और सौभाग्य से भरपूर हो। संस्कृत की एक उक्ति साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि धरती सदा सर्वदा हरी भरी और समृद्ध बनी रहे। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी गर्मी और उमस रहेगी। वहीं मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। वहीं केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: रमेश तलवार से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत के चौथे एपिसोड में ये हिस्सा बड़ा ही दिलचस्प था।
1: तो मुझे ऋषि कपूर का एक दोस्त है, उसने आइडिया सुनाया। उसमें ऋषि कपूर है, नीतू सिंह वाला रोल है और बाप और माँ है वो है, उसमें राखी का रोल नहीं था। तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई तेरी स्टोरी में लेता हूँ, लेकिन इसमें चेंजेस वेंजेस होंगे। नया न्यू कमर था राइटर,
0: जी जी जी,
1: उन्हीं का नाम है राइटर, एज राइटर स्टोरी राइटर उनका नाम ही है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ जो भी है। तो मैंने चिंटू से कहा, मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है, सागर सरदी साहब से कहें करने के लिए। बोला बहुत अच्छा, अगर सागर सरदी कर ले। तो सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे 3-4 साल, वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले। और इलिस्ट्रेटेड वीकली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में, उसका फेस बहुत आता था, उनका फेस आया, उन्होंने वो मुझे दिखाया, ऐसी कोई औरत। और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की वो और 20 साल का लड़का,
0: हाँ।
1: तो हमको एक विलन का नया नेगेटिव कैरेक्टर मिल गया।

0: तो चलिए अब सुनते हैं आगे की बातचीत, जिसमें हमने रमेश जी से रंगमंच की उनकी गतिविधियों के बारे में पूछा है।
1: अच्छा, अभी आखिर में कुछ ऐसे नाटकों की बातें करना चाहता हूँ जो आपने सेलिब्रिटीज के साथ किए हैं, जैसे शबाना आजमी के साथ नाटक किया है, जया भादुड़ी के साथ, जया बच्चन के साथ नाटक है, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ है, जीनत अमान के साथ है।
2: जी, सबसे पहले मैंने पूजा भट्ट के साथ किया नाटक।
1: खूबसूरत
2: खूबसूरत। पूजा भट्ट के साथ क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि भाई प्ले कर रही है वो, और कोई और डायरेक्टर डर कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था, कोई कर रहे थे। तो वो डायरेक्टर गुरु टाइप के थे, तो उन्होंने डांटा वांटा ये किया, तो ये कुछ आपस में अनबन हो गई उनकी। तो मेरे ख्याल में बोनी कपूर ने कहा रमेश जी को पूछ लूँ, तो मेरे पास कोई आया जो भी ऐसा है करोगे, बाहर अमेरिका में टूर है ऐसा। तो मैंने कहा कौन सा प्ले है, उन्होंने प्ले बताया, प्ले स्क्रिप्ट बताई और मैंने वो सुनी और मुझे लगा कि प्ले बहुत अच्छा है, प्ले तो बहुत अच्छा था। और उसमें कोई और आर्टिस्ट कर रहा था रोल पहले, जो मुझे लगा मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा, पूजा भट्ट के संग बाप का रोल कोई और कर रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस एक्टर।
1: जी जी,
2: मैंने कहा ये जो इधर टेंटरम दिखा रहे हैं हमको, जो कुछ बातें वो करते थे ऐसी, ये नहीं हो रही होगा, ये नहीं होगा, मैंने नाटक में नहीं होता।
1: जी जी,
2: मैं आपके सिनेमा में बात सुन सकता हूँ।
1: जी,
2: नाटक में अमेरिका में बैठे तो मैं क्या करूँगा। तो वो मैंने कहा भरत कपूर को ले लेते, मेरे नाटकों में सब में काम करता है वो, और तुम्हारा फादर बिल्कुल लगेगा और मेरे कंट्रोल में। तो उस आर्टिस्ट को मैंने कह दिया भाई तुम्हारे ऐसी प्रॉब्लम है, शूटिंग डेट्स होती हैं, फलां होता है, ये होता है, वो होता है, नाटक में ऐसा नहीं होता, तो तुम अगर ना करना चाहो तो। उन्होंने कहा हाँ मैं नहीं करूँगा, मेरे पास टाइम जितना है मैं बोलूँगा, मैं क्या कर सकता हूँ। वो मैं भरत कपूर को मैंने सुनाया सब्जेक्ट, उस जगह मैं कर लेता हूँ। फिर पूजा भट्ट के साथ हम वहाँ गए, वहाँ उसके 5-6 शो हुए अमेरिका में, यहाँ आके 4-5, फिर 5-6 शो यहाँ पे किए, मतलब मेरे ख्याल में मुश्किल से 10-12 शो किए थे हमने उसके।

0: शबन आजमी वाला प्ले
1: नहीं, इसके बाद हमने पहले ये, इनके बाद जिया जी के पास गए हम।
0: जी जी,
1: मेरे पास मेरा दोस्त संजय गोराडिया आया।
0: जी,
1: संजय गोराडिया गुजराती का बहुत फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर है और एक्टर भी है, और वो मेरे साथ शुरू में मेरी फिल्मों में प्रोडक्शन भी करता रहा। सागर साहब के साथ बाजार में प्रोडक्शन असिस्टेंट था, सागर साहब का। और फिर वो मैंने एक बनाई थी NFDC के लिए पिक्चर, तेरा नाम मेरा नाम, न्यू कॉमर्स को लेके, उसमें भी प्रोडक्शन कर रहा था और एक आध रोल भी किया था। तो आया, उसने कहा मैं तुम जैसे पूजा भट्ट के साथ प्ले करके आए हो, वैसा अगर मेरे लिए प्ले करो तो मुझे अमेरिका का टूर मिल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, तो कौन सा प्ले करना?

0: उसने प्ले का नाम बताया, ये वाला ये स्क्रिप्ट। मैंने कहा ये स्क्रिप्ट किसको शूट करती है, किसको करती है? जिया जी को करती है। और कौन है
1: जी
0: जो इसमें ठीक रहेगा? पहले जिया जी के पास पूछते हैं, अगर वो करने के लिए हाँ कर दें। और जिया जी के साथ मैं सीरियल कर चुका था उन दिनों, उनकी कंपनी का ABCL के लिए मैंने आरजू एक सीरियल किया था, 50 एपिसोड किए थे उसके। तो बड़े अच्छा रिलेशनशिप थी, बहुत इज्जत करती थी, मैं भी बहुत इज्जत उनकी करता था। मैंने उनको बताया कि ऐसा मैं कर रहे हैं, अगर आप फ्री हैं और आप करना चाहती हैं, अमित जी से भी बात कर लेती है, महीने का टूर होगा कहीं अमेरिका का अलग अलग सिटीज़ में। बोले सब्जेक्ट सुनाओ। मैंने सब्जेक्ट सुना, सब्जेक्ट उनको बहुत पसंद आ गया। और उन्होंने मुझसे कहा, ऑलमोस्ट हाँ है, फिर भी मैं एक बार अमित जी से बात कर। फिर उन्होंने एक शर्त रखी कि हम रिहर्सल कितने दिन करेंगे। मैंने कहा ऐसे 6 हफ्ते होती है या 45 दिन होती है। बोले उसके बाद आप मेरी फैमिली को दिखाएंगे, अपने ओपिनियन लीजिए आप। मैंने कहा बिल्कुल, अमित जी को बुलाऊंगा, बच्चों को बुलाऊंगा, सब जो भी देखना चाहें, और भी ऑडियंस में जिसको आप बुलाना चाहती हैं, मैं भी अपने लोगों को भी बुलाऊंगा, हम देख लेंगे। कमिट करने से पहले मैंने कहा डेटें कमिट नहीं हो तब तक मैं बेचूंगा नहीं, फिर वेट थोड़ा सा करना पड़ेगा डेटों का, टूर का। बोले ठीक है। रेसलें हुई, हमने शो रखा भाईदास में, प्राइवेट शो, जिसमें अमित जी भी आए और भी बच्चे भी आए, सब सब ने, हमारे भी दोस्त फैमिलीज आई, सब ने देखा। लोगों को प्ले बहुत पसंद आया। जब प्ले होने लगा था तो मेरे ख्याल में था कि इनके सामने हस्बैंड जो है अनुपम खेर टाइप का कोई आदमी हो, या अनुपम हो या कोई और इस तरह का आदमी होना चाहिए। उन्होंने रमेश जी आप ही करिए।
2: अरे वाह।
0: उन्होंने मुझे थिएटर करते हुए देखा होता, मेरे प्लेस देखे हुए जब दिन में मैं एक्टर था। मुझे आप ही करिए, कोई बात नहीं। तो मुझे थोड़ा सा वो झटका लगा कि जिया जी के सामने मैं नहीं करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे आप, करिए, आपने जैसा सुनाया ना वैसा ही करिए। तो जब पढ़ा था मैंने उनके सामने प्ले, तो मेरे रिहर्सलें करनी शुरू हो गया और फिर हमने अमेरिका टूर किया और बहुत अच्छा हुआ। और इधर जो ट्रायल हुआ उसमें भी लोगों ने मुझे अप्रूव किया।
2: वाह वाह वाह।
0: उन्होंने कहा रोल मेन जया जी का, लेकिन आपका रोल भी बहुत अच्छा है, आप एकदम रिलीफ है प्ले में। आप जब जब आप आते हैं आपके एंट्री का इंतजार होता है, क्योंकि वो जया जी थ्रू आउट प्ले में है और मेरा कभी कभी बीच में आता था मैं 3-4, तो सब ने अप्रिशिएट किया और मैंने वो रोल कर डाला।

और फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब हुआ, अब जिया जी को भी पसंद आ गया थिएटर करना, वो प्ले सुपर डुपर हिट हुआ और इन लोगों को फीस जो उन्होंने मांगी वो मिली थी। उसके बाद दूसरा प्ले आया, वो मैंने इनको डॉक्टर मुक्ता प्ले सुनाया, उसमें भी वो मेन रोल था लेकिन सीरियस प्ले था। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप ये रोल करिए जो हस्बैंड का रोल है। अगेन मेरा रोल बीच में ही है लेकिन लाफ्टर लाफ्टर आते हैं मेरे आने पर, ऑल्दो मैं कॉमेडियन नहीं हूँ लेकिन वो रोल ऐसा होता है कि मुझे लाफ्टर तो मिलते हैं। वो रोल भी, वो प्ले, फिर हम दोनों प्ले साथ लेके फिर अमेरिका टूर पे गए। अमेरिका से फिर हम गल्फ कंट्रीज भी गए, पहले लंदन गए, लंदन से गल्फ कंट्रीज भी गए। इस तरह हमारा 40 दिन का टूर हुआ, बहुत अच्छा रहा और सबको फीस अच्छी मिली क्योंकि बाहर प्ले में आपको मुँह मांगा दाम मिल, जब आप स्टार प्ले करते हैं तो जो प्राइस स्टार बोलेगा उस हिसाब से पैसे मिल जाते, फिर डायरेक्टर को भी उस तरह मिल जाते हैं। इस तरह से हमको जब ये प्ले चल रहे थे तो एक दिन शत्रु जी से मुलाकात हुई, तो उन दिनों कुछ दिल्ली जाते थे और ये सब, तो उन्होंने कहा यार मैं तेरा प्ले देखा बहुत अच्छा था। मैंने कहा आप करेंगे प्ले? प्ले करूँगा, जरूर करूँगा। कब करना चाहोगे? कौन सी है स्क्रिप्ट सुनाओ। और उनको स्क्रिप्ट सुनाई और वो मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड प्ले था जो उन्होंने सुना और वो प्ले अच्छा है, आज तक चल रहा है वो भी। और उसमें राकेश बेदी और ये और लड़की एक है और संजय गोरडिया एज प्रोड्यूसर, वो एंट्री भी मारता है कुछ शुरू में। तो ये चार ही कैरेक्टर हैं, मैं उसमें रोल नहीं करता हूँ। वो प्ले भी हिट हुआ, आज तक चल रहा है। उसके बाद जीनत जी किसी शो पे आई थी, अमित जी के ना, इनके शत्रु जी के, उन्होंने दो तीन बार अटेंड किया था प्ले। उन्होंने कहा आपका मेरे लिए स्क्रिप्ट है? मैंने कहा हाँ है। मैंने कहा वो देखिए बात यह है कि संजय गोरडिया से आप कमर्शियल बातें कर लीजिए, मैं आपको स्क्रिप्ट पर में बाद में सुनाऊंगा, क्योंकि होता है ना कि बात कर लें फिर स्क्रिप्ट भी आप तक पहुंच गई, फिर उसके बाद मैं किसी और को सुनाऊंगा, आपको लगेगा आपका सब्जेक्ट किसी और को सुना दिया। उन्होंने कहा हाँ मैं कर लेती हूँ। उन्होंने बात जो भी

लेकिन टुकड़ा हो गया, उन्होंने हाँ कर दी। अब जब आया तो उन्होंने कहा आप रोल करेंगे, मैंने जया जी के साथ आपको रोल करते दोनों प्लेस में देखा है। मैंने कहा जी वहाँ जया जी की हाइट कम है, आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है। बोले आप 6 इंच के जूते पहन लो। और मैंने वैसे जूते बनाए, उनके ऑपोजिट रोल किया, वो हो गया। इतने में एक प्ले था शीशों का मसीहा, फैज अहमद फैज की पोइट्री के ऊपर उनकी कहानी, लाइफ कहानी थी, तो उसको जोड़ा हुआ था और वो हमने प्ले खेला। शबाना जी ने हाँ कर दिया। मैंने पूछा जावेद साहब करेंगे, बोले तुम पूछो भाई मैं नहीं बोलूँगी। मैंने उनको सुनाया, उन्होंने कहा हाँ मैं करूँगा, पढ़ना है खाली ना, याद तो नहीं करने डाले, मैं पढ़ूँगा और पोइट लगूँगा मैं। तो उन्होंने भी ओके कर दिया। तो वो लेके हमने 5-6 शो इधर ही किए, लेकिन जो फिर वो उनके राइटर्स उस प्ले के, वो चाहते थे कि वो रोल करें खुद। तो मैंने कहा भाई अब ये तो प्ले चल गया है, अब तो वो करते हैं, मैं उनको थोड़ा बोलूँगा तो आप छोड़ दीजिए प्ले, शबाना जी को ये थोड़ा करूँगा कि अब आपके साथ ये करेंगे। तो उन्होंने फिर मैं आपको स्क्रिप्ट नहीं दे सकता, समथिंग राइटर ने। ठीक है, शौकत भाभी ने अपना अपनी आप बीती लिखी, तो टाटा एक्सपेरिमेंटल थिएटर में उन्होंने पहला चैप्टर पढ़ा उसका स्टेज पे, पढ़ा तालियां बज रही हैं, ये और बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप वो किताब पढ़िएगा। तो जैसे ही खत्म हुआ चैप्टर, मैंने कहा शबाना इस पे हम प्ले करेंगे, क्या बात करते हो? मैंने कहा आप उसमें रोल करेंगे यही वाला जो शौकत भाभी ने किया है, और अगर जावेद साहब करना चाहें कैफी साहब का रोल तो जावेद साहब को दे दे, आप दोनों का पेयर भी हो जाएगा सेम, आप लोगों ने दोनों साथ में किया हुआ है, तो कैसे तुमको लगता है कि ये सब्जेक्ट हो जाएगा, अच्छा बनेगा? मैंने कहा उसमें बीज सारे हैं, मैंने आपका तुम्हारी अमृता भी देखा है, उसमें भी आप बैठ के दोनों पढ़ते थे फारूक और आप, शीशों का मसीहा भी किया है हमने, और ये भी है, बहुत अच्छा बनेगा। तो फिर एक काम करिए, जावेद साहब से कहिए लिखें। मैंने कहा जावेद साहब को आप कहिए। बोले मैं नहीं कहूँगी, मुझसे ना करेंगे तो फिर मैं क्या करूँगी? आप अपने ढंग से, आपने काम किया हुआ है ना उनके साथ, तो आप उनके उनकी स्क्रिप्टों फिल्में बना चुके हो, कहिए। तो फिर मैंने जावेद साहब से कहा कि आप ये स्क्रिप्ट लिखिए। तो जावेद साहब ने स्क्रिप्ट लिखी और रोल किया, और प्ले तब से लेकर आज तक चलता है। अभी जावेद साहब ने खुद बिजी हो गए, तो उन्होंने कहा रमेश जी अभी आप ना मुझे रोल के लिए मत बोलिए, क्या होता है मुझे आप लोगों के साथ डेटें मैच करनी पड़ती हैं शबाना की और वो, तो आप किसी और भी, तो आप कंवलजीत सिंह करते हैं रोल, वो सेम रोल, और अभी हम टूर करते रहते हैं, अभी भी ऑफर आई हुई है, जाएंगे बाहर।

0: रमेश जी, बहुत बरस तक फिल्में डायरेक्शन किया आपने, टेलीविजन पर काम किया, और उसके बाद फिर एक बहुत लंबा अरसा है जहां आप वापस थिएटर की तरफ लौट रहे हैं, और मैं आपके प्लेस देखता रहा हूं। आप थिएटर को जीते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, वो एक जुनून है आपका। अपने सबसे लंबे समय से चले आ रहे प्लेस और इन दिनों जो कुछ नाटक आप कर रहे हैं उनके बारे में बताइए।
1: देखिए साहब, पहली बात तो यह है कि मैंने फिल्में करना बंद नहीं किया। मैंने लास्ट फिल्म बनाई है शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए, जिसमें रेखा जी और शत्रुघ्न सिन्हा हैं, उन्होंने प्रोड्यूस किया है, उनकी मिसेज और एक उनकी पार्टनर है कोई, दोनों ने मिलके, और फिल्म बहुत अच्छी बनी हुई है। अब वो कैसे रिलीज करेंगे वो अब देखते हैं, OTT पे करते हैं या क्या करना चाहते हैं। और उनके साथ नाटक भी मेरा चल रहा है, उसके भी शोज करते रहते हैं। तो इप्टा में जो नाटक मेरे हैं जो बहुत देर से चल रहे हैं, एक तो शतरंज के मोहरे
0: सबसे पुराना है।
1: मतलब ये था कि मैं जब पहली बार शतरंज के मोहरे करने लगा था, उसमें मैं बच्चा था और चेहरे से लगता था कि 14-15 साल का है, और मुझे लव सीन करना होता था। 20 साल का रोल है शाम का, उसमें कैरेक्टर का नाम शाम है। तो मैं मुंह चुगाता था रोल करने के लिए कि मैं बड़ा लगूं, और मेरे सामने जो एक्ट्रेस होती थी वो अपना खुलवार या हिंदी में या कहीं और दूसरी जगह कोई नॉन एक्ट्रेस ऐसा रोल करती जो मैं बड़ा लगना चाहिए। और उस वक्त जब मैंने पंजाबी में पहले प्ले किया, उस वक्त मनमोहन कृष्ण जी एक मेन काका जी का बुजुर्ग का रोल कर रहे थे, चाचा का, और हंगल साहब करते थे रोल आचार्य का उसमें,

0: और मैं शाम जो लड़का है उसका करता था, और बाकी रात में नितिन सेठी उस वक्त के हीरो थे वो करते थे डॉक्टर सतीश का रोल, अचला सचदेव उनकी मतलब मेरी बड़ी बहन का रोल करती थी। ये यहाँ से शुरू किया था। अब जो साहब मैंने वो प्ले का हमको शो मिल गया हैदराबाद में, ऐसा हुआ कि एक प्ले कर रहे थे आदर का ख्वाब जिसमें बलराज सहनी साहब थे और गीता सिद्धार्थ, तो पिग्मेलियन पे था प्ले। तो उन्होंने कहा हमको दो प्ले चाहिए, तो हमारे पास दूसरा प्ले कुछ था नहीं, तो हमने कहा ये जो पंजाबी में प्ले किया है इसको सब हिंदी में बोलना शुरू करो, तो देखते हैं कि कितना तक क्या चाहिए। वो बोलने लग गए, सब लोग हिंदी में सेम लाइन है, पंजाबी और हिंदी नज़दीक नज़दीक ही है, सिंपल वैसे ही वर्ड रखे, क्लिश हिंदी नहीं होगी, सिंपल हिंदी होगी, वो बन गया। जब एंड तक पहुंच गए फिर मैंने उसको फाइनल थोड़ा सा छोटा मोटा जो करेक्शंस करनी थी कर ली, वो करके हम लोग जाके हैदराबाद में हमने शो खेला, और तब से लेकर अब आज तक ये नाटक हिंदी में चल रहा है। अब मैं वो रोल मेरे मैंने बंद किया तो रमन कुमार करता था वो रोल, मैं कोई और रोल करने लग गया, रमन कुमार के बाद राकेश बेदी वो रोल करने लग गया, फिर राकेश बेदी बड़ा हो गया, वो 20 साल का नहीं लगता बड़ा लगने लग गया, तो अब कोई और बच्चा नया लड़का करता है, और मैं अब वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता हूँ कभी कभी, और मैं जब राकेश बेदी अवेलेबल होता है तो वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता है, अगर वो नहीं अवेलेबल तो मैं करता हूँ।
1: वाह वाह,
0: तो वो प्ले आज तक चलता आ रहा है। दूसरा प्ले जो मैंने आपको पहले कहा कि ये प्ले जो आखिरी क्षमा जो कैफी साहब का लिखा हुआ है और जिसमें बलराज सहनी काम करते रहे, उसके बाद उस गालिब का रोल भरत कपूर करते रहे, अभी वो कंवलजीत भरत कपूर का रोल करते हैं गालिब का रोल, और अभी हमने 56 साल की ट्रॉफियां बांटी हैं उसकी।
1: जी जी जी, काबुली वाला भी चल रहा है।
0: काबुली वाला अलग है, काबुली वाला का ऐसा था कि यही जब मैं शबाना के संग प्ले कर रहा था तो रिंकी भट्टाचार्य जी विमला जी की बेटी वो आई परीक्षित थाने के संग आई थी, उन्होंने कहा कि रमेश तुम काबली वाला क्यों नहीं स्टेज पे खेलते। मैंने कहा काबली वाला एज इट इज तो नहीं खेला जा सकता, नाटक का वर्षन बनाना पड़ेगा, वो करके मैं फिल्म के ऊपर से ले लेता हूँ, आपके ओरिजिनल डायलॉग ओरिजिनल चीज़ें लेके एक स्क्रिप्ट बना के आपको सुना दूंगा। और परीक्षित थाने से कहा तुम रोल कर लो काबली वाला का, क्योंकि बलराज सहनी ने रोल किया था। उन्होंने नहीं यार मैं अभी अब हिम्मत नहीं है स्टेज पे काम करनी, वो टाइम अलग था अब नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने आसिफ शेख से कहा कि भाई ये है, तो आसिफ शेख करता है वो रोल काबली वाला का, और वो नहीं होता तो विकास रावत कभी प्रभार करता।
1: मैंने दिखाई क्यूट प्ले है वो।
0: हाँ बहुत अच्छा, तो लेकिन वो ओरिजिनल फिल्म से लिया हुआ है।

0: बनाई है, फिल्म से लेके बनाई है, और उसका हमने एक वर्षन स्टेज पे क्या हो सकता है उस तरह करके जमा लिया अपना, और चलता है। लेकिन बहुत लंबा नहीं है, 40 मिनट का ही है प्ले। तो उसके साथ मैंने एक बार जाहिदा हैना करके एक पाकिस्तान की राइटर है, उन्होंने काबलीवाला लौट आया इन्हीं करेक्टर को लेके लिखा था, और वो उन्होंने एक आर्टिकल सा लिखा, प्ले नहीं लिखा बता। तो मैं एज इट इज, जब मेरा 40 मिनट का जिसको 2 घंटे पूरा चाहिए, तो मैंने तन्वी आदमी के संग सेकंड पोर्शन पढ़ने का रख लिया। अभी आपने देखा काबलीवाला जो एक्टरों के साथ अच्छे, ये सोलो पढ़ती है काबलीवाला लौट आया, तो जिसको 2 घंटे का होता है तो तन्वी आदमी करती थी। तन्वी आदमी अवेलेबल नहीं हुई तो राजेश्वरी सचदेव ने एक आध बात कर लिया, फिर लुबना सदीकी ने एक आध बात कर लिया। पढ़ना है भाई, तुम रीडिंग एक दो बार मेरे साथ कर लो और स्टेज पे पढ़ो। वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, और ये उसके सारे बीज जो है काबलीवाला के लेके उन्होंने लिखा कि काबलीवाला जब उसकी बेटी पैदा, वो बच्ची जो बड़ी हो गई है, वो छोटी बच्ची बड़ी हो गया और वो डॉक्टर बन गई है, और अफगानिस्तान में मरीज हैं आजकल, और उनका इलाज करने वहां गई है। ऐसा लिखा, बहुत अच्छा लिखा। तो वो पोर्शन हमने काबलीवाला हमारा चलता रहता है।
1: रमेश जी, बहुत ही विस्तार से अब बातें हुई हैं और बहुत दिलचस्प कहानियां आपने सुनाई अपनी जिंदगी की, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए।
0: आपका शुक्रिया भाई, ये अंदर की सारी बातें आपने निकलवा दी मेरे, ये मैं खुद भूल चुका था, अभी कई बातें याद कर रहा हूँ, कुछ नाम याद नहीं आते हैं। अरे भाई उसका वो तो भी ये आपका ही वो था कि आपने आराम से सुना और इतनी देर तक सुना मुझे।
1: बहुत शुक्रिया सर।
0: शुक्रिया जनाब।

0: थी रंगमंच और फिल्मों के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज आपने पांचवां भाग सुना। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: तारा में आज
2: उजाले।

0: वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आपको लैस भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए, ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना

0: चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसका आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
1: मिलती है धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
4: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में। आइए सुनते हैं रंग तरंग कार्यक्रम का यह पहला गीत, जो कि है एक भक्ति गीत। इसे लिया गया है हे गोविंद हे गोपाल एल्बम से। चित्रा सिंह की आवाज है, रायदास ने इसे लिखा और जगजीत सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया है।

कभी किसी की तारीफ की है? कर लीजिए। अगर तारीफ किसी शहर से हो तो कुछ ऐसी ही गजल बनती है। कार्यक्रम रंग तरंग में आइए सुनते हैं खूबसूरत एल्बम की है गजल, तलत अजीज की आवाज में, आनंद बख्शी के पुल और समीर के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे जगजीत सिंह चित्रा सिंह की आवाज़ में हम तो हैं परदेश में, यह गज़ल राही मासूम रजा ने इसे लिखा और जगजीत सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है रंग तरंग।

0: हम सुन रहे थे अ गिफ्ट ऑफ सॉन्ग्स एंड गजल्स। इस एल्बम से अनूप जलोटा की आवाज में उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस नगमे को, जिसे लिखा है मुनीर ने। आइए सुनते हैं एक संदेश।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है रंग तरंग, द खजाना कॉन्सर्ट, बेनाज मशानी की आवाज में मधुरानी के संगीत के साथ।

याद में तेरी इस खूबसूरत सी नज्म के बाद आइए सुनते हैं अगली नज्म, गजल उसने छेड़ी, इस एल्बम से चंदन दास की आवाज़ में, निदा फाजली के बोल और चंदन दास के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे अर्थ फिल्म से चित्रा सिंह की आवाज में, इफ्तिकार माम सिद्दीकी ने इसे लिखा और कुलदीप सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है रंग तरंग।

हम सुन रहे थे ये नगमा पंकज उदास की आवाज में, जिसे संगीतबद्ध किया पंकज उदास ने ही। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग का अगला नगमा, जो कि होगा तलत अजीज की आवाज में।

हम सुन रहे थे नज्म आगाज द बिगनिंग सोनाली जलोटा इस एल्बम से। सोनाली जलोटा की आवाज़ में फैयाज जयपुरी के बोल और रूप कुमार राठौर के संगीत के साथ। कार्यक्रम रंग तरंग यहीं पर समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका हर तरह के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की दृढ़ नीति पर कायम रहना होगा।
3: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
1: अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से फोन पर बातचीत की। श्री ट्रंप ने स्वयं को प्रधानमंत्री मोदी का प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा के स्कैन पुस्तकों को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से पराजित किया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। लगभग 966 बक्सों में करीब 12 टन चेरी को मौसम के पहले पार्सल वाहन में लोड किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की।

रीली धड़कन, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आइए शुरुआत करते हैं यादों की महफिल का। ये प्यारा सा गीत मुकेश ने गाया है, राम अवतार त्यागी ने इसे लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया है और फिल्म है जिंदगी और तूफान।

0: हम सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज़।

0: आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम सुना रहे हैं आपको कार्यक्रम यादों की महफिल। आज की यादों की महफिल हमने सजाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं अगला गीत आए दिन बहार के फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ।
2: मेरे दिल से

हम सुन रहे थे गीत मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत जो कि है मिस्टर इंडिया फिल्म से किशोर कुमार और साथियों की आवाजें हैं, जावेद अख्तर के बोल हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: के संगीत के साथ। अब वक्त हो चला है कि ले लें एक छोटा सा विराम और सुनवा दें आपको ये संदेश यादों की महफिल में।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने क्यों ना
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज हमने सजाई है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के गीतों के साथ। आइए सुनते हैं अर्पण अपनापन फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल। और हम बता चुके हैं कि हम आपको सुनवा रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के संगीत से सजे हुए गीतों को।

कार्यक्रम यादों की महफिल का सुनते हैं अंतिम नगमा, जो कि है अमृत फिल्म से मनहर उदास अनुराधा पौडवाल की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ।

0: आप
1: और हाउसिंग नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएम नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से ज्यादा छात्रों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्रीति वाजपेयी।
0: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड समूह का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम करना है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत

0: Today, in parts of Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab, parts of Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Jharkhand, Odisha and Telangana are also likely to witness severe heatwave conditions during the day. Benchmark domestic equity indices were trading around 1.1% higher in afternoon trade today amid hopes of a possible agreement to end the US-Iran conflict. The Sensex surged 845 points to 76,260, while the Nifty climbed 244 points to 23,964 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से 11 जून तक करेंगे मैराथन बैठक। आज जल संसाधन, पेयजल एवं वाणिज्य कर विभाग के कार्यों की होगी समीक्षा। हाईकोर्ट ने लैब असिस्टेंट भर्ती मामले में दिया बड़ा फैसला। विज्ञापन की शर्त रद्द करते हुए कहा, वैधानिक नियमों से ऊपर नहीं हो सकती विज्ञापन की शर्तें। राज्य सरकार ने की गांवों के पारंपरिक ज्ञान को राष्ट्रीय और वैश्विक मंच दिलाने की पहल। युवाओं के लिए झारखंड ग्रामोत्सव इंटर्नशिप इनोवेशन योजना शुरू। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी पर सियासी संग्राम। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लगाया मुनाफाखोरी का आरोप। भाजपा ने कहा, वैश्विक बाजार मूल्यों से तय होती है कीमतें। और हॉकी, झारखंड की स्पेशल जनरल बॉडी ने राष्ट्रीय खेल अधिनियम 2025 के अनुरूप नए बॉय लॉस को सर्वसम्मति से दी मंजूरी। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने यह बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
2: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
1: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से 11 जून तक राज्य के विकास योजनाओं की प्रगति और वर्तमान वित्तीय वर्ष की कार्य योजना को लेकर विभिन्न विभागों की समीक्षा करेंगे। समीक्षा बैठकों में आज जल संसाधन, पेयजल एवं वाणिज्य कर विभाग, 26 मई को स्कूली शिक्षा, महिला एवं बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग, जबकि 27 मई को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा की जाएगी। हाईकोर्ट ने लैब असिस्टेंट प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने विज्ञापन की उस शर्त को रद्द कर दिया है जिसमें स्नातक स्तर पर संबंधित विषयों को 2 या 3 वर्ष तक पढ़ने की अनिवार्यता तय की गई थी। वहीं हाईकोर्ट ने राज्य के कर्मचारियों के मामले में स्पष्ट किया है कि किसी भी कर्मचारी का वेतनमान और सेवा शर्तें उसके औपचारिक नियुक्ति पत्र जारी होने की तारीख से नहीं बल्कि उस विज्ञापन और चयन प्रक्रिया की तारीख से तय होंगी जिसके तहत भर्ती शुरू की गई थी। राज्य सरकार ने युवाओं के लिए झारखंड ग्रामोत्सव इंटर्नशिप इनोवेशन योजना की शुरुआत की है। योजना का उद्देश्य गांवों में मौजूद पारंपरिक ज्ञान और नवाचारों को नई पहचान देना है। एक रिपोर्ट।
3: झारखंड सरकार ने युवाओं के लिए झारखंड ग्रामोत्सव इंटर्नशिप इनोवेशन योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य गाँवों की पारंपरिक जानकारी और नवाचारों को नई पहचान देना है। ये 2 माह का क्रेडिट आधारित इंटर्नशिप कार्यक्रम है जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तैयार किया गया है। योजना के तहत छात्रों को इंटर्नशिप के दौरान 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड, शैक्षणिक क्रेडिट और विशेषज्ञों की मेंटरशिप दी जाएगी। कार्यक्रम में झारखंड के उच्च शिक्षण संस्थानों के 17,000 से अधिक छात्रों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इंटर्नशिप के दौरान छात्र पंचायतों में जाकर स्थानीय नवाचार, पारंपरिक ज्ञान और ग्रामीण उत्पादों का अध्ययन करेंगे। योजना में बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीमों को राज्य स्तर पर 1,25,000 रुपए तक के पुरस्कार भी दिए जाएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि

0: छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पूर्ण मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने पिछले 11 दिनों में चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। इसको लेकर राज्य में सियासी संग्राम जारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने सरकार पर आम लोगों की अनदेखी का आरोप लगाया है।
1: जनता से इन्हें कोई मतलब नहीं, अपने 2-4 उद्योगपति मित्रों से मतलब है, कैसे उनका मुनाफा बढ़े, कैसे उनकी जेब भारी हो। जो रिफाइंड ऑयल है, डीजल पेट्रोल, उसे हम निर्यात कर रहे हैं। वारे वाह, विडंबना देख, अपने देश में हम महंगा करते जा रहे हैं। इसका असर क्या होगा? आम रोजमर्रा की वस्तुएं आसमान छूने लगेंगी।
0: वहीं भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने दामों की वृद्धि के लिए कांग्रेस की पूर्व की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि सरकार हॉर्मूज पर नजर रखे हुए है, जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी।
2: पेट्रोल की कीमतें वैश्विक बाजार के हिसाब से तय होती हैं, ये किसकी देन है? ये सरकार कांग्रेस की थी उस समय, वरना उस समय तक तो सरकारें कंट्रोल करती थी। उसके बाद ऑयल कंपनीज तेल पर नियंत्रण करने लगी प्राइसेस पे। तो हम मानते हैं कि ये डिफिकल्ट डिसीजन है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और हम गल्फ ऑफ हॉर्मूज पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही वहां स्थितियां बेहतर होंगी, ये प्राइसेस फिर से पुराने दर पे आ जाएंगे।
0: धनबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों और अस्वच्छ तरीके से खाना बेचने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजा कुमार ने बताया कि फूड सेफ्टी ऑन व्हील के जरिए मौके पर ही स्ट्रीट फूड, मिठाई की दुकानों और होटलों के खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है।
3: टेस्टिंग व्हीकल मंगाया गया है, साथ में दुनिया लोग भी आए हुए हैं। स्पॉट जो स्पॉट पे मिठाई दुकान है, टेलीकॉम चेन है, सभी में ऑन द स्पॉट सैंपल का जांच किया जाएगा। और इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पर राइडर से हमने स्टार्ट किया है और अगले 2 दिन तक पूरे धनबाद जिले में अभियान जारी रहेगा।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 953 अंक की उछाल के साथ 76,368, जबकि निफ्टी 268 अंक बढ़कर 23,987 पर कारोबार कर रहा था। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,47,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,75,000 रुपए प्रति किलो है। रांची में आयोजित हॉकी झारखंड की स्पेशल जनरल बॉडी की बैठक में राष्ट्रीय खेल अधिनियम 2025 के अनुरूप नए बॉयलॉज को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। बैठक में जिला इकाइयों को महिला और पुरुष खिलाड़ियों की सूची जमा करने तथा संगठनात्मक प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए। जमशेदपुर में तृतीय झारखंड स्टेट योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 5 से 60 वर्ष तक की आयु वर्ग तक के प्रतिभागियों ने 12 कैटेगरी में योगासनों का प्रदर्शन किया। दिव्यांग बच्चों की स्टार कैटेगरी और महिलाओं की मॉम्स कैटेगरी आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम का उद्घाटन सरयू राय, आलोक मल्होत्रा और मनोज सत्यनारायण ने किया। रांची जिला कबड्डी संघ की ओर से आयोजित 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन कबड्डी प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया गया।

0: शिविर में करीब 50 बालक और बालिका खिलाड़ियों को प्रशिक्षक प्रदीप तिर्की ने कबड्डी के महत्वपूर्ण डिफेंस कौशल एंकल होल्ड की तकनीक सिखाई। संघ के अनुसार आगामी दिनों में खिलाड़ियों को विभिन्न तकनीकी कौशल और फिटनेस से संबंधित विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से 11 जून तक करेंगे मैराथन बैठक। आज जल संसाधन, पेयजल एवं वाणिज्य कर विभाग के कार्यों की होगी समीक्षा। हाईकोर्ट ने लैब असिस्टेंट भर्ती मामले में दिया बड़ा फैसला। विज्ञापन की शर्त रद्द करते हुए कहा, वैधानिक नियमों से ऊपर नहीं हो सकती विज्ञापन की शर्तें। राज्य सरकार ने की गांवों के पारंपरिक ज्ञान को राष्ट्रीय और वैश्विक मंच दिलाने की पहल। युवाओं के लिए झारखंड ग्रामोत्सव इंटर्नशिप इनोवेशन योजना शुरू। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी पर सियासी संग्राम। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लगाया मुनाफाखोरी का आरोप। भाजपा ने कहा, वैश्विक बाजार मूल्यों से तय होती है कीमतें। और हॉकी, झारखंड की स्पेशल जनरल बॉडी ने राष्ट्रीय खेल अधिनियम 2025 के अनुरूप नए बॉय लॉस को सर्वसम्मति से दी मंजूरी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

आइए सुने उप शास्त्रीय संगीत का हमारा कार्यक्रम अनुरंजनी। आज की अनुरंजनी में हम आपको सुनवाएंगे सिप्रा बोस को। सबसे पहले इनसे सुनते हैं ये ठुमरी। राग है मिश्र खमाश और बोल है साजन अबखर आजा।

हम सुन रहे थे बॉबी फिल्म का ये गीत, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ। और हमने कहा था कि अगर आप गायक की आवाज़ को पहचान लें तो हमें ज़रूर बताएं। तो आपने गायक कलाकार की आवाज़ को पहचाना और बिल्कुल सही उत्तर दिया कि ये जो गायक कलाकार हैं वो शैलेंद्र सिंह हैं। बिल्कुल सही आपने पहचाना। और इसके साथ ही हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि एक गुरु को एक समर्पण दिया गया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के द्वारा, जिनका नाम उन्होंने एक गीत में प्रयोग किया, तो वो गीत कौन सा है? तो हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना कि लक्ष्मीकांत प्यारे जी के गुरु का नाम एंथनी गोंसाल्विस है, जिसका जिक्र अमर अकबर एंथनी फिल्म में माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस इस गीत के साथ हुआ है। ये बात हमारे श्रोताओं ने पहचानी है और आपकी इस पहचान के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका ज्ञान इतना अच्छा है। और हमारे श्रोता बड़ा दुख लिख रहे हैं कि इंसान को किसी भी मौसम में चैन नहीं है। गर्मी में हाय, बरसात हो तो बहुत बारिश हुई है और ठंड हो तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो देखिए, असर तो पड़ता ही है हमारे ऊपर। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं और उन्होंने इस

बात को लिखते हुए बताया है कि एंथनी गोंसाल्विस जो है वो उनके वायलिन के गुरु रहे हैं, प्यारे लाल के वायलिन गुरु एंथनी गोंसाल्विस, जो 50-60 के दशक में वो इंडिया के फेमस म्यूजिक अरेंजर थे और हर वाद्य यंत्र बजाते थे। जब अमर अकबर एंथनी के गाने के बोल लिखे जा रहे थे, तो प्यारे लाल जी ने अपने गुरु को ट्रिब्यूट देने के लिए ये गाने के बोल में एंथनी गोंसाल्विस नाम डलवा दिया। कितनी बढ़िया बात है कि कोई अपने गुरु को कितना प्यार कर सकता है, और यही बात यहाँ पर आई है और इतनी खूबसूरती के साथ आप सबने सजाया है। और अब हमारी इबारत को लेकर हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि बदलते मौसम का प्रियतम की याद आना प्रवास जनित विरह या ऋतु विरह है, जहाँ प्रकृति का परिवर्तन प्रेमियों के हृदय में छिपी उत्कंठा को और अधिक तीव्र कर देता है। इसे ऐसे भी समझा जाना चाहिए कि ऋतु परिवर्तन उस शाश्वत मिलन की तड़प को और बढ़ा देता है। विरह की पीड़ा प्रेम की पूर्णता और गहराई का प्रमाण बन जाता है। बहुत अच्छी बात लिखी है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, मौसम का मिजाज जब बेईमान हो जाए तो आसमान में बादल भी मोहब्बत का इजहार करते प्रतीत होते हैं। खिड़की से आती हवा का झोंका और कागज कलम को छूता है और दिल अपने आप प्यार का नगमा लिखने लगता है। फिजा की मैं ऐसी मिठास घुल जाती है कि छुप गए सारे नजारे भी सितारों के आंगन में अपनी चमक बिखेरने लगते हैं। उस पल में प्रकृति प्रेम और एहसास मिलकर जीवन को एक सुंदर कविता बना देते हैं। कितनी अच्छी बातें आप लिखते हैं, और इन्हीं अच्छी बातों के बीच में मैं आपको अगला गीत सौंपना चाहती हूँ। अगला गीत बड़ा प्यारा सा है, आप उस क्रम को मत तोड़िए जो मैंने आपको शुरुआत में दिया था कि आपका लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का पसंदीदा गीत कौन है, कौन सा है, आप ज़रूर हमें बताइए, क्योंकि ये गीत जो है वो दिल को छूते हैं। अब मैं अगला गीत आपको सौंप रही हूँ। इस गीत के साथ में भी दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि ये जो गीत है, इस गीत को किस फिल्म से लिया गया है? जो गीत आप सुनने वाले हैं उसकी फिल्म का नाम बता दीजिएगा। और अब दूसरा प्रश्न है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को कितने फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं, कितने फिल्म फेयर अवार्ड उन्होंने जीते हैं संगीतकार के रूप में, बेस्ट संगीतकार के रूप में कितने मिले हैं, जल्दी से बताइएगा। और ये भी बताइए कि इस गीत के फिल्म का नाम क्या है।

0: हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में ये सुंदर सा नगमा, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आज हम याद कर रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को उनके गीतों के साथ में, और हमने दो प्रश्न आपसे पूछे थे। पहला प्रश्न था कि ये जो गीत है वो किस फिल्म से है, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, लोफर फिल्म से है। और आप सब इस गीत को पसंद करते हैं ये सुनकर भी बड़ा अच्छा लगा। पर हमने एक और प्रश्न आपसे पूछा था, दूसरा प्रश्न ये था कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को संगीतकार के रूप में कितनी बार फिल्मफेयर अवार्ड मिले, तो हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिया 7 बार। और बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से आपने हमें उत्तर दिए हैं। जैसे आपने हमें बताया कि 1964 में पारसमणि फिल्म के लिए, 1968 में मिलन के लिए, 1970 में जीने की राह के लिए, 1978 में अमर अकबर एंथनी के लिए, 1979 में सरगम के लिए, और 1979 में सत्यम शिवम सुंदरम के लिए, सरगम के लिए, 81 में कर्ज के लिए, कई सारी फिल्मों के लिए उन्हें अवार्ड मिले। हालांकि 25 बार नॉमिनेट हुए और जीते 7 बार, ये भी अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है। एक और प्रश्न मेरा आपसे था अगला गीत सौंपने के पहले, लेकिन हम चाहते हैं कि हम पहले ये संदेश जो है वो सुन लें और उसके बाद वापस जुड़े इस धारा के साथ।
1: कहिए, सुनिए एक खुशखबरी।
2: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सुरीला सफर और इसी सफर में हम यात्रा कर रहे हैं बहुत सुंदर नगमों के साथ। और उन्हीं नगमों में हमारे श्रोताओं ने बड़ी अच्छी अच्छी इबारतें लिखी हैं। जैसे हमारे एक श्रोता लिखते हैं, आया मौसम सुहाना रे, ठंडी ठंडी हवा का तराना रे, कभी धूप कभी बारिश आई, प्रकृति ने सुंदर छटा सजाई, पेड़ पौधे झूमे प्यारे, मौसम लगे सबसे न्यारे। और ये बात लिखने के बाद उन्होंने बड़ी प्यारी सी मौसम के बारे में जानकारी दी, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि सुरीली प्रस्तुति सुरीले गीतों से श्रोताओं को बाहर तेज धूप के बावजूद हमें मौसम का मिजाज जरूर बदला लग रहा है, ठंडक महसूस हो रही है। जी, हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छी जानकारी भेजी है कि आज के फनकार कार्यक्रम में मैंने सुना कि लक्ष्मीकांत जी का जन्म लक्ष्मी पूजन के दिन हुआ था, इसीलिए परिवार वालों ने उनका नाम लक्ष्मीकांत रख दिया। आज आपने सुबह आज के फनकार सुना, ऐसे ही एक और कार्यक्रम है 7:45 पर आएगा स्मृतियों के स्वर। भूतपूर्व कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये दूसरा भाग है। आज शाम को 7:45 जरूर सुनिएगा स्मृतियों के स्वर। और आप जो विविध भारती के साथ जुड़े हुए हैं, सुरीला सफर सुन रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दे रहे हैं, तो इन्हीं उत्तरों और प्रश्नों के बीच में मेरे मन में एक और प्रश्न आया कि आप बता सकते हैं क्या कि जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं उन्होंने सबसे अधिक गीत किससे गवाए हैं, यानी कौन सा गायक था जिन्होंने सबसे ज्यादा गीत गाए हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए। आप जरूर बताइएगा, इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं पता, मैं आपसे जानना चाहती हूं, तो जरूर से बताइएगा। और अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं, तो बता दीजिए कि ये जो गीत है ये किसने लिखा है, यानी गीतकार कौन है। दोनों प्रश्नों के उत्तर जल्दी दीजिए और सुनिए ये गीत।

हम सुन रहे थे जीने की राह फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत के गीतकार कौन हैं, तो आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि आनंद बख्शी हैं। और इसके साथ ही हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि सबसे अधिक गीत किसने, यानी किसने, किस गायक या गायिका ने उनके लिए गाए हैं। तो हमारे श्रोताओं ने अंदाज़ा लगाया है कि कोई कह रहा है कि लता मंगेशकर ने ज़्यादा गाए हैं और कोई कह रहा है मोहम्मद रफ़ी ने ज़्यादा गाए हैं। तो आप भी विचार कीजिए, इस बात पर विचार करते रहिए, ज़रूर से ढूंढिएगा किसने सबसे ज़्यादा गाने गाए हैं। हालांकि ऐसा कहते हैं कि लता मंगेशकर ने सबसे ज़्यादा 700 से अधिक गाने गाए हैं उनके लिए, ऐसा कहा जाता है। पर फिर भी आप भी खोजिएगा इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि ये प्रश्न है तो प्रश्न तो रहना ही है, जीवन में ये प्रश्न रहना चाहिए ताकि आप उसका उत्तर ढूंढ सकें। ऐसा भी कहते हैं कि लता मंगेशकर ने लगभग 712 गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गाए, बहुत अच्छी बात है। और अब ये जो गाने और इन सब की जो बात है, इन सब के साथ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो हैं उनके साथ में, यानी दोनों ने साथ में आखिरी कौन सी फिल्म थी जिसके लिए संगीत दिया था, जरूर से बताइएगा। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल की साथ में आखिरी फिल्म जिसके लिए उन्होंने संगीत दिया था, इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। और अगला गीत जो है उसके गायक कलाकारों के नाम बता दीजिए और सुनिए ये गीत। अगले गायक कलाकारों के नाम बताना है और साथ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की आखिरी फिल्म जो साथ में उन्होंने की थी, जरूर से बताइएगा।

हमारे श्रोताओं ने इस गीत को लेकर बहुत सारे उत्तर दिए हैं और लिखा है कि दो रास्ते फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज़ में। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि काजल लगाए दिन में रात हो गई ये तो बजना ही था, फिल्म दो रास्ते का युगल गीत जिसके बाजार में आने पर तहलका मच गया था। बिल्कुल सही बात है। और हमारा एक श्रोता लिख रहा है, एक लड़का मुझे देखकर ये गाना गा रहा था, मेरी शादी हो गई, उसके दोनों बच्चे भी हो गए, 1994 की बात है, आज बरबस याद आ गई और हंसी भी आ गई, साथ में आपके पति देव भी मुस्कुरा रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें ही हमारे परिवार को कितना खूबसूरत एक बहुत प्यारा सा समय देते हैं। और हमने आपसे एक प्रश्न और पूछा था कि ऐसी कौन सी फिल्म है जो अंतिम फिल्म है दोनों के साथ में, तो हमारे श्रोता ने लिखा है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की अंतिम फिल्म मेरी बीबी का जवाब नहीं 2004 में आई थी, जो लक्ष्मीकांत के 1998 में निधन के बाद 6 साल बाद रिलीज हुई। यह फिल्म काफी समय से अटकी हुई थी और इसमें प्यारेलाल ने संगीत संयोजन पूरा किया। बिल्कुल सही उत्तर आप दे रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे बात करके। आज हमारे बहुत कम कमेंट्स पढ़े जा रहे हैं, ऐसा भी हमारे श्रोता ने शिकायत की, उसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि आज हमने आपसे प्रश्न पूछे हैं, कमेंट लिए ही नहीं, आपने लिखे भी नहीं। तो चलिए हम अब चल रहे हैं आज के अंतिम गीत की तरफ। आप सबने अपना पसंदीदा गीत बताया था और हम अपना पसंदीदा गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। ये गीत बहुत प्यारा सा है और ये गीत हमने लिया है जीवन मृत्यु फिल्म से। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

और इसी के साथ कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं समाप्त होता है, पर उसके पहले हमारे श्रोता ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि हम सब मानवीय जीव जंतु, समुद्री प्रजातियां, पेड़ पौधे सब कुदरत के गुलाम हैं। हमें कुदरत के नियमों का पालन करना चाहिए, गर्मी ठंड बारिश इन सब का ध्यान रखना चाहिए और जो कुछ कुदरत दे रही है उसका हंसते हुए स्वीकार करना चाहिए। और इसके साथ ही हमारे सभी साथियों का भी यानी सभी प्राणियों की मदद भी करनी चाहिए। तो आप सबका जीवन मंगलमय हो, कल्याण हो, जीवन में शांति हो, सुकून हो, ये प्रार्थना करती हूँ और आज्ञा लेती हूँ कार्यक्रम सुरीला सफर से। नमस्कार।

दोस्तों, ये वो समय है जब परीक्षाओं के नतीजे आने लगते हैं। कुछ लोगों का जश्न होता है, कुछ का दिल जलता है। उनके नंबर मन के मुताबिक नहीं होते और उनका दिल टूट जाता है। अफसोस है कि हमारे यहाँ बच्चों पर सबसे ज्यादा अंक लाने का दबाव इतना ज्यादा होता है कि बच्चे रेस में दौड़ने वाले घोड़े की मानिंद बन जाते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो जरा रुकिए और बच्चों के साथ बैठ कर रिजल्ट डिस्कस कीजिए। उन्हें बताइए कि परीक्षा के परिणाम जीने मरने का सवाल नहीं बन सकते।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

जैसा कि हमने आपको समझाया, परीक्षाओं के परिणाम जीने मरने का सवाल नहीं बन सकते। ये सच है कि 12वीं में अगर अच्छे नंबर आते हैं तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन होने में आसानी रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12वीं के नतीजों के आधार पर लोगों का करियर डिसाइड हो जाता है और उनकी जिंदगी का फैसला हो जाता है। बच्चे की अपनी काबिलियत होती है, उसकी अपनी क्षमता होती है और उसके आधार पर वो अपना प्रदर्शन करता है। किसी भी बच्चे की तुलना किसी दूसरे बच्चे के साथ कतई नहीं की जानी चाहिए। ये मानना चाहिए कि हमारे बच्चे की अपनी एक यात्रा है और दूसरे बच्चों की अपनी अलग यात्रा है। किसी का किसी से कोई मुकाबला नहीं हो सकता। बच्चों की पढ़ाई में विषयों का निर्धारण भी उनकी दिलचस्पी के आधार पर ही होना चाहिए, न कि दुनिया में क्या चल रहा है या दूसरे बच्चे ने कौन सा विषय लिया है, इसके आधार पर इस बात का निर्णय किया जाए। अगर आप बच्चों को दबाव डालकर कोई विषय दिलवा देते हैं तो मुमकिन है कि इसका असर उसके प्रदर्शन पर पड़ेगा और हो सकता है कि आपके इस्तेमाल से उसकी जिंदगी बेकार हो जाए।

हासिल कर सकता है, पर सवाल ये है कि उसके भीतर उस विषय की दिलचस्पी हो, कुछ करने का मादा हो, दुनिया को ये दिखा देने की जीत हो कि उसके भीतर प्रतिभा है और वो लीक से हटकर काम कर सकता है। माता पिता को अपने बच्चों के साथ बैठकर मिलकर डिस्कस करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए और उन्हें अपने मनपसंद क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली।

0: दिली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र, एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा एजेंसियों ने पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा। असम में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
3: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 तक खुला रहेगा। बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी।

0: जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो

0: भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। यीनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रही और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रही। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र NTA और CBI से जवाब मांगा। कहा पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे बसंत बहार फिल्म का ये गीत, भीमसेन जोशी मन्ना डे की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो कि है जलदीप फिल्म से। सुधा मल्होत्रा, स्नेहल भाटकर ने इसे गाया है, कैफ इरफानी ने इसे लिखा है और स्नेहल भाटकर ने इसे संगीतबद्ध किया है।

Sun, sun.

0: के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत,
4: तुम्हारी याद सताती है,
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम सदाबहार नगमे चल रहा है, आइए सुनते हैं अगला गीत आशा भोसले की आवाज में।

हम सुन रहे थे आलम आरा फिल्म का यह गीत आशा भोसले की आवाज में। शेवन रिजवी ने इसे लिखा और एआर कुरैसी ने इसे संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। चल रहा है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं अगला गीत, चोरी चोरी फिल्म से लता मंगेशकर आशा भोसले की आवाजों में। हसरत जयपुरी के हैं बोल, शंकर जयकिशन का है संगीत।

दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं परिवार फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मन्नाडे की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल और सलिल चौधरी के संगीत के साथ।
4: दत्त मुरली की धुन सुन आई राधे जमुना के तट पर निरत करत उठ हिरत ऐसे चंद्र तपन दिग्नाथ राम तत थई राम तत थई राम तत थई।

0: ಲಹರಿಯೋಡನ ಯಾಲಕ್ಕಿ ಮೃದಂಗ ಧನಕ ನಗಿನ ಸಗನ್ನದಾದ ಇದು ಸಗನಕ ಸಗನಕ ಇದು ಸಗನಕ ಜೀ ಸಗನ್ನದ ಸಾಧಾ ಇದು ಸಗನಕ ಸಾಧಗನಕ ಮಾನ ಗೈ ರಾಧಾ ಮಾನ ಗೈ ರಾಧಾ ಮಾನ ಗೈ ರಾಧಾ
1: ಆಚಾರ नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। मरणोपरांत दिशोम गुरु शिबू सोरेन को पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान देने की घोषणा पर राज्य के राजनीतिक दलों ने गहरी खुशी जताई है। झामुमो नेता मनोज पांडे ने इसे आदिवासियों और झारखंड की अस्मिता की जीत बताया है।
2: तो लास्ट का दिन, हालांकि गुरुजी इससे भी ज्यादा के हकदार थे, हम लोगों ने तो भारत रत्न की मांग की थी, क्योंकि ऐसा मुझे नहीं लगता है कि धरती पर कोई दूसरा अवतरित हो गया इस तरह की करिश्माई नेतृत्व।
1: इधर भाजपा नेताओं ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर गुरुजी के संघर्षों को सराहा है।
3: झारखंड आंदोलन में उनकी महती भूमिका थी और झारखंड आंदोलन से भी पहले वो शराबबंदी के खिलाफ उनका जबरदस्त आंदोलन था, जिस शराबबंदी को आज हेमंत सोरेन ने नकार दिया और शराब को बेचने के लिए टारगेट फिक्स किया जा रहा है। गुरु जी के उसूलों को उन्होंने भूल दिया, लेकिन केंद्र सरकार नहीं भूली और पद्म भूषण का सम्मान दिया। महाजनी प्रथा के खिलाफ भी गुरु जी ने जबरदस्त संघर्ष किया था।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर गहरी चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पिछले पेपर लीक विवादों से कोई सबक नहीं सीखा है। यह 22 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा है। कोर्ट में दायर याचिकाओं में परीक्षा कराने के लिए किसी अधिक मजबूत और स्वतंत्र संस्था को लाने की मांग की गई है। जमशेदपुर के घागीडीह सेंट्रल जेल में बंदियों के लिए झारखंड का पहला ओपन जिम बनेगा। जेल प्रशासन ने इसके लिए जगह चुन ली है। जेल अधीक्षक और एडीएम ने इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेज दी है। उपायुक्त की मंजूरी मिलते ही काम शुरू होगा। इससे जेल के 1,568 बंदियों को फिट रहने में मदद मिलेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। खूंटी पुलिस ने आगामी बकरीद त्योहार को लेकर कचहरी मैदान में मॉक ड्रिल किया। पुलिस कप्तान ऋषभ गर्ग ने बताया कि शहर में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। जगह जगह मजिस्ट्रेट, महिला बटालियन और पुलिस बल तैनात रहेंगे। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जाएगी।
4: 20 तारीख को बकरीद का पर्व मनाया जाना सुनिश्चित किया गया है। उसी के मद्देनजर हम लोगों ने आज जो है राइट मॉक ड्रिल का एक अभ्यास किया था और इसी में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों के पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, चाहे वह टीयर गैस शेल हो या फिर स्टन ग्रेनेड्स हो, उन सभी का भी अभ्यास किया गया और उसकी देखा गया कि कारगर वो कितना है। सभी की कार्रवाई अच्छी थी और हम लोग आशा करते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग बकरीद का पर्व मनाएंगे।
1: सिमडेगा के पाकरटार थाना पुलिस ने साइबर ठगी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने प्रतिबिंब ऐप के जरिए संदिग्ध मोबाइल नंबर की जांच की थी। एसडीपीओ धर्मदेव पासवान ने बताया कि आरोपी जामताड़ा के ठगों को सिम और एटीएम कार्ड भेजते थे। पुलिस ने इनके पास से एटीएम, सिम, मोबाइल और बाइक बरामद की है। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, रांची, खूंटी और गुमला जिलों में आज वज्रपात की आशंका जताई है। इन इलाकों में गरज के साथ बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में चल रही राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने नया इतिहास रच दिया है। इस प्रतियोगिता में गुरिंदर सिंह ने 100 मीटर, विशाल टीके ने 400 मीटर और तेजस्वी शंकर ने डेकैथलॉन में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। शानदार प्रदर्शन के दम पर गुरिंदर सिंह

अनिमेश कुजूर, रवीना और सीमा सहित कुल 12 एथलीटों ने आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इसके साथ ही कई खिलाड़ियों ने नया मीट रिकॉर्ड भी बनाया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सखी सहेली में। आप सभी को विधि जैन
2: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: आरती जी स्वागत है आप सभी का।
2: बिल्कुल बिल्कुल स्वागत आपका भी है और आज हम दोनों पहली बार शायद
1: साथ में सखी सहेली कर रहे हैं। जी बिल्कुल।
2: और हम सभी अपने श्रोताओं को सभी सखियों को सभी सखाओं को नमस्कार कर देते हैं।
1: जी बिल्कुल हमारी तरफ से बहुत प्यार भरा नमस्कार है। और आरती जी एक मैंने जो अभी एक धुन लगाई थी आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, हाँ। ये धुन कहती है कि बस दौड़ते रहना है खेलते रहना है उड़ते रहना है और फुटबॉल को उड़ाते रहना है।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल रुकना नहीं है बस खेलते जाना है
1: जी।
2: खेलना जो है वो फिटनेस के लिए भी जरूरी होता है और हमारी मानसिक जो विकास है जो हमारे जो शांति है उसके लिए बहुत जरूरी होता है। और विधि इसी के साथ हम बता देते हैं आज हम क्या क्या लेके आए हैं सेगमेंट्स।
1: जी बिल्कुल।
2: तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले
1: बात करेंगे कथा सुधा की जो कहानी है, बड़ी प्यारी सी कहानी जिसके बारे में आप थोड़ी देर बाद बताने वाली हैं।
2: जी हाँ।
1: तो उसके बारे में हम सुनेंगे और उसके साथ ही आज हम बात करेंगे विश्व फुटबॉल दिवस के बारे में।
2: जी हाँ फुटबॉल दिवस के बारे में बताएंगे और साथ ही हम बात करेंगे जब परिवार के साथ हम सफर पर निकलते हैं तो हमें क्या क्या तैयारी करके निकलना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे।
1: हाँ सफर पर तैयारी करके निकलें वरना सफर करना पड़ सकता है।
2: हाँ बिल्कुल वो आपको अंग्रेजी वाला सफर करना पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल। तो अंग्रेजी वाले सफर से बचना है तो सफर की तैयारी करके अवश्य निकलें। और उसके साथ ही हम आज वो बहुत स्वादिष्ट व्यंजन का स्वाद चखने वाले हैं।
2: बिल्कुल आज हम बिहार की व्यंजन की बात करेंगे जो है खाजा और रसिया।
1: जी तो खाजा तो हमने खाया है रसिया हाँ। हमने नहीं खाया है तो
2: रसिया हम सुनते भी हैं
1: जी
2: जो एक बिल्कुल गीत भी होते हैं लेकिन ये खाने वाला रसिया है।
1: सुनने वाला रसिया कान में बड़ा मीठा होता है तो शायद खाने वाला भी बड़ा
2: बिल्कुल मीठा ही होता है ये।
1: तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं बहुत प्यार से आई हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आप ही मुझे बहुत बहुत बहुत अच्छी लग रही हैं। और साथ ही हमारे जो श्रोता हैं उसको हम उनको बता देते हैं कि हम आज उनके लिए जो लेके आए हैं वो है प्रायश्चित कथा सुधा के अंतर्गत कहानी जो लाए हैं वो है प्रायश्चित जो कि भगवती चरण वर्मा जी की कहानी है। तो क्यों ना पहले सुन लेते हैं।
1: चलिए चलते हैं उस कथा की तरफ जो है प्रायश्चित।
3: कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई

अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। आज कथा सुधा में सुनते हैं भगवती चरण वर्मा की कहानी प्रायश्चित।

अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी, पति की प्यारी और सास की दुलारी नवविवाहिता। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी, नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, लेकिन ठहरी बालिका, कभी भंडार घर खुला हुआ है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला घी दूध पर, अब वो जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊंघ गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिसरानी को आटा देने गई और उधर दूध नदारद। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा ना था, कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परज गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची, रामू जब आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से बालाई आई, जब तक रामू की बहू ने पान लगाया बालाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वो घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। मोर्चाबंदी हो गई, दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, उसमें दूध मलाई चूहे और भी बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक ना डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई, अभी तक तो वो रामू की बहू से डरती थी पर अब वो साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झड़कियां और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई, पिस्ता बादाम मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए, सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर बिल्ली कमरे में आई, ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा, सूंघा, माल अच्छा है, ताक की ऊंचाई अंदाजी। उधर रामू की बहू पान लगा रही थी, पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने के लिए चली गई और कबरी ने छलांग मारी, पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची, सास के सामने पान फेंक कर वो दौड़ी, क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े खीर फर्श पर और बिल्ली डट कर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया, न रहे बांस न बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली, रात भर उसे नींद ना आई, किस दाव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा न बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वो देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कम

0: ही का हुआ? हाय राम, दैया रे दैया, बहू जी हमका तो लागत है बिल्ली मर गई। लागत का है, सच्चो मर गई। हाय, हत्या का पाप बहू पे चढ़ गया। माँ जी
1: ये तो गजब हुई गवा। बिल्ली की हत्या, आदमी की हत्या तो बराबर है ना। हम तो रसोई ना बनावेंगे अब, बल्कि हम तो रसोई में पैरों न धरेंगे जब तक बहू के सिर हत्या का पाप रहेगा। हाँ
2: कहती तो ठीक हो तुम सब, अब जब तक बहू के सर से हत्या न उतर जाए तब तक ना कोई पानी पी सकता है ना खाना खा सकता है। अरे बहू बहू, ये क्या कर डाला है?
0: अब इब का हुई अम्मा जी। हाँ। कहो तो पंडित जी को बुला ले हम।
2: हाँ ठीक कहती हो। अरे हाँ जाओ, जल्दी से जाओ, जाओ पंडित जी को बुला लो।
3: बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बंध गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली उस समय वो पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ पड़े।
4: सुनती हो भगवान? भाई भोजन न बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा।
3: पंडित परम सुख चौबे छोटे और मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब मनसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख जी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी, सास जी, मिश्रानी, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी।
2: अरे पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक मिलता है बताइए जरा।
4: हाँ हाँ, पत्रा देखकर अभी बताता हूँ। अब ऐसा है, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता। वो मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई, तभी नरक का पता लग सकता है। क्यों मिश्रानी, ये हुआ कब?
1: अरे यही कोई 7 बज रहा होगा सवेरे का।
4: 7 बजे सुबह।
3: पंडित परम सुख ने पत्रे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सुकड़ी और स्वर गंभीर हो गया।
4: हरे कृष्ण, बहुत बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ है रामू की माँ। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभीपाक नरक का विधान है। ये तो बहुत बुरा हुआ। हरे कृष्ण।
2: तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बताइए। हमारा दिल तो बैठा जा रहा है अब शगुन की आशंका से।
3: पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा।
4: रामू की मां, चिंता की कौन सी बात है, अब हम पुरोहित कौन दिन के लिए हैं? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हरे कृष्ण।
2: पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलवाया था ना, अब आगे बताइए कि क्या किया जाए।
4: क्या जाए? हरे कृष्ण। अब देखिए, यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए बस। हरे कृष्ण।
5: हाँ, और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए।
2: हाँ तो पंडित जी, कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए?
3: पंडित परम

0: हंसमुख मुस्कुराए। अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा,
1: बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए। अरे रामू की मां, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है। हरे कृष्ण, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा ही नहीं रही किसी में। हरे कृष्ण। रामू की मां, बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम की क्या होगी। हां, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो, और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा है। हरे कृष्ण।
2: अरे बाप रे बाप, 21 तोला सोना। पंडित जी, ये तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम नहीं निकलेगा।
1: रामू की मां, एक तोला सोने की बिल्ली, अरे रुपए का लोभ बहू से बढ़ गया। बहू के सिर बड़ा पाप है, बड़ा पाप, समझ रही है। इसमें इतना लोभ ठीक नहीं है। हरे कृष्ण।
0: मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा,
1: हरे कृष्ण, उसमें क्या मुश्किल है। हम लोग किस दिन के लिए हैं रामू की मां, मैं पाठ कर दिया करूंगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। हरे कृष्ण।
2: और पंडित जी, पूजा का सामान कितना लगेगा।
1: अरे कम से कम में हम पूजा करा देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा।
2: अरे बाप, इतना सामान। अरे पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपए खर्च हो जाएंगे। हैं?
1: फिर इससे कम में तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है रामू की मां। खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो। ये तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है। और फिर जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े ही है। अरे 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है।
3: और नहीं तो का, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं। दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं।
0: पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। रामू की मां ने अपने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा,
1: रामू की मां, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभीपाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्चा है, सो उससे मुंह ना मोड़ो। हरे कृष्ण।
2: सही कहा पंडित जी, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा।
1: रामू की मां, ये तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखरता है तो ना करो, मैं चला।
2: अरे पंडित जी, अरे आपके पैर पकड़ती हूं भाई, अब जमकर आसन जमाइए, बताइए और क्या हो, क्या करना है।
1: 21 दिन के पाठ के 21 रुपए।
2: अच्छा।
1: और 21 दिन तक दोनों बखत 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा, और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाएगा।
2: ऐसा?
1: हरे कृष्ण।
4: हाँ, ये तो पंडित जी ठीक है कहते हैं। पंडित जी की तोन तो देखो।
1: अच्छा, तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की मां, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध कर रखो। और देखो, पूजा के लिए।
0: पंडित जी की बात खत्म भी ना हुई थी कि मेहरी हांफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे।
5: अरे अम्मा जी,
2: हाँ?
5: ये तो
2: क्या हुआ, बोलो तो।
5: अरे हुआ का, बताओ
4: क्या बताएं अम्मा जी, वो बिल्ली जिंदा थी, उठ के भाग गई।
1: क्या, बिल्ली भाग गई? हरे कृष्ण।

0: वर्मा की कहानी प्रायश्चित। पात्र परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार जी श्याम, पंडित जी जयंत पात्रिकर, रामू की माँ रेणु चतुर्वेदी, मेहरी आकांक्षा सिंह, मिश्रानी ममता सिंह, छन्नू की दादी पूनम त्रिपाठी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
1: आरती जी, 11 तोला सोने की बिल्ली
2: और वो भी भाग गई।
1: पंडित जी का बड़ा नुकसान हो गया। और जब पंडित जी का नुकसान हो गया है तो पंडित जी को हम ये गाना सुना देते हैं।
2: बिल्कुल।
1: और

0: तो आरती स्वागत है फिर से सखी सहेली में। हाँ। और पंडित जी रूठ गए थे तो हमने उनको गाना सुना दिया, देखो रूठा ना करो, अब तक मान गए होंगे। अब बिल्ली तो नहीं मिली 11 तोला की, क्या कर सकते हैं। पर हाँ जी,
1: अब है फुटबॉल दिवस के बारे में कुछ बात करनी तो बनती है, क्योंकि आज है फुटबॉल दिवस। और फुटबॉल जो है विधि फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, और इस खेल की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। और इसमें हम बता देते हैं कितने खिलाड़ी होते हैं
0: जी।
1: तो इसमें 11-11 खिलाड़ियों की दो टीमें होती हैं, जो एक गेंद को हाथ के उपयोग के बिना शरीर के अन्य हिस्सों से, जैसे कि आप सिर से मार सकते हैं, पैर से मार सकते हैं, छाती से मार सकते हैं, बस आप हाथ का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही इसके रोचक मुकाबले होते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत रोचक मुकाबले होते हैं। और खेलों के लिए किसी ने कहा भी है कि खेलों की दुनिया बड़ी निराली होती है, हार में भी यहाँ जीत की लाली होती है, जो मैदान में डटकर मुकाबला करता है असल में वही खिलाड़ी सबसे भारी होता है।
1: बहुत बढ़िया।
0: और ये
1: अच्छा।
0: जो भारी खिलाड़ी होता है वो हाथों का उपयोग नहीं करता,
1: बिल्कुल
0: के बाकी अंगों का प्रयोग कर रहा है।

0: और फुटबॉल खेलने से शारीरिक फिटनेस भी बढ़ती है. संपूर्ण शारीरिक गतिविधि है जो पूरे शरीर की मांसपेशियों को सक्रिय करता है. तो अगर हम विश्व फुटबॉल दिवस की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 25 मई 1924 को पेरिस में, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया था.
1: बिल्कुल, और इस टूर्नामेंट ने विश्व जो वैश्विक स्तर पर फुटबॉल की लोकप्रियता को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिसके उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थिति को चुना गया है. और फुटबॉल को वैश्विक स्तर पर संचालित करने वाली संस्था है फीफा, और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से विश्व फुटबॉल सप्ताह 21 से 25 मई तक मनाते हैं, जिसका विषय रहता है सक्रिय रहिए. इसका उद्देश्य लोगों को शारीरिक रूप से सक्रिय और स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित करना होता है.
0: बिल्कुल, ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहते हैं और बढ़िया बढ़िया खिलाते रहते हैं. आरती, देखिए, खेलना जीवन में बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है.
0: और फुटबॉल जो खेल है वो जब हम स्वयं भी खेलते हैं या हमारे सामने बच्चे खेल रहे होते हैं तो हम खुद देखते हैं कि उनका पूरा शरीर उसमें लगा हुआ होता है.
1: बिल्कुल.
0: वो पूरी मांसपेशियां उसमें काम कर रही होती हैं, और कई बार तो ये देखा गया है कि बच्चों की ऊंचाई भी यानी हाइट भी इससे बढ़ती है,
1: और पूरी बॉडी का स्ट्रेंथ, पूरे बॉडी में मजबूती आती है क्योंकि वो, और दिमाग भी से सक्रिय होता है क्योंकि पूरा उनको ध्यान रखना होता है कैसे गोल करना है, कैसे निकालना है, कहाँ से निकालना है बॉल को. तो बहुत ही मजेदार ये खेल भी, देखने वाला भी एकदम देखता रह जाता है इसे.
0: हाँ, और हमारे श्रोता भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इस विषय पे कह रहे हैं, और जिनमें से एक बात और मुझे, एक कविता और मुझे याद आती है. जब हम बचपन में थे और खेला करते थे,
1: अच्छा,
0: तो बारिश की कीचड़ में पूरी तरह से सराबोर होकर चले जाते थे.
1: इस खेल की कहिए तो सुंदरता ही यही है कि खूब कीचड़ में, मिट्टी में एकदम सराबोर होकर खेलने से.
0: बिल्कुल, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, फुटबॉल खेलने में बहुत अधिक एनर्जी और स्टैमिना की आवश्यकता होती है. इसे दुनिया के सबसे थका देने वाले और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण खेलों में से एक माना जाता है. एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी एक मैच के दौरान लगभग 1000 से 1500 कैलोरी तक खर्च कर सकता है. मतलब बहुत सारे रसगुल्ले खाए जा सकते हैं इसके साथ.
1: बहुत बहुत आराम से खा सकते हैं, क्योंकि आपको जो सोचें कि मोटापा चढ़ेगा तो वो हो ही नहीं सकता, इतना ज्यादा इसमें खेलने में
0: कैलोरीज यहाँ पे खत्म कर दी जाएंगी. जी बिल्कुल. तो आरती, ऐसे ही इसके साथ में एक कविता और मुझे याद आती है कि खेल सिखाते हैं हौसला और उड़ान, मुश्किल में भी रखना खुद का ध्यान, जीत मिले तो विनम्र रहना, हार मिले तो बन जाना तूफान.
1: वाह, बहुत बढ़िया बात.
0: ये कविता जब मैं पढ़ रही थी ना, तो इसका अर्थ मुझे समझ में ये आ रहा था कि कभी कभी हम ना जीत पर घमंड करने लगते हैं और हार पर दुख. यहाँ पर बिल्कुल उल्टा कहा है कि अगर जीत मिले तो विनम्र बनो, सर झुकाकर जीत स्वीकार करो और हार जाओ.
1: जिस पे ज्यादा फल लगे होते हैं वो झुक जाता है.
0: हाँ,
1: जिस पे कुछ नहीं लगा होता वही अकड़ के खड़ा रहता है.
0: जी बिल्कुल. तो ये जो विश्व फुटबॉल दिवस है ये बहुत बढ़िया खेल है, और इस खेल को हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने और टिप्पणी लिखी है, वो जरा हम पढ़ते हैं.
1: तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि विश्व फुटबॉल दिवस का महत्व और उद्देश्य सांस्कृतिक एकता, फुटबॉल को किसी भाषा या सीमा में की आवश्यकता नहीं होती है. ये दुनिया भर के विभिन्न समुदायों और संस्कृतियों को आपस में जोड़ता है, शांति और कूटनीति को मान्यता देता है, लोगों को एक मंच पर लाता है जिससे कि लोगों में आपसी समझ और सहिष्णुता बढ़ती है. और साथ ही ये दिवस लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देता है और महिलाओं को और लड़कियों को भी जो सशक्त बनाने का काम करता है, एक महत्वपूर्ण साधन होता है.
0: बहुत बढ़िया चीज है ना. देखिए, बेटियां भी खेलती हैं, बेटे भी खेलते हैं, सब खेलते हैं, और खेलते खेलते अपने आप को एकदम बढ़िया मजबूत बना लेते हैं, और इस मजबूती को सच में स्वीकार किया जाना चाहिए. हम तो ये कहेंगे कि बच्चों को छोटी उम्र से ही फुटबॉल पकड़ा दो और वो खेलना शुरू कर दें.
1: बिल्कुल, वो मोबाइल से दूर रहेंगे, वो पकड़ेंगे भी नहीं मोबाइल अगर आपने एक बार इस खेल में उनको डाल दिया तो.
0: और छोटे छोटे बच्चे अगर फुटबॉल में पैर मारते रहेंगे तो शायद उनके पैरों की ताकत बढ़ेगी, और उस ताकत के कारण उनके शरीर का पूरा विकास भी होगा, और फिर धीरे धीरे जब वो बढ़ेंगे तो उनको कूटनीति भी आने लगेगी कि कहां से बॉल निकाल देना है, अगले किस दोस्त को पास करना है. शायद इस सबसे उनकी मित्रता भी बढ़ती है,
1: सहयोग की भावना, इसी को तो कहते हैं. एक जब बॉल को पास करते हैं, दूसरे तक पहुंचाते हैं, उस पर विश्वास रखें कि वो गोल कर देगा,
0: तो शायद यहीं से एक संगठन का विकास भी होता है.
1: बिल्कुल.
0: तो जब संगठन का विकास हो रहा है तो हम एक छोटा सा विराम लेते हैं, इसके बाद और बात करेंगे और गीत सुनेंगे.
1: जी.

0: हाँ तो विधि, एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है, एक कमेंट है। तो हमारे जो श्रोता है वो कहते हैं कि फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, फुटबॉल टीम वर्क का सबसे बेस्ट उदाहरण है, एक फुटबॉल पूरी दुनिया को जोड़ देती है, जब मैच चल रहा होता है तो पूरी दुनिया की नजरें और धड़कनें सिर्फ एक ही फुटबॉल पर टिकी हुई होती है। ये तो सही बात है। टीवी के सामने सब जमे बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं, सबके अपनी अपनी टीम होती है पसंद की, और किसी ना किसी टीम के लिए सब दुआ कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। और एक जब वो जो खेल रहे होते हैं और वो बादलों की तरह आसमान में कभी उड़ते हैं, कभी नीचे जमीन से निकल जाते हैं, कभी नीचे से निकलते हैं, कभी बीच से निकलते हैं, पता नहीं क्या करके उस खेल को खेलते हैं, लेकिन ये खेल बहुत रोचक है।
0: बहुत, बहुत।
1: और जब उन बादलों के बारे में बात कर रहे हैं जो खेल रहे होते हैं, तो उन सब के लिए ये प्यारा सा गीत सुनवा देते हैं।

0: सफर पर निकलते हैं तो ये एक बेहद खूबसूरत और खुशनुमा अनुभव होता है और परिवार के साथ किया गया सफर केवल एक यात्रा नहीं होती बल्कि यादों का खजाना बन जाता है, क्योंकि रोजमर्रा की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच जब पूरा परिवार एक साथ निकलता है तो रिश्तों में एक नई मिठास खुल जाती है।
1: बिल्कुल, और रिश्ते मिठास के साथ में जब साथ में निकलते हैं ना तो आती रास्ते में वो हंसी मजाक चलती रहती है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ साथ में बैठ के खा रहा है, उतनी सी जगह में बैठ के धीरे धीरे खाना निकाला जा रहा है, भोजन निकाला जा रहा है, दिया जा रहा है, मतलब वो छोटे छोटे पल कितना आनंद होता है ना। और साथ में कुछ समय के लिए ऐसा लगता है सारी चिंताएं कहीं चली गई हैं और हम खुशियों के साथ अपना समय जी रहे हैं, और छोटी मोटी परेशानियां जो बीच में आ रही है ना, अरे पैर मोड़ते नहीं बन रहा, अरे बैठते नहीं बन रहा, अरे थोड़ा सा सरक जाओ, ये परेशानियां कहीं एहसास नहीं होने देती।
0: बड़ा अच्छा लगता है कि ये भी वो पल है जिन्हें हमें सहेज लेना चाहिए। और जब साथ में खा रहे होते ना तो वो जो स्वाद है ना वो एक अलग होता है, जब साथ में बैठ के ट्रेन में या इस तरह से किसी सफर में खा रहे होते हैं, जबकि जब हम घर में वही चीज खा रहे होते हैं तो इतना पता नहीं चलता जब अकेले।
1: और आरती चीज और अच्छी लगती है कि अगर हम ट्रेन से चल रहे हैं मान लीजिए, तो थोड़ी दूर पे किसी की आलू पुड़ी का डब्बा खुलता है, किसी का चार खुलता है, सारी खुशी हमारे तक आ जाती है।
0: और जो लगातार निकलते रहते हैं लोग ना, ये ले लो वो ले लो तो लगता है अच्छा हम भी ऐसे बोलने लग गए।
1: जी बिल्कुल, और उस सबके साथ बच्चों की जिद करना, उनको डांटना, मनाना, सब कुछ बहुत खूबसूरत होता है। और इसमें कई बार ऐसा होता है जब हम अकेले ट्रिप पे जा रहे होते हैं तो हमें अपना ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन कभी कभी हम अपने दोस्त अपने परिवार के साथ जा रहे होते हैं तो उसमें हम पहले से प्लानिंग करते हैं क्या क्या कपड़े जाएंगे, क्या क्या सामान जाएगा, तो वो प्लानिंग में क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए, ये बारे में तो चर्चा जरूर बनती है।
0: बिल्कुल, सबके हिसाब से हमें लेना चाहिए। और लेकिन ध्यान रख, जब अगर क्योंकि अगर कोई हमारे साथ में कोई बुजुर्ग जा रहा है तो हमें उसके हिसाब से सामान लेना होगा, कपड़े उनके हिसाब से, जो जो चीजें उनको जरूरत लगती है, उनकी दवाइयां, सब कुछ उसी हिसाब से लेना होता है। जबकि बच्चे जा रहे हैं तो बच्चों के हिसाब से उनके सामान लेने होते हैं, तो जो भी जा रहा है हर परिवार के हर सदस्य को कोई परेशानी तो नहीं है, तो उस तरह से सामान लेने होते हैं। साथ ही दवाइयाँ ये जरूर आप पैक करके रखें, कम से कम जो छोटी मोटी चीजें होती हैं उनके लिए जो दवाइयाँ रहती हैं वो आप जरूर अपने साथ में लेकर चलें। बहुत
1: लेकर चलने के पहले आरती हमको एक काम करना पड़ता है।
0: क्या
1: वो होता है? टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग
0: सबसे पहला काम,
1: सबसे पहला काम। अगर वही सही नहीं किया तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप जहाँ जा रहे हैं वो सब चीजें अच्छे से पता कर लें। और सामान्यतया जब हम परिवार के साथ घूमने जाते हैं आरती, तो हम क्या करते हैं कि बहुत दिन पहले ही, जिस दिन 2 महीने पहले अगर टिकट बुक होती है ना, तो 2 महीने पहले ही एक डायरी उठ जाती है, और उस डायरी में जैसे 4 लोग जा रहे हैं तो 4 पेज बन जाते हैं। और सबके पेज पे सबका लिखना शुरू हो जाता है कि कौन किस रंग की कौन सी शर्ट लेके जाएगा, ये भी लिख दिया जाता है, ताकि आखिरी समय में ऐसा ना हो कि 2 दिन पहले वही शर्ट पहन ली जाए और फिर हम परेशान हो जाए। तो पहले से ही ये लिख लेना एक बहुत अच्छी आदत होती है श्रेणी, क्योंकि और एक और फायदा इसका क्या होता है, जब हम सामान्य लिख के ले जाते हैं और जब लौट के आते हैं तो उसमें चेक कर सकते हैं क्या कौन क्या छोड़ के आया है।
0: बिल्कुल, ये तो सबसे जरूरी चीज बताई, बहुत अच्छी चीज है ये, ऐसा करना भी चाहिए। और हम इसी के साथ में एक कमेंट ले लेते हैं अपने श्रोता का, जो कहते हैं कि सफर पे जाने से पहले सबको अपनी जिम्मेदारी समझ लेनी चाहिए कि कौन सदस्य कौन सी बैग उठाएगा, जिसमें झगड़े होते कि हमें नहीं पकड़ना है, हमें नहीं पकड़ना है, और पैसे और टिकट्स किसके पास रहेंगे ये पहले डिसाइड कर लेना चाहिए, और गोल्ड और सिल्वर के कीमती गहने नहीं पहनने चाहिए। ये तो,
1: और अगर पहन भी रहे हैं तो आप उनको संभाल के रखिए, यानी आप उनको बाद में संभाल के रख सकें इस बात का आप ध्यान रखें। और इसके साथ ही जब परिवार के लिए निकल रहे हैं तो हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, परिवार के साथ सफर पर निकलना ना केवल एक बेहतरीन ब्रेक है बल्कि यह तो आपसी रिश्तों को मजबूत करना और नई यादें संजोने का एक बड़ा शानदार सा तरीका है। तो अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, और आपने कहा बड़े बुजुर्ग अगर साथ में ले जा रहे हैं तो उनका जो विशेष भोजन होता है, और अगर बच्चे साथ में ले जा रहे हैं तो उनके विशेष भोजन की, हम तो कहते हैं अगर 8 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं तो 12 दिन की व्यवस्था करनी चाहिए।
0: बिल्कुल, ये सही कहा,
1: जाने कब कहां कौन सी घड़ी में क्या आवश्यक पड़ जाए, और आपके साथ भोजन और जल यानी पानी, ये 2 चीजें
0: जरूर
1: होना चाहिए।
0: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि जब परिवार के साथ सफर में निकलते हैं तो प्री प्लान करते हुए सभी की सुरक्षा, स्वास्थ्य और जरूरी आराम का ध्यान रखना जरूरी है। साथ में खान पान में भी ध्यान रखना जरूरी है। पूरे सदस्यों के अलावा मेरे जैसे, जो वो अपना बता रहे हैं कि मेरे जैसे बड़े बुजुर्गों के लिए मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स भी रखना चाहिए। सफर से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज, आधार, पैन कार्ड और टिकट की हार्ड कॉपी के साथ डिजिटल कॉपी भी सुरक्षित रखिए। बाकी की सारी जानकारी तो आपसे मिलेगी, बोल रहे हैं, जैसे कि इन्होंने बाकी सारी की जानकारी दे ही दी है कि बहुत ज़रूरी है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास रखे उन्हें, चाहे हार्ड कॉपी हो चाहे सॉफ्ट कॉपी हो।

0: जी बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, परिवार के साथ सफर पर निकलते समय सुरक्षा, आराम, मनोरंजन का विशेष ध्यान रखें। यात्रा से पहले कंफर्म टिकट और होटल बुकिंग, आपातकालीन दवाओं, फर्स्ट एड किट, पर्याप्त पानी, घर के बने स्नैक्स, इन्होंने बिल्कुल स्थायी रूप से लिखा है, घर का बना आहार जो है वो रखें, तथा सभी सदस्यों के आईडी कार्ड साथ रखना सुनिश्चित करें। परिवार के साथ सुरक्षित आनंददायक यात्रा के लिए प्रमुख बातों की सावधानी रखें। यात्रा के दौरान होने वाली आम समस्याएं जैसे उल्टी, दस्त, बुखार, पेट खराब, बुखार की दवा, ORS की दवा, मेडिकेटेड बैंडेज, दर्द निवारक पेन बाम जरूर रखनी चाहिए। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहती हूँ आरती, कि जब आप पहाड़ी क्षेत्रों पर घूमने जा रहे हैं तो डॉक्टर से पूछ के कि पहाड़ी क्षेत्रों पर सामान्यतया गाड़ियां जब घूम घूम के जाती हैं तो मतली आती है, समस्या होती है, तो डॉक्टर से पूछ के उसके लिए भी कोई निदान आप अवश्य रख लें।
1: बिल्कुल।
0: और चॉकलेट टॉफी अवश्य रखें कि वो आप मुंह में डालें तो उससे आपको मतली या कई समस्याएं नहीं होंगी।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि चाहे हम तीर्थ स्थान पर दर्शन के लिए जाएं या घूमने के लिए जाएं, परिवार संग सभी सदस्य साथ हो तो वो सफर सुरीला हो जाता है, और अगर सफर ट्रेन से हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। इसी महीने मैं स्वयं सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्मपत्नी और बच्चे अजमेर से द्वारकाधीश जी और द्वारका, नागेश्वर, ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ जी, डकौर, मतलब जिन्होंने जहां जहां लिखा है तो ये सब दर्शनों के लिए गए, तो सब साथ में गए थे।
0: बिल्कुल सही। हमारे श्रोता लिख रहे थे कि हम अभी सब परिवार महाराष्ट्र घूमकर आए हैं, बस ढेर सारा नाश्ता, खाने का सामान, बड़ी कैन, पानी की बड़ी कैन, आवश्यक वस्तुएं, आधार कार्ड, लाइसेंस, गाड़ी के कागजात, ये सब जरूरी सामान रखे थे उन्होंने। बच्चे बड़ों के कपड़े रखे थे आवश्यकता अनुसार, जहां जा रहे थे वहां की सारी जानकारी पहले निकाल ली थी ताकि परेशानी ना हो।
1: बहुत अच्छा। अगर सबसे पहले तो ये करना चाहिए, जो आप जहां अगर आप जा रहे हैं तो पहले से आप प्लान कर लें, और उसके बाद अगर आप ये चीज कर सके तो पहले से ही जहां पे आपको रहना है उस जगह को आप बुक कर लीजिए, और साथ ही एक वाहन को भी, अगर आप अपने वाहन से नहीं जा रहे हैं तो साथ तो वहां पे आप किसी वाहन को भी चाहे रेंट पे ले सकते हैं किराए पे, उसको भी बुक कर लें, क्योंकि अगर आप इस ये सहूलियां दे रहेंगी ना तो आप बस ट्रेन से उतरे या जहां से भी आप जिससे भी जा रहे हैं तो आप फटाफट उस जगह पे जा सकते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं। बिल्कुल आराम कर सकते हैं जाके, और साथ ही फ्रेश होकर फिर आप बाहर घूमने निकल सकते हैं क्योंकि आपके पास वाहन उपलब्ध रहेगा पहले से ही। तो बच्चे अगर साथ में, परिवार जा रहा है साथ में, तो ये बहुत सहूलियत करनी जरूरी होती है।
0: बिल्कुल सही आरती। और मैं इसमें दो चीजें और जोड़ना चाहूंगी। पहली चीज तो जहां आप जा रहे हैं वहां का मौसम और वहां के भोजन, इनका आनंद जरूर लीजिए। जैसा मौसम है उस मौसम का आनंद लीजिए और उसके अनुरूप ही अपना सामान रखिए। अब हम देश की यात्रा के साथ अगर विदेश की यात्रा की भी बात करें तो विदेश की यात्रा में एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है, अति आवश्यक हो जाती है, आप सभी के पासपोर्ट।
1: बिल्कुल।
0: उन पासपोर्ट को किसी ऐसी जगह पर इतना संभाल कर रखें कि कोई चाहकर भी उन्हें ना चुरा पाए, क्योंकि पासपोर्ट ही वहां पर रहना और वहां से वापस आने का सबसे बड़ा साधन आपका होता है। तो विदेश यात्रा पर जाएं तो बाकी चीजों का ध्यान वैसे ही रखें जैसा देश में घूमने के लिए जा रहे हैं, पर पासपोर्ट के लिए विशेष कोई व्यवस्था करके, अपने कपड़ों के अंदर कोई चैन लगाकर, बनाकर या किसी ऐसी व्यवस्था के तहत रखें। सामान्यतः जब हम घूमने जाते हैं तो हम पासपोर्ट को अपने कपड़ों में किसी एक चैन का थैला बनवा के अंदर के तरफ ही रखते हैं ताकि वो किसी के हाथ ना लगे, वो सुरक्षित रहे।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है
0: जी।
1: तो विधि एक गीत सुन ले।
0: बिल्कुल। और जब घूमने फिरने की बात चल रही है तो हम आपको लेके चलते हैं।

0: तो आरती, कैसे गगन के तले अगर जा रहे हो तो सुरक्षा रखना बहुत जरूरी है। तो जब सुरक्षा की बात आती है ना, तो मुझे मेरे दादाजी की वो एक बनियान याद आती है जो मेरे पापा के पास भी एक दो थी, मेरे ससुर जी भी वो पहना करते थे। उसमें अंदर ही एक जेब होता था और जब हम कहीं जाते थे तो वो हमें थोड़ा थोड़ा पैसा दे देते थे। यहाँ तक मैं ससुर जी के साथ जब जाती थी तो वो भी मुझे थोड़ा सा पैसा दे देते थे, ये अपने पर्स में रख लो, बाकी सारा पैसा वो उसमें अंदर रख लेते थे। और समय समय पे जब हम मांगते थे तो धीरे से कहीं किसी बाथरूम में जाते थे और निकाल के ले आते थे। तो मेरे सोने के गहने या कुछ हमने पहना है तो वो सब पापा के उसी जेब में, उसी खीसे में बोलते थे, रख जाता था। तो ये एक व्यवस्था की जा सकती है कि परिवार का एक व्यक्ति, पहले के लोग बहुत समझदार होते थे और वो समझदारी अगर हम अपना लें तो हमारी कोई चीज चोरी हो ही नहीं सकती।
1: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि परिवार के साथ यात्रा में मौज मस्ती के अलावा निश्चिंतता भी बढ़ जाती है। पूरी परिवार के साथ घूमने फिरने में जो मजा और निश्चिंतता होती है, क्योंकि परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी तरह की औपचारिकता नहीं करनी पड़ती है। परिवार का साथ हो तो खर्चे में भी राहत मिल जाती है। वहीं मन में ये भी भाव होता है कि वेकेशन के दौरान, छुट्टियों के दौरान अगर किसी चीज में एक्स्ट्रा खर्च आता है तो एक साथ मिलकर संभाल लेंगे। और इसके अलावा परिवार के साथ जीवन भर की यादें भी बस जाती हैं मन में।
0: कुछ चीजें और मैं सतर्कता की बोल रही हूँ, सतर्क सकारात्मक बात हमारे श्रोता कह रहे हैं। अनजान लोगों पर जल्दी से भरोसा नहीं करना, भीड़भाड़ वाली जगहों पर सतर्क रहना, बच्चों को अकेले कहीं नहीं जाने देना और सभी सदस्य एक दूसरे के संपर्क में रहें। और कहीं कई जगहों पर ऐसा होता है, पहाड़ी होती है या नदी होती है, तो उन जगहों पर विशेष ध्यान दें क्योंकि आपको उस स्थान के बारे में नहीं पता है, तो विशेष ख्याल रखें। और अगर वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो वहां के जो यातायात के नियम है उनका पालन करें।
1: बिल्कुल,
0: रात्रि में यात्रा करने से बचें और रात्रि में सुनसान स्थानों से भी आप बहुत बचें। अगर ऐसी नई जगह पर जा रहे हैं तो सावधानी से सफर करो, सही योजना से,
1: ताकि आपका सफर अच्छा बना रहे। आप एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि जब परिवार के साथ सफर पर निकलें तो दिल में ढेर सारी खुशियां और बैग में सुरक्षा की पूरी तैयारी होनी चाहिए। और रास्ते में अंताक्षरी, घर का बना स्वाद और अपनों का साथ हर सफर को बेहद खूबसूरत और यादगार बना देता है।
0: आपने स्वाद की बात की ना, तो मुझे स्वाद से खाजा याद आ गया। मुझे तो मेरे श्रोताओं को खाजा के बारे में बताने का मन कर रहा है क्योंकि ये मेरा भी पसंदीदा रहा है। ये जो खाजा है ना, ये मुझे भी बड़ा पसंद है और इस खाजा को मैं दही के साथ खाती हूँ। अच्छा। बड़ा आनंद आता है,
1: सच में अच्छा लगता है क्योंकि मीठा है ना, और मीठा के साथ किसी जब दही मिल जाता है ना तो बहुत बहुत
0: बहुत आनंद आता है। और ये जो खाजा है ना, इसे बनाना बड़ा आसान है। मैदा, चीनी और घी, और जहाँ शुद्ध घी डल जाता है वही मजा अलग ही आ जाता है। तो जब अपन हम जब खाजा बना रहे होते हैं तो परतदार और कुरकुरी मिठाई जो खाजा है वो बनती है, और इसे इसे तलना होता है। तो घी, जब जब मैदा होती है या आटा होता है जिसमें आप बना रहे हैं, उसमें घी डाल के उसे मोयन डालना बोलते हैं। तो आप मोयन डालते हैं और हम लोग कहते थे मम्मी मौन हो गई थोड़ी देर के लिए। मोयन डालते समय मोयन डाला जाता है और फिर परतों में बेल कर मोड़ा जाता है।

0: और इसके बाद हल्के विशेष तरीके से उसे तला जाता है, और जब वो तल जाता है तो चाशनी में डुबो दिया जाता है।
1: अरे वाह।
0: और अगर आप इसे चाशनी में ना डुबोएं तो भी आप इसे खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है, और चाशनी में डुबो लें तब भी यह बहुत अच्छा लगता है। ये सिलाऊ नालंदा बिहार का ये पसंदीदा भोग है, और इसे भगवान को भोग या प्रसाद के रूप में भी चढ़ाया जाता है। और मीठा और नमकीन दोनों तरह का होता है, जो मैंने कहा मीठा वाला भी दही के साथ अच्छा लगता है, और नमकीन वाला तो यम यम दही के साथ बहुत आनंद आता है।
1: बिल्कुल। और साथ ही हम आपको बता दें, एक हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने भेजा है रसिया जो होता है ना, उसकी रेसिपी भेजी है। तो वो बताते हैं कि गुड़ का पानी तैयार करें। इसके लिए आपको एक बर्तन में 2 कप पानी और गुड़ डालकर उबालना है, और जब तक कि गुड़ पूरी तरह से पानी में घुल ना जाए इसे छानकर अलग रख लीजिए। उसके बाद जब गुड़ घुल जाता है, उसके बाद एक पैन में प्रेशर कुकर में भीगे हुए चावल और गुड़ का पानी डालिए और इसे मध्यम आंच पर पकाइए, तब तक कि जब तक कि चावल एकदम नरम नहीं हो जाता है और पानी पूरी तरह सूख नहीं जाता। इलायची और मेवे इसमें मिला सकते हैं, और जब चावल पक जाए तब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो हैं और इलायची जो भी आपको पसंद है वो ड्राई फ्रूट्स डालिए और इलायची का पाउडर डालिए और बहुत अच्छी तरह से इसको मिला लीजिए। और इसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिए और मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दीजिए, और इसके बाद इसमें ठंडा या फिर सामान्य तापमान वाला दूध मिलाइए और अच्छी तरीके से इसको चला लीजिए। और अगर इसमें क्या कहते हैं स्वादिष्ट रसिया आपका तैयार है रसिया, और इसे गर्मा गर्म भी खा सकते हैं और इसे ठंडा करके भी परोस सकते हैं।
0: हाँ, ये फ्रिज में रख के निकालने के बाद इस गर्मी में कितना सही लगेगा ना,
1: बहुत अच्छा
0: खाने के
1: लगेगा
0: लिए। इतना आइसक्रीम जैसा गले में सूदिंग सूदिंग,
1: बाहर की आइसक्रीम जो आप खाते हैं ना बिल्कुल भूल जाएंगे इसको खाने के बाद।
0: बिल्कुल। और वैसे ये जो स्वादिष्ट व्यंजन या पकवान है ये हमारे स्वास्थ्य को देखकर बनाए जाते हैं राजस्थान के हिसाब से, तो हमने स्वाद वाले पकवानों की तो बात कर ली है, और अब हम क्या एक गीत सुनवा सकते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, सुनते हैं गीत
0: जी।

0: तो आरती,
1: अब हमारे श्रोताओं ने और भी कुछ बोला है। हाँ। कहा है जो आपको सावधानी बरतनी चाहिए वो ये है कि बच्चों के गले में आपका पूरा पता और मोबाइल नंबर और आई कार्ड आप उसमें लेके किसी कार्ड में ऐसा बना के उनके गले में डाल दीजिए।
2: हाँ।
1: बिल्कुल, जिससे कि अगर उनको कोई परेशानी या कहीं इधर वो खो जाते हैं या कोई इधर उधर हो जाते हैं वो, तो आपको सहायता मिल जाएगी, जो भी उनको लेगा वो आप तक पहुंचा देगा।
2: बिल्कुल, हमारी एक और श्रोता लिखती है आरती और निधि, तो मैंने बताना चाहती हूँ मेरा नाम विधि है।
1: हाँ, विधि
2: वी विक्ट्री विधि। सो वो कहती हैं कि क्या क्यों कहूँ, मुझे भी बाहर जाना है अकेले और मैं भी तुरंत पैन कार्ड इत्यादि पर्स में रख ली हूँ। हंस रही हूँ चूंकि तैयारी हो चुकी है, एक दिन हाथ में है फिर भी। ये तो बहुत अच्छी बात
1: बहुत,
2: है, ऐसे ही तैयारी करके चलना चाहिए और ऐसे ही आराम से घूमिए, बढ़िया बढ़िया खाइए और बढ़िया एंजॉय कीजिए। जिंदगी खुश रहने के लिए है और सखी सहेली सुनते रहिए
1: सुनते रहिए।
2: तो आरती, आज की सखी सहेली में बस इतना ही, समय जितना मिला उतने में हमने अच्छी बातें की, लोगों से मिलना हुआ। अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार। सखी सहेली की प्रस्तुत करता अनुश्री पाठक।
3: सखी सहेली।

तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। लोहरदगा के सलगी चूल्हा पानी में आयोजित देवनद दामोदर महोत्सव में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने दामोदर नदी के उद्गम स्थल पर पूजा अर्चना कर राज्य के सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक सरयू राय ने की। पलामू के चियांकी हवाई अड्डे से उड़ा

0: शुरू न होने का मुख्य कारण राज्य सरकार द्वारा केंद्र को जरूरी प्रस्ताव न भेजना है। लोकसभा में सांसद विष्णुदयाल राम द्वारा उठाए गए सवाल पर नागरिक विमानन केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने यह जवाब दिया है। गुमला के जिला उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने पीएम जनमन सहित सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की एक बड़ी समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी लंबित काम तय समय के भीतर पूरे किए जाएं। पलामू के उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने आज शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। उन्होंने जिले के स्कूलों की व्यवस्था, छात्रवृत्ति, पोशाक, किताब और मिड डे मील जैसी बड़ी योजनाओं में काम की जांच की। हजारीबाग के उपायुक्त हेमंत सत्ती ने कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावासों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने वहां रह रहे छात्रों से सीधा बात कर उनकी समस्याओं को सुनकर तुरंत समाधान के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, रांची, खूंटी और गुमला जिलों में आज वज्रपात की आशंका जताई है। इन इलाकों में गरज के साथ बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में चल रहे राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप प्रतियोगिता में आज महिलाओं के 500 मीटर दौड़ में रिलायंस की सीमा ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। पुरुष वर्ग की 500 मीटर दौड़ में कर्नाटक के शिवाजी परशुरामम्मा ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आज का जो विषय प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम जिक्र कर रहे थे, थायराइड और होम्योपैथी में इसका उपचार, तो ये विषय रहेगा। दरअसल ये थायराइड जो बीमारी है इसके बारे में कई भ्रामक स्थितियां पैदा हो जाती हैं। हर कोई दूसरा इंसान जब कुछ विपरीत अपने शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं तो कोई भी व्यक्ति उसको सलाह देता है, कहीं थायराइड तो नहीं हो गया, इस वजह से कमजोर तो नहीं हो गए, इस वजह से मोटे तो नहीं हो रहे हो, तो ये थायराइड है क्या? इसको बड़े आसान से शब्दों में आप बताइए हमारे सुनने वालों को।
2: थायराइड एक्चुअली एक ग्रंथ ही है, मतलब ग्लैंड्स जो कि गले के सामने के भाग में पाई जाती है, स्थित है, और इसमें से सिक्रीट होती है थायरोक्सिन T3 एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन T4।
1: जी,
2: T3 T4 ये दोनों चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण है विकास के लिए एंड मेटाबॉलिज्म, पाचन क्रिया।
1: जी,
2: इसका मेन फंक्शन या इसका मेन थायराइड की क्रिया ही होती है बच्चों में एवं बड़ों में विकास की, दिमागी शारीरिक दोनों विकास। मेटाबॉलिज्म मतलब पाचन क्रिया, जो आप रोजाना खाते हैं ये सारी चीजें पाचन होनी चाहिए। जब तक पाचन नहीं होगी आपके शरीर को, उनके कोशिकाओं को जो चीज मिलनी चाहिए वो मिलेंगी नहीं। इसमें थायराइड का एक बड़ा रोल होता है। और ये होता कैसे है? दिमाग में एंटीरियर पिट्यूटरी करके एक
1: ग्रंथी
2: होती है, वहां से TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये सिक्रीट किया जाता है। वो ब्रेन को बोलता है कि T3 T4 कम हो गए हैं भाई, इनको शुरू करो,
1: आदेश देता है।
2: हाँ, तो जैसे ही T3 T4 शुरू होते हैं ये ब्लड में जाते हैं, ब्लड से अपना जो क्रियाएं होती है वो करते हैं। एक लेवल पे आने के बाद वापस हाइपोथैलेमस कहता है कि बस हो गया, आप TSH तुम बंद हो जाओ ताकि T3 T4 अपने लेवल पे काम कर सके।
1: जी, जी।
2: जब ये बैलेंस खराब हो जाता है तब होता है थायराइड। पढ़ना, सुनना या गूगल सर्च, सोशल मीडिया काफी आ गए हैं, बेटर है कि हम इनसे जितना हो सके दूर रहे, क्योंकि इंग्लिश में कहावत है फियर्स कम फ्रॉम ईयर्स, मतलब डर सुनने के माध्यम से आता है।
1: जी,
2: तो आप जितना गलत सुनोगे सही सुनोगे आपको स्वयं को नहीं पता है। तो जो एक्चुअली ये सारी चीजों में विशेषज्ञ है उनके पास जाइए।
1: अच्छा, ये कितना सच है डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि थायराइड वाकई में हो जाता है? ऐसे चिकित्सक तो आप बताएंगी ही, लेकिन कोई व्यक्ति अगर मोटा होता है और उसका मोटापा दूर ही नहीं होता, या कोई बहुत दुबला है और दुबला होता रहता है, तो वाकई में थायराइड ग्रंथि का कोई कमाल होता है इसमें?
2: नहीं, ये तो डिपेंड करता है आपका डाइट कैसा है, मतलब आप कितना खान पीने में ध्यान दे रहे हो, कितना एक्सरसाइज कर रहे हो। मैं सोचिए पूरे दिन भर एक जगह पे बैठी हूँ और मैं खा ही रही हूँ, तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान मोटा ही होगा, इसमें थायराइड कुछ नहीं कर रहा।
1: अच्छा।
2: तो ऐसा नहीं है, डायबिटीज में भी इंसान पतला होता रहता है, होता रहता है। तो वही मैंने बोला ना कि सुनने पे ये मत जाइए, क्योंकि अभी डॉक्टर्स को पता है कि ये डायबिटीज वाला है इसलिए पतला हो रहा है या ये

0: थायराइड वाला है इसलिए पतला।
1: तो देखिए, कुल मिला के इस प्रश्न के उत्तर में आपने ये कहा है कि चिकित्सक से मिलिए और कंफर्म कीजिए। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि खुद ही तय ना कर लें किसी के कहने सुनने पर। और यहाँ पर ये तय करना होगा कि प्रोग्राम में बातचीत तो हमारी जारी हो चुकी है, लेकिन यहाँ वक्त है कि एक गाना सुन लिया जाए।
0: एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है, छू कर मेरे मन को किया तूने, इससे अगर शुरुआत की जाए
1: याराना फिल्म का गाना है,
0: यार।
1: किशोर कुमार की आवाज में सुनते हैं।

0: गीत तो वाकई मन को छू गया है, लेकिन अगला प्रश्न हमारे दिमाग में उभरता है कि थायराइड जो है क्या कार्य करता है?
1: आज के वातावरण में इतने दौड़ भाग जिंदगी में हम क्या करते हैं? खाने पीने को साइड में रखते हैं, नेचुरल

कोई भी चीजों को साइड में रखते, हमको कैंड फूड चाहिए, हमको जंक फूड चाहिए, हमको फटाफट फास्ट फूड चाहिए, मगर हमें गरम घर का खाना ये हम जल्दी नहीं लेते, हम अवॉइड कर जाते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, शरीर को जो मिलना चाहिए, कोशिकाओं को जो मिलना चाहिए।

0: आपकी बॉडी, आपका शरीर एक ऐसे सिस्टम से बंधा हुआ है जहाँ पे आप जो नेचुरली चीज़ें खाते हो वो एब्जॉर्ब होती है। जो सप्लीमेंट्स, हाँ सप्लीमेंट्स कहीं ना कहीं ज़रूरी होते हैं, मगर हम आधे खाने को, आधे बैलेंस डाइट को सप्लीमेंट्स के साथ ऊपर नहीं डाल सकते, ये हम करते हैं। और ये सप्लीमेंट्स जब हजम नहीं होती है तब शुरू होता है 10 प्रॉब्लम्स। और यहाँ पे एक बार कोई चीज़ एक डिसऑर्डर में चली गई, ऑर्डर से बाहर चली गई, ऑटोमेटिक पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ता है। और जैसे ही सिस्टम बिगड़ता है, ब्रेन अपना सिस्टम उसको ठीक करने के में लग जाता है, तब या तो TSH बढ़ जाता है, या तो T3 बढ़ जाता है, या तो T4 बढ़ जाता है। तो उसमें हमारा जो विकास है दिमागी या शारीरिक विकास, वो साइड में रह जाता है, क्योंकि बॉडी ज्यादा ध्यान दे रहा है कि इसमें गड़बड़ ना हो।
1: तो देखिए, आपने जो आहार की बात की कि कई बार हम जल्दबाजी में अपना रूटीन, जो प्राकृतिक आहार है, जो नेचुरल हमारी डाइट है, उससे हट के सप्लीमेंट्स पर भी डिपेंड हो जाते हैं और मन से ही हो जाते हैं कई बार। तो ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है और इसको रोकना है, थामना है। आपके पास भी कई मरीज ऐसे आते होंगे कि अचानक बहुत जब बढ़ जाती है बीमारी तभी आते हैं।
0: हाँ, मेरे पास ज्यादातर तभी आता है जब एकदम बढ़ी हुई रहती है, मतलब 10 जगहों से बोला जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी आते हैं। मैंने आज तक कोई भी एक अच्छा केस देखा नहीं है जहाँ पे मैं खुश हो जाऊँ कि ये अभी रिसेंट है
1: जी,
0: कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव ये एक और रहेगा लोगों को कि जब भी आपको लग रहा है कि कुछ अलग हो रहा है आपके शरीर में, कुछ नॉर्मल से बाहर हो रहा है, तो अपना इलाज खुद मत कीजिए। हो सके तो अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, क्योंकि होम्योपैथ को एक प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ कहा जाता है, जो कि हम आगे जब डिस्कस करेंगे ये मैं और क्लियर करती जाऊंगी।
1: जी जी, आपने कार्यों के बारे में बताया कि कार्य प्रणाली किस तरह से काम करती है, लेकिन हम इसके प्रकारों पर भी एक प्रकाश डालना चाहेंगे यहाँ पर। तो उसमें कई बार आप अपने हिसाब से बताएंगी, परीक्षण भी इसमें शामिल हैं, जैसे T3 T4 के परीक्षण आप करवाती हैं, तो किस परिस्थिति में होता है, तो ये हम चर्चा करेंगे एक गाना सुनने के बाद।
0: नमो नमो जी शंकरा, केदारनाथ से।
1: जी, केदारनाथ फिल्म का बहुत ही मशहूर गाना है।

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई अच्छा सुनवा दिया आपने और बहुत ही माकूल था प्रोग्राम में इस समय। लेकिन प्रकारों की जहां तक बात है तो उसके बारे में आप विस्तार से अपने हिसाब से बताइए कि कितने प्रकार के इसमें थायराइड की ग्रंथियों का काम भी होता है, और फिर निदान की बात आती है तो क्या क्या परीक्षण करने आवश्यक होते हैं मरीज के लिए।
1: थायराइड, ये नाम हमने काफी टाइम सुना हुआ है, बट एक्चुअल थायराइड होता क्या है ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है। और
0: जी
1: टाइप्स मतलब प्रकार, एक हाइपर थायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म है, काफी प्रकार, जैसे ग्रेव्स डिजीज हो गया, गॉइटर हो गए, टॉक्सिक एडिनोमा हो गया, ठीक है, थायरॉयड कैंसर हो गया। बट मूलतः जो भारत में या बाकी देशों में भी जो ज्यादातर पाई जाती है वो ज्यादातर हाइपर थायरॉयडिज्म ही होते हैं। हाइपर थायरॉयडिज्म में होता ये है कि T3 T4 लेवल ज्यादा हो जाता है। अभी हमें पता कैसे चले?
0: हाँ, उसके लक्षण भी दिखाई देते होंगे बॉडी पे।
1: लक्षण तो दिखाई देते हैं, मगर उसको कंफर्म करने के लिए इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन्वेस्टिगेशंस का अलग एक महत्वपूर्ण बताया गया है
0: निदान।
1: इसमें आता है ब्लड। पहला जो थायराइड टेस्ट रहता है, फर्स्ट ही होता है ब्लड टेस्ट, ब्लड सीरम, T3 T4 TSH का।
0: जी।
1: अब इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक है टोटल T3 T4, एक होता है फ्री T3 T4। TSH वैसा ही रहता है। टोटल T3 T4 होता है जो टोटल बॉडी में आपके संचालित होती। इसमें क्या हो जाता है, TBG थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन अगर बॉडी में ज्यादा कम होती है तो T3 T4 भी ऊपर नीचे रहेगा।
0: अच्छा,
1: तो ये पहले के डॉक्टर्स किया करते थे, मगर इससे भी ज्यादा एक्यूरेट फ्री T3 T4 है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करती किसी भी अन्य रासायनिक पे।
0: अच्छा,
1: फ्री T3 फ्री T4 ये आपको एग्जैक्टली बता सकती है कि जो पेशेंट है इसका T3 या T4 फ्री कितना है, मतलब बॉडीज में जो अत्यधिक

0: है वो कितना है, जो कि डायग्नोसिस में हेल्प करता है हमको, पेशेंट को ठीक करना है, अंधेरे में तीर नहीं चलाना। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन, मैं फिर कहती हूँ होम्योपैथी में भी इन्वेस्टिगेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अब ब्लड के बाद आ गया अल्ट्रासोनोग्राफी,
1: अच्छा,
0: फिर आता है रेडियो एक्टिव स्कैनिंग, मगर ये सारे बाद में, मतलब जैसे थायराइड कैंसर हो गया, मल्टी नोड्यूलर ये हो गए, नोड्यूल्स हो गए, इसमें सारे ये अल्ट्रासाउंड या स्कैन्स ये सारे वहाँ पे इम्पोर्टेंट होते हैं। हमें जब पता करना है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड, ब्लड टेस्ट इज द फर्स्ट थिंग, प्राथमिक निदान जो रहेगा वो ब्लड टेस्ट है।
1: अच्छा,
0: और ये अनिवार्य है।
1: लेकिन मान लीजिए T3 या T4 में से कोई पॉजिटिव आ गया, जैसा कि आपकी यूनिट के बाहर या कम,
0: हाँ, रेंज के बाहर,
1: रेंज के बाहर, तो आप क्या मानती हैं उसको?
0: नहीं, इस पे तीन चीज डिपेंड करता है, सिर्फ T3 T4 देख के नहीं होगा, TSH भी चाहिए।
1: अच्छा, तो उसमें अगर मान लीजिए है तो क्या रेंज रहती है और क्या उसके लक्षण दिखाई देते हैं?
0: T3 और T4 अगर हायर साइड में है और TSH रेंज से नीचे है
1: जी,
0: इसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ ठीक है। और जब T3 T4 लो है और TSH हाई है तो इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं।
1: जी, जी जी।
0: तो उस हिसाब से हमारे चिकित्सा जो है वो शुरू होने चाहिए।
1: हाँ, क्योंकि निदान में पता हो जाता है कि हाँ, ये लेवल क्या है,
0: लेवल क्या है और पेशेंट कौन सा पेशेंट है, हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट है कि हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट, और शुरू होता है हमारा चिकित्सा।
1: जी जी, तो हम चिकित्सा की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले आपके प्रकारों में और भी जो बातचीत है उसको लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक वातावरण को संगीतमय बनाना होगा।
0: शुरू करते हैं, एक बहुत ही मेरा पसंदीदा गाना है, खोया खोया चांद,
1: काला बाजार,
0: काला बाजार,
1: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत सुनते हैं।

0: साहब, गाना वाकई में बहुत ही पुराने दौर में हमें लिए गया और एक पुराने मंजर को हमारे सामने ला दिया गाने ने, तो हम यही कहेंगे कि होम्योपैथी भी एक बहुत पुरानी चिकित्सा है, आज की नहीं है। तो इसमें तो कई प्रकार के निदान के साथ साथ जब चिकित्सा में हम आगे बढ़ते हैं तो कन्फर्म हो जाते हैं कि नहीं, मरीज ठीक होगा ही। तो जब आपके पास जो प्रकार आप बता रही थी, इस तरह के मरीज ज्यादा आपको मिले या कम वाले मिले?
1: पेशेंट हमको कभी बोल के नहीं आता कि हम हाइपरथायराइड के हैं या हाइपोथायराइड। अपने हिसाब से पेशेंट्स को सुनिए, वो क्या बोल रहे हैं। उनका जो बोलना होता है वो आधे से ज़्यादा आपको बता देगा कि क्या एग्जैक्टली चिकित्सा का तरीका जाना चाहिए। जैसे ज़्यादातर जब पेशेंट्स ये जो हाइपरथायराइडिज्म में होते हैं, ये 6 महीने पहले से ही इनके लक्षण शुरू हो जाते हैं।
0: अच्छा।
1: मगर लक्षण कैसे होते हैं, कहीं खाज हो गई, कहीं खुजली हो गई, कहीं बाल गिरने का जो समस्या है एलोपेशिया,
0: जी जी,
1: विटिलिगो मतलब सफेद पैचेस, किसी को एंजाइना पेन हो रहा है, किसी का वेट एकदम कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, कहीं डायरिया बहुत ज्यादा है, मतलब लूज मोशंस। अब जब ये सारे पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे समझ लीजिए मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है, अब वो पेन अंजाइना का भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, सांस में तकलीफ हो रही है, पेशेंट जाता है कार्डियोलॉजिस्ट के पास। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि ये गलत है।
0: जी।
1: कहीं पे किसी को डर्मेटोलॉजी का प्रॉब्लम हो,
0: त्वचा रोग,
1: तो वो त्वचा विशेषज्ञ के पास जाएगा, तो वो देखेंगे कि हाँ चलो बाल गिर रहे हैं, सिर्फ उतने तक दवाई देके छोड़ देंगे। मगर यहाँ पे ही होम्योपैथ अपना खुद का एक अलग छाप छोड़ता है। जब एक पेशेंट मेरे पास आ रहा है और मुझे ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, मुझे ये ऑलरेडी सोचना चाहिए, ये ऑलरेडी मेरे दिमाग में शुरू हो जाता है कि ये इसका जड़
0: इसका
1: क्या है,
0: किधर है।
1: एग्जैक्टली, रूट जो कहते हैं ना होम्योपैथी, जड़ से निकालता है, क्या होता है, यही होता है। मुझे दिख रहा है मेरे सामने एक पेशेंट बैठा है, वो बोल रहा है कि मेरे बदन में खुजली है, मेरा वेट लॉस हो रहा है, मतलब वजन कम हो रहा है, मुझे भूख नहीं लग रहा है। लोगों को लगेगा कि अच्छा भाई इसको थोड़ा पेट का समस्या होगा, थोड़ा बाल का कुछ शिकायत होगा। नहीं, इसको अगर आप बैक ट्रैक करो, मतलब आप सोचते जाओ इसका जड़, तो कहीं ना कहीं आपको 10 चीजें रहेंगे, उसमें से आपका एक्सपीरियंस, आपका खुद का नॉलेज आपको बताएगा कि कहाँ जाना है, वो आपको दिशा देगा। तो ये होता है जड़। तब मुझे सोचना चाहिए कि थायराइड एक कॉज हो सकता है
0: जी,
1: क्योंकि डायबिटीज में भी ये होते हैं, मगर थायराइड एक कॉज हो सकता है। इस प्रकार से अगर हम निदान करें उस पेशेंट का उस वक्त, काफी टाइम, ऑलमोस्ट मेरे केसेस में 80% तक ऐसे हो चुका है कि थायराइड इनिशियल स्टेजेस पे डिटेक्ट हो गया, तो या तो हम उसको स्लो डाउन कर ले या तो एक्चुअली वो क्योर हो जाता है। हाँ, अगर लेटर स्टेज में जब पेशेंट्स आते हैं कि बकायदा हाइपर थायराइडिज्म के सिम्टम्स लेके, जो लक्षण है वो मैं बता दूंगी, तो ये लक्षण लेके तब तो उसको क्योर करना ही करना है
0: जी।
1: मैं बोल रही हूँ कि 6 महीने पहले से जब लक्षणें दिखाई देती है तब अगर ध्यान दिया तो ट्रीटमेंट या चिकित्सा है या उसका
0: आसान
1: जो
0: हो जाती।
1: हाँ, क्योर है, वो जल्द हो जाएगा।
0: तो ये तो आपने बहुत ही गंभीर बात बताई है, लेकिन बहुत ही आसान से शब्दों में सुनने वालों को भी समझना होगा और जो इसके मरीज हैं वे भी ये जान सकते हैं कि कितना आसान है, लेकिन प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते ही चिकित्सक से सलाह लें। और अब हम यहाँ पर बढ़ेंगे अगले गाने के साथ, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
1: एक बहुत ही पुराना गाना है, मन रे तू काहे न धीरे धरे,
0: चित्ररेखा फिल्म का गाना है ये।
1: हाँ।
0: और वाकई में धैर्य रखने की जरूरत है,
1: जरूरत
0: लेकिन
1: है।
0: प्रोग्राम में तो इस गीत को अभी बजाना पड़ेगा।

0: वाकई एक बहुत ही संदेशात्मक नगमा जो आपने सुनवाया अपनी पसंद पर, मोहम्मद रफ़ी ने गाया। और चित्रलेखा, फिल्म के इस गाने को आत्मसात करते करते कई प्रश्न होम्योपैथी क्या क्या होता है वो सब मंजर सामने आने लगा। लेकिन थायराइड और होम्योपैथी में उपचार विषय पर हमारी चर्चा जारी है डॉक्टर लीजा बनर्जी के साथ। डॉक्टर साहब, इस गीत के बाद जो एक प्रश्न उभरता है वो ये है कि निदान के बारे में अभी और कुछ कहना चाहेंगी आप?
1: शुरुआत में ही आप किसी भी अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, तुरंत वो ठीक हो जाए। अब हमारे होम्योपैथी में तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
0: क्या क्या है?
1: एक होता है जो चीफ सिम्टम्स है या प्रेजेंटिंग सिम्टम, मतलब तात्पुरता आप जब डॉक्टर के पास आए हो किस लक्षण के साथ आए हो। सेकेंड होता है पास्ट हिस्ट्री, मतलब बचपन से लेके अभी तक आप क्या क्या बीमारी आपको हो चुकी है,
0: हिस्ट्री क्या है,
1: हिस्ट्री क्या है इसमें आपको। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी कि आज के दिनों में हम ध्यान नहीं देते हैं, मगर कैसे होता है कि कोई भी चीज होम्योपैथ में कहा जाता है कि सप्रेस अगर हो गई तो वो जब बाहर निकलना ही निकलना है, जब बाहर निकलती है और बड़ा होके, मतलब और ज्यादा होके वो आपके शरीर पे घातक होता है। एग्जाम्पल, कभी अगर हमको भूख लगती है, पेट में दर्द होता है, हम बहुत टाइम तक वो भूख को, मतलब नहीं अभी खाने का टाइम नहीं आया, जो भी है, या कभी किसी के ऊपर गुस्सा आ गया, कहीं जा रहे डर लगा, ये थोड़ा भी हमारा जब माइंड चेंज होता है या सोचने का प्रक्रिया हमारी चेंज हो जाती है तब रासायनिक क्रियाएं शुरू हो जाती है बॉडी में। कभी हमें ध्यान में आता है, कभी नहीं आता है। तो यही सारी चीजें जब हम सप्रेस करते हैं, मतलब दबा देते हैं
0: जी,
1: तो वो आगे जाके बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है हमारे खुद के शरीर को या हमको। इसमें से आता है दो तरह के सप्रेशंस।
0: वो कैसे?
1: एक है मेंटल, मानसिक, और एक है फिजिकल।
0: जी,
1: मेंटल में कैसे होता है कि अगर मुझे अमुक व्यक्ति पे गुस्सा आया, समझिए आप पे गुस्सा आ गया, मैं वो अंदर ही अंदर रख लूंगी कि नहीं जी, मैं तो तिवारी जी को नहीं बोल सकती, बड़े हैं, चलो वो गुस्सा मैंने सप्रेस कर लिया। इससे होता क्या है कि कभी देखा होगा कि हिंदी में एक कहावत है, आग बबूला होना।
0: जी जी,
1: तो वो आग बबूला होना या हाथ वो जो लाल हो जाता है, कान लाल होती है गुस्से से थोड़ा, तो वो होता ये है ऑलरेडी केमिकल चेंजेस या रासायनिक क्रिया आपके बॉडी में शुरू हो गई है।
0: जी जी,
1: आपका ब्रेन आपको बोल रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, सावधान।
0: जी,
1: अब आपको कहीं किसी से डर लग रहा है या कहीं नए जगह पे जाने पे एक अलग सा एक
0: फोबिया,
1: हाँ, धड़धड़ाहट होती है, सबको होती है। तब क्या होता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, धड़धड़ सुनाई देती है दिल की। एक्चुअली होती है क्योंकि तब हमारा बॉडी उस हिसाब से काम करना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी पे गुस्सा है तो मैं उसे मारूं या चिल्लाऊं, नहीं, ऐसा नहीं होता। मानसिक चीजों में सप्रेस करना मतलब है अगर आपको कुछ चीजें बुरी लग रही है या जो भी है उसको एक अलग ढंग से प्रस्तुत कीजिए। नहीं तो सबसे अच्छा माध्यम मेरे हिसाब से ये है गाने, म्यूजिक इज अ बेस्ट थेरेपी फॉर एनीथिंग।
0: और ये भी हो सकता है कि उस माहौल से थोड़ा हट जाएं।
1: तब क्या होता है तब थ्री इडियट्स में जैसे हमने एक डायलॉग सुना होगा, हम बेवकूफ बनाते, ऑल इज वेल, वो हो जाता है, हम ब्रेन को बेवकूफ बना रहे कि भाई कुछ नहीं हुआ है,
0: सब ठीक है।
1: तो तात्पुरता ब्रेन जब नॉर्मल हो जाता है, वो केमिकल रिएक्शन सारे गड़बड़ जो हो रहे हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं, तब देखना आपका गुस्सा भी ठंडा हो रहा है, आपके बॉडी पे असर नहीं पड़ रहा है। ये हो गया मेंटल
0: जी।
1: अब अगर हम शारीरिक बातों पे आए,
0: फिजिकल,
1: उसमें क्या होता है कि टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में रहते हैं, जैसे मैंने कहा कि जंक फूड, ये वो वाला ना,
0: सारी विषैली चीजें,
1: हाँ,
0: तत्व जो है अंदर रहते हैं,
1: हाँ, तो ये सारी टॉक्सिक चीजें जब अंदर से बाहर आने की कोशिश करती है, याद रखिए नेचर, प्रकृति हमेशा अपने आप को बचाना चाहती है। कोई चीज अगर क्रिएट हो रही है या बन रही है उसको जल्दी से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नेचर कभी नहीं करता, प्रकृति कभी नहीं करती, शरीर भी वही है। तो जैसे ही कोई टॉक्सिक बॉडी के अंदर है, विषैली चीजें, वो बाहर निकलेगी। कैसे निकलेगी? ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है, तो ऑर्गन्स को फर्स्ट हाथ नहीं देती नेचर, बाल हो गए, फेस हो गया, मतलब स्किन हो गया, ये दो ऐसी चीजें हैं कि अगर थोड़ा बहुत खराब भी हो गया तो आपके शरीर में या ऑर्गन्स में जो महत्वपूर्ण है आपके जीवन शैली में, वहां पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से जब हॉर्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं या टॉक्सिन्स बाहर निकालने होते हैं, फर्स्ट होता है स्किन, रिंग वर्म हो गया, एक्नी हो गया, सिंपल पिंपल हो गया,
0: रोम छिद्रों से निकल जाते हैं।
1: हाँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 क्रीम लगाओ, 50 लोशंस लगाओ, पहले उसको ठीक करो भले कुछ हो जाए। अब वापस नेचर ट्राई करता कि फिर उसको निकाले, फिर हम उसको अंदर डाल देते, क्योंकि हमको बाहर से अच्छा दिखना है, अंदर कुछ भी हो जाए।
0: जी जी।
1: तो यहाँ पे हो जाता है क्या कि लिवर या कोई भी ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे लिवर, किडनी, गुर्दा, मसल्स, ब्रेन, हार्ट, ये सारे एक प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ये जब प्रॉब्लम में आ जाते हैं वो कहीं ना कहीं तो आपको इफेक्ट करने ही वाले हैं
0: जी,
1: और वहां से शुरू होता है प्रॉब्लम्स की सारी प्रक्रिया है, जड़, जैसे मैंने बोला था होम्योपैथी का जड़। तो इसलिए पास्ट हिस्ट्री मैंने इसलिए इतना डिटेल्स में बोला कि ये होता है पास्ट हिस्ट्री, ये भी हमें ध्यान रखना है। एंड लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंटली फैमिली हिस्ट्री,
0: इतिहास क्या है परिवार का।
1: परिवार का अभी जैसे आम के बीच से आम ही होगा, केला होगा नहीं, केले के झाड़ में केले ही आएंगे,
0: हेरिडिटरी कैरेक्टर,
1: हेरिडिटरी। अभी जैसे अगर फैमिली में थायराइड का हिस्ट्री है, थायराइड का हिस्ट्री अगर है, जो यंग गर्ल्स होती है, जो लड़कियां जो प्यूबर्टी में जाती है
0: जी,
1: उनके चांसेस भी ज्यादा रहते हैं कि आगे के दिनों में उनको भी थायराइड होने के चांसेस है। तब होम्योपैथ का काम ये होता है कि ये भी ध्यान में रखे, अगर है तो उसको ठीक करे, अगर नहीं है तो उसको होने ना दे, प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। ऐसे में काफी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं कि अरे डॉक्टर साहब आपने दवाई दी थी मगर अमुक चीज तो ठीक है, मगर अरे इसको फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं। मैं बोलती हूँ आने दो, क्योंकि टॉक्सिन्स निकल रहा है, जितने टॉक्सिन्स

0: बॉडी से निकल जाए, ऑर्गन्स उतना ही ठीक रहेगा। ऑप्टिमम लेवल मतलब जो एक्चुअल लेवल में रहना चाहिए, बैलेंस में रहना चाहिए, वो लेवल में रहेगा। और जैसे ही बैलेंस में आ जाता है, ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम बैलेंस में आता है।
1: तो फिलहाल तो हमें अपने प्रोग्राम को भी बैलेंस करना होगा, संतुलित रखना होगा। चर्चा को थोड़ा सा विराम देंगे और आपकी पसंद का एक अच्छा सा गाना यहाँ सुनेंगे।
0: अभी तो मुझे एक ही गाना याद आ रहा है, वो है तू गंगा की मौज में,
1: बैजू बावरा।
0: बैजू बावरा
1: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: बैजू बावरा फिल्म का ये नगमा वाकई आनंदित कर गया। और देखिए जिस तरह से गंगा की मौज में जो एक पवित्रता झलकती है, तो शरीर भी पूरी तरह से कुदरत का दिया हुआ एक पवित्र रचनात्मक पूरा व्यक्तित्व होता है। हम इसे बिगाड़ देते हैं विषैले तत्वों को आत्मसात करके, तो होम्योपैथी उससे भी बचाती है। और आहार के बारे में भी अब जानेंगे आपसे, लेकिन थोड़ा सा चिकित्सा का और आप विस्तार दे रही थी, वो क्या है?
1: अच्छा, अब आते हैं हम दवाइयों पे। हाँ, मेरा एक सुझाव रहेगा सभी से, कृपया कर खुद का इलाज खुद मत कीजिए, या दूसरों का भी सिर्फ पढ़ के, गूगल पे सर्च करके, सोशल मीडिया पे जाके मत कीजिए। इतना आसान नहीं है, मगर ये नाम सुनने को इजी, या लक्षणें जब पढ़ेंगे, अरे हाँ ये है ना, ये अमुक में है, अरे ये तो अमुक में है, दे देते हैं, इतना आसान नहीं होता। क्योंकि जैसे मैंने कहा था, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री सब जानना जरूरी है, प्लस इन्वेस्टिगेशन का जो ये भी जानना जरूरी है। हर एक दवाई हर एक जगह पे काम नहीं करती, तो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं दवाई?
0: सही बात,
1: दवाई तो वही है, लक्षणें भी वही है। वेट लॉस होगा,

0: गेन होगा यहाँ पे। हाइपर थायराइडिज्म में स्वेटिंग मतलब
1: पसीना।
0: पसीना बहुत ज्यादा आएगा, डायरिया होगा, हाइपो में उल्टा होगा। तो कैसे सेलेक्ट करते कि कहाँ पे किसको देना है?
1: लक्षण देखकर।
0: लक्षण देखे, लक्षण में भी एक स्पेशल इंगित होती है। हर एक पेशेंट एक स्पेशल इंगित स्वयं देता है, सुनने की देरी है।
1: एक इंडिकेशन होता है,
0: एक इंडिकेशन। जैसे थायरोक्सिन का पेशेंट है, एक आयोडीन का, हम मान के चलते हैं, ये अपने ऊपर ट्राई मत कीजिएगा, मैं बता रही हूँ एज एन एग्जाम्पल। थायरोक्सिन का पेशेंट दिखने में कैसे होता है? गोल मटोल सा, बहुत स्वेट करता हो, थोड़ा भी कुछ काम किया तुरंत उसको पसीना आता है, तुरंत वो वीक हो जाता है। ठीक है,
1: थोड़ी मेहनत करने पे ही वो थक जाता है,
0: थक जाता है, बहुत जल्दी थक जाता है। ठीक है, मैंने जैसे पहले कहा था ब्लड टेस्ट इन्वेस्टिगेशन आ गया, अब होता है पेशेंट डायग्नोसिस। मुझे ये पेशेंट डायग्नोस करना पड़ेगा।
1: क्या बात है,
0: पेशेंट डायग्नोसिस होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अमुक पेशेंट अमुक मेडिसिन का है, तमुक पेशेंट तमुक मेडिसिन का है। तो ये कैसे पता चलेगा? पेशेंट के हिस्ट्रीज लेके और पेशेंट के प्रेजेंट सिम्टम्स लेके और वो जिस तरीके का मानसिक विचारधारा रखता हो। थायरोक्सिन का पेशेंट बहुत उग्र होगा, गुस्सेल। आयोडीन का पेशेंट उसी, अगर उससे देखा जाए, वो बेचारा सा मायूस सा बेचारा, हर एक चीज पे थोड़ी थोड़ी चीजों पे मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये सारी चीजें उसमें होती। अब यहाँ पे आता है, जब मुझे पेशेंट डायग्नोसिस करना पड़ता है, मैंने थायरोक्सिन को आयोडीन और आयोडीन को थायरोक्सिन अगर दे दिया तो मेरे काम बिगड़े बिगड़े, मगर पेशेंट सफरर है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन या स्वयं को दवाई देना प्लीज बंद कर दीजिए।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक प्रश्न और उभरता है। हम कई बार देखते हैं बहुत ही मोटा सा व्यक्ति है, बहुत उसको पंचकर्म की क्रिया दे दी गई है, नेचुरोपैथ ये वो, लेकिन वो मोटा ही रहता है। और वो जब भी पूछते हैं तो बोला थायराइड का प्रॉब्लम है। तो एक तो ये बात, तो ये थायराइड में मोटा होना या एकदम अत्यंत दुबला या क्रिश हो जाना, ये क्यूरेबल है?
0: क्योंकि जैसे ही आप थायराइड क्यों है, कारण क्या है, ये जैसे ही आप ठीक कर रहे हो, ऑटोमेटिक वो अपने नॉर्मल में आ रहा है, नॉर्मलसी जिसको कहते हैं, मतलब
1: सामान्य अवस्था में आ
0: रहा है। सामान्य अवस्था। डिजीज होता क्या है? डिस ईज। जब आपका ईज या आपका कंफर्टेबल लेवल जब खराब होता है, ईजनेस खराब होता है, उसको डिस ईज कहा जाता है। तो जैसे ही वो जड़ से ठीक होने लगता है, जब उसके ऑलरेडी जो गड़बड़ चल रही है वो ब्रेन में चले, माइंड में चले, कहीं पे भी चले
1: जी,
0: ये जैसे ही ठीक किया जाता है, वैसे ही ऑब्वियसली उसका जो सामान्य रूप से पूरी तरह से वो ठीक होके अपना सामान्य जीवन यापन कर सकता है।
1: जी जी। और अब देखें कि इसमें कई बार आहार भी काम करता है, जो इस तरह की थायराइड की आने वाली आगामी जो बीमारियां हैं उससे बचाव भी होता है उसका। तो आप क्या कहेंगे कि डाइट और प्रिवेंशन के बारे में क्या कहना?
0: कोई भी पैथी अगर कहे कि मैंने ही सब कर लिया, एकदम गलत। क्योंकि सिर्फ पैथी, सिर्फ दवाइयाँ कुछ नहीं करती, कर ही नहीं सकती। इसमें डाइट का मतलब आहार का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता ही है। सिर्फ डाइट अगर बोलूँ तो गलत होगा, साथ में होते हैं एक्सरसाइज मतलब व्यायाम। व्यायाम मतलब ये नहीं कि आप जिम में जाओ, अमुक वेट्स लो, तमुक करो, कोई जरूरत नहीं है। आप रोजाना 5 से 7 किलोमीटर चलो, सीजनल फ्रूट,
1: कोई भी मौसमी एक जो मौसमी फल है खाना, वो खाना चाहिए,
0: खाना हो या फल हो ये खाइए। और पानी, हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी, लोग पानी जब बोलते हैं तो बोलते हैं ज्यादा पानी पियो, ज्यादा पानी पियो, शरीर ठीक रहेगा, बिल्कुल नहीं। 2.5 से 3 लीटर काफी है आपके बॉडी के लिए। इससे जब ज्यादा पानी पियोगे, एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, आप की खुद की कैपेसिटी अगर होगी, मेरी खुद की कैपेसिटी है 2 किलो चीज उठाने की, मुझे 3 किलो दे दिया जाए मैं उठा लूंगी, मुझे 10 किलो दे दिया जाए क्या मैं उठा पाऊंगी?
1: बहुत प्रेशर पड़ेगा।
0: यही प्रेशर हमारे इंटेस्टाइन्स, किडनीज पे स्पेशली पड़ता है, जब हम ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करते हैं। किडनीज सिर्फ फिल्ट्रेशन का काम नहीं करता, T3 किडनीज लिवर से भी प्रोड्यूस होती है।
1: ओहो,
0: यस, इसलिए मैंने ये यहाँ पे जिक्र किया। और जब किडनीज अगर काम नहीं कर रही है तो 10 चीजें होंगी ही होंगी, T3 पे भी असर पड़ेगा।
1: तो ये सावधानी बहुत जरूरी है रखना। और आपका जो टोटली

0: ओवरऑल कहना ये है कि वो कॉमनली कहा जाता है कि ज्यादा पानी पिए, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार।
1: उतना ही।
0: लेकिन आहार में ये बात तो मानती है, आज की जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, उसमें जंक फूड वगैरह भी इसमें।
1: सबसे पहला चीज जो लोगों को बंद करना चाहिए वो है अजीनोमोटो,
0: जो
1: बड़ी
0: चाइनीज फूड में
1: खतरनाक
0: ज्यादा
1: है।
0: इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही बोला है आपने।
1: अजीनोमोटो बंद कर दीजिए, फास्ट फूड्स कम कर दीजिए।
0: और कुछ नहीं तो सामान्य खाना खाइए,
1: हाँ,
0: इतना
1: कम
0: तो
1: कर
0: खाइए
1: दीजिए। मैं ये
0: जी।
1: भी नहीं बोलूंगी कि बंद कर दीजिए, एक्चुअली बंद करनी चाहिए, अगर नहीं हो रहा है कम कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप कम करेंगे ऑटोमेटिक आपका शरीर पॉजिटिव दिशा में जाएगा। और मेरा सुझाव एक रहेगा लोगों से, जितना हो सके अपने माइंड को थोड़ा नियंत्रण पे रखिए, मतलब थोड़ा सैक्रिफाइस अगर हम करना शुरू हो जाए,
0: कंट्रोल।
1: कंट्रोल करना शुरू हो जाए, सैक्रिफाइस मतलब अपना स्वार्थ थोड़ा सा हटके देख लेना, जैसे ही आपका मन शांत रहेगा, आपकी सोच अच्छी होगी, शरीर ऑटोमेटिकली उसी दिशा में उस हिसाब से अच्छा ही चलेगा।
0: क्योंकि उसी हिसाब से उसको आदेश प्राप्त होंगे।
1: हाँ, हम जैसे बोलते हैं कि ब्रेन ने वो आदेश दिया, मैंने जैसे पहले कहा कि ब्रेन को आदेश मिलता है कि TSH चालू करो बंद करो, एक्चुअली ब्रेन देता है क्या? मन देता है। मन को आप ब्रेन के अंदर रिलेट मत करना, वो अलग चीज होती है।
0: हमारे जो कार्यक्रम का मन इस समय कह रहा है कि आदेश दे रहा है दरअसल कि एक गाना अच्छा सा हो जाए यहाँ पर
1: एक
0: चलते
1: अच्छा सा
0: चलते।
1: गाना, चलते चलते मैं हूं।

0: डॉक्टर साहब, बहुत ही झूमता मचलता बहलाता कदमों को थिरकाता नगमा आपने सुनवाया झुमरू फिल्म से और किशोर कुमार की आवाज में। देखिए, समापन की ओर बिल्कुल नजदीक है हमारा प्रोग्राम। चलते चलते आज के हमारे विषय पर हमारे सुनने वालों को आप क्या मैसेज, संदेश या सलाह देना चाहेंगी?
1: एक है कि पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, दूसरों के लिए नहीं तो खुद के लिए, खुद के शरीर के लिए। दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिए, खुद के लिए भी अच्छा सोचिए। आप जितना अच्छा सोचोगे, आपके शरीर की जो रासायनिक क्रिया है उतनी ही पॉजिटिव आएगी। और इससे होगा क्या, हमारे आने वाले जेनरेशंस को हम एक बहुत अच्छा एनवायरमेंट या एक अच्छा जगह दे पाए जहाँ पे वो पनप सके। मेरे जो गुरु है, जिन्होंने आज मुझे सिखाया है कि होम्योपैथी का मतलब क्या, कैसे सेवा की जा सकती है, कैसे ठीक करके हम, ये एक अलग ही खुशी मिलती है पेशेंट को ठीक करने की। ये जो खुशी मिलने का जो राह है वो मेरे गुरु ने मुझे दिखाया है। मेरे गुरु और कोई नहीं, मेरे डैड है, डॉक्टर एस बैनर्जी, एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। और एक बार फिर विविध भारती को तहे दिल से शुक्रिया करूंगी मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई की सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर लीजा बनर्जी के साथ। आज के प्रोग्राम में चर्चा का विषय था थायराइड होम्योपैथी में उपचार। इस विषय पर यह कार्यक्रम आपने सुना और उम्मीद है आप प्रतिक्रिया देंगे तो हमें पता चलेगा प्रोग्राम आपको कैसा लगा। चलते चलते आपको बताना चाहेंगे, आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। और अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची में वित्त और वाणिज्य कर विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में राज्य की वित्तीय स्थिति और राजस्व संग्रह बढ़ाने पर गंभीर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बजट को सही तरीके से लागू करने और कमाई बढ़ाने के लिए नई तकनीक का उपयोग करने सहित कई जरूरी सुधारों के सुझाव दिए हैं। गिरिडीह नगर निगम के बोर्ड की दूसरी बड़ी बैठक आज नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में पूरी हुई। इस बैठक में राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद, मेयर प्रमिला मेहरा, डिप्टी मेयर सुमित कुमार और सभी वार्ड पार्षद शामिल हुए। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने रांची के राज्य ग्रामीण विकास संस्थान में आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल की राज्य स्तरीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों और कर्मियों के कौशल विकास को बढ़ावा देना और सुशासन को मजबूत करना है।

0: देवघर के नए उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने आज तड़के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद आधिकारिक रूप से पदभार ग्रहण किया है। कार्यभार संभालते ही उन्होंने मीडिया से बातचीत में आगामी श्रावणी मेले के सफल आयोजन को अपनी पहली प्राथमिकता बताया। केंद्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत राज्य के 50 छात्रों का एक दल मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गया है। इन छात्रों को धनबाद स्थित आईआईटी आईएसएम से आईआईटी इंदौर भेजा गया है, जहां वे वहां की संस्कृति, शिक्षा और परंपराओं को करीब से समझेंगे। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में हुए जमीन विवाद और गोलीबारी में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने आज दोपहर अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस कार्रवाई की जानकारी दी। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: तुमने अपनी मुस्कानों से

मन की उड़ान धरती और आसमान के परे है। मन की उड़ान शहरों, समंदरों, पहाड़ों और घाटियों के पार जाती है। खींचा चला जाता रहा मन तुम्हारी तरफ, तुम्हारे आने से बहुत पहले से, बहुत पहले से तुम्हारा था ये मन तुम्हारी तरफ। खींचा चला जाता रहा सदियों से, सदियों के सफर में तुम हो हमारे मन का सुकून।

तुम्हें देखना सिर्फ तुम्हें देखना नहीं है, जब तुम्हें देखते हैं हम तो अपने सपनों को जीते जागते देखते हैं। हम देखते हैं तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे बिखरे बालों की अदा, तुम्हारा अपने ख्यालों में खो जाना, तुम्हारा गुनगुनाना होठों में उंगली दबाकर।

दुनिया की रीत है, प्यार की राहों में दुनिया अड़चनें खड़ी करती है, पर प्यार करने वाले तमाम रास्तों, रस्मों और तरीकों से अलग अपने नए रास्ते तैयार करते हैं। प्यार की राहें बस राहें होती हैं उनके लिए, इन पथरीली राहों पर सुनहरी जिंदगी उनका इंतजार करती है।

दुनिया की जुल्मतों और परेशानियों के बीच चमकता रहे मुस्कान का सूरज, सीने में जब दर्द का तूफान उठे तो भी छलक न पड़े आंखें, होंठों पर पड़ी मुस्कान की चादर छिपा ले सब कुछ, सिर्फ तुम्हें पता हो कि क्या चल रहा है मन के भीतर। दुनिया के लिए मुस्कान हमारा परचम है।

अक्सर जिंदगी में चीजें देर से मिलती हैं या नहीं मिलती, अक्सर नहीं ही मिलती कुछ चीजें दुनिया में। ये कमियां, ये तकलीफें, ये अड़चनें जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। कई बार दर्द भी दिल के भीतर फूल खिलाता है।

छाया गीत में आज नक्श लाहिरपुरी के नगमे थे, फिल्मों के नाम, फिल्म तुम्हारे लिए।

0: और फिल्म आहिस्ता।
1: आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश की खूब सेवा की है।
2: Professor Dr. Mandal has served over 6 lakh patients in OPD over 35 years and independently performed and supervised 50,000 coronary angiograms and 50,000 angioplasties.
3: Professor Buddh Rashmi Mani, Puratattva Vigyan.
1: भारतीय पुरातत्व विज्ञान के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर प्रोफेसर बुद्ध रश्मि मणि, राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक भी आप रहे हैं, और कहां कहां उत्खनन इन्होंने नहीं किया हमारी सभ्यता के अवशेष खोजने में।
2: While working in the archaeological survey of India, Professor Mani conserved about 150 centrally protected monuments in Maharashtra, Goa, Delhi and Jammu and Kashmir and discovered 200 archaeological sites and he directed 20 expeditions.
3: Shri Nilesh Vinod Chandra Mandlewala, Samaj Seva.
1: ऑर्गन मैन के रूप में जाने जाते हैं और डोनेट लाइफ संस्थान के रूप में इन्होंने बहुत कार्य किया है, खास तौर पर गुजरात और भारत में शव अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाई है।
2: श्री मांडलेवाला, he has a long term vision that by 2047 no citizen should lose life because of the non availability of organs. For that he has traveled extensively across India.
3: Dr. Mahendra Kumar Mishra, Sahitya एवं शिक्षा।
1: लुप्त प्राय जनजातीय आवाजों को आधुनिक शिक्षा शास्त्र में आपने शामिल किया है और आवाजों को संरक्षण करने में 4 दशक से अधिक का समय दिया है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र ने।
2: इंटरनेशनली डॉक्टर मिश्र हैज एडवाइज्ड नेपाल्स एमएलई पॉलिसी, लेक्चर्ड एट चाइनाज कैस, हानयांग यूनिवर्सिटी, साउथ कोरिया, थाईलैंड्स महिदॉल यूनिवर्सिटी एंड रशियाज अकेडमी ऑफ साइंसेज।
3: श्रीमती तृप्ति मुखर्जी, कला कंथा एम्ब्रॉयडरी।
1: कंथा ऐसी कढ़ाई है जो पूरे विश्व में भारत की पहचान है और उसे आगे बढ़ाने में, उसे नए स्वरूप देने में तृप्ति मुखर्जी का बहुत योगदान रहा है।
2: श्रीमती मुखर्जी इज द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड्स सच एज द नेशनल अवार्ड सर्टिफिकेट इन 2010 एंड शिल्प गुरु अवार्ड इन 2016 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शी इज आल्सो बीन एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल by conferring on her the Bangashri Award.
3: Hari Madhav Mukhopadhyay, Kala Theatre, unke putra Shri Krishnendu Mukhopadhyay.
1: आप मशहूर थिएटर निर्देशक, नाटककार और अभिनेता थे। 85 वर्ष की उम्र में 17 मार्च 2025 को आपका निधन हो गया। उनकी बिहाव पर पद्मश्री प्राप्त करने जाती हुई कृष्णेंदु उपाध्याय मुखोपाध्याय।
2: Well, Shri Mukhopadhyay's writings on
3: Satyanarayan Nandlal Nuwal, Vyapar evam Udyog.

0: 74 वर्षीय नुवाल सोलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है पद्मश्री से।
1: Under Srinivas' leadership, Solar became the first Indian company to design, develop and manufacture fully weaponized variants of the Nagastra loiter munition, which has
2: Shri
1: been supplied
2: K. to the Indian Khel Silambam.
0: Silambam, 5000 साल पुरानी भारतीय मार्शल आर्ट है और युद्ध शस्त्र आधारित पद्धति है। इसे आगे बढ़ा रहे हैं के पजानीवेल।
1: Well, Shri Pajanivel was conferred the Academy Puraskar Award of Sangeet Natak Academy, presented by the Honorable President of India in 2023. And he also found the Mamallan Silambam and Folk Arts Development Club in Pondicherry. He has also trained youths who were interested in Silambam.
2: Shri Dharmik Lal Chunilal Pandya, Kala Man Akhyan.
0: 94 वर्ष के हैं आप धार्मिक लाल चुनीलाल पंड्या, और गुजरात की प्राचीन मान भट्ट मान आख्यान परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उस्ताद हैं। आपने पगड़ी पहनी है और व्हील चेयर पर जाते हुए राष्ट्रपति जी खुद अपने आसन से आकर श्री पंड्या का सम्मान।
1: In addition to preserving classical repertoire, Shri Pandya has composed new akhyans on contemporary social themes like water conservation.
2: Shri Kailash Chandra Pant, Sahitya Evam Shiksha.
0: प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक हैं कैलाश चंद्र पंत। मध्य प्रदेश से आते हैं और शुरू से ही पत्रकारिता और खास तौर पर निष्पक्ष पत्रकारिता में आपने अपना अनूठा नाम बनाया।
1: In 1977, Shri Kailash Chandra Pant launched weekly Jan Dharam from November 1980s as secretary of Madhya Pradesh Rashtra Bhasha Prachar Samiti. He revitalized Hindi Bhavan and upgraded the quarterly literary magazine Akshara.
0: Rashtrapati ji swayam ek seedhi utar kar niche aati hui aur Pant ji jo ki 90 saal ke hain unka samman karti hui aur ye kartal dhwani is baat ka prateek ki rashtra ऐसे सेवकों का ऋणी है।
1: His work earned him the विश्व हिंदी सम्मान।
2: श्री गरी मेला बाल कृष्ण प्रसाद मरणोपरांत कला गायन, उनके पुत्र श्री गरी मेला अनिला कुमार।
0: अनिला कुमार उनके ब्याह पर लेगी ये पुरस्कार। गली मेला बाल कृष्ण प्रसाद 78 वर्ष की उम्र में ये देह तो छोड़ गए, लेकिन अपने महत्वपूर्ण कार्यों को राष्ट्र के लिए सौंप गए। प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय और भक्ति संगीत गायक थे आप।
1: Over a career spanning six decades, Shri Prasad presented more than 6,000 concerts across India and internationally.
2: Professor Dr. Rajendra Prasad, Chikitsa, Tuberculosis.
0: 76 वर्षीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सुप्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियन है और क्षय रोग और खास तौर पर क्षय रोगियों की देखभाल और उनकी चिकित्सा में आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है।
1: प्रोफेसर डॉक्टर प्रसाद वाज़ द फर्स्ट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश द एसोसिएशन ऑफ बीडी स्मोकिंग एंड द यूज ऑफ बायोमास फ्यूल स्मोक विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग कैंसर। He has worked on 35 research projects and supervised 185 MD, MS and DM.
2: Dr. Gunduru Venkat Rao, Chikitsa, Gastroenterology.
0: अब एक और चिकित्सक का सम्मान होता हुआ 66 वर्षीय वेंकट राव एक प्रमुख सर्जरी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं और आपने अपनी सर्जरी के जरिए कई लोगों की जान बचाई है।
1: Well, he has performed more than 12,000 complex gastrointestinal surgeries and nearly 16,000 advanced endoscopic procedures. He has also held several important leadership positions.
2: Deepika Reddy, Kala Nritya.
0: 60 वर्षीय दीपिका रेड्डी एक मशहूर कलाकार है, कोरियोग्राफर भी हैं और समर्पित गुरु और एक सांस्कृतिक राजदूत भी है। शास्त्रीय नर्तकों की तीन पीढ़ियों से आप ताल्लुक रखती हैं।
1: श्रीमती रेड्डी वाज द फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ तेलंगाना संगीत नाटक अकादमी गवर्निंग काउंसिल मेंबर संगीत नाटक अकादमी दिल्ली एंड हैज रिसीव्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड्स लाइक संगीत नाटक अकादमी अवार्ड एंड मेनी मोर।
2: डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी चिकित्सा ऑन्कोलॉजी।
0: अगले चिकित्सक पद्मश्री प्राप्त करने जा रहे हैं डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी। 67 साल के हैं और

0: अब मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इनकी यात्रा क्लिनिकल उत्कृष्टता से कहीं आगे जानी जाती है और हैदराबाद में आपने बहुत कार्य किया है।
1: Well, Dr. Reddy has delivered over 921 CME lectures, authored 112 plus publications and organized numerous international conferences to bring cutting-edge technology to Indian practitioners. His advocacy efforts have
2: borne fruit. Shri Haricharan Shaikia, Kala Satriya Nitya.
0: Satriya, Assam ki ek suprasiddh kala. और हरिचरण शैकिया जी, जो कि 94 वर्ष के हैं, व्हीलचेयर पर जाते हुए आपने इस कला का न सिर्फ संरक्षण किया है बल्कि इसे लोगों तक भी पहुंचाया है और बहुत सारे लोगों को सत्रीय कला का प्रशिक्षण भी दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, उनको नमस्कार करते हुए आगे जाते हुए राष्ट्रपति जी आकर उन्हें पद्मश्री प्रदान करती हैं।
1: श्री हरिचरण शैकिया परफॉर्म्ड सत्रीय डांस बिफोर इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आल्सो ही परफॉर्म्ड द बरगीत विद मणिराम गायन मोक्तर एट ऑल इंडिया रेडियो इन 1948।
2: प्रोफेसर वेम्पटि कुटुंब शास्त्री,
0: 86 साल के शास्त्री जी,
2: साहित्य एवं शिक्षा
0: विद्वानों में से हैं। आपने अद्वैत वेदांत दर्शन और संस्कृत काव्य शास्त्र में बहुत सारे कार्य किए हैं। नमस्कार करते हुए, अभिवादन करते हुए अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का, और अब मुड़कर अभिवादन करते हुए राष्ट्रपति जी का पद्मश्री प्राप्त करने जाते हैं।
1: प्रोफेसर वेम्पटि कुटुंब शास्त्री has authored and edited 15 books and more than 50 research papers. He has also guided numerous doctoral scholars and delivered hundreds of lectures.
2: प्रोफेसर शफी शौक, साहित्य एवं शिक्षा।
0: 100 से ज्यादा किताबें आपने लिखी हैं और कश्मीर से आते हैं, और कश्मीरी, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू सब भाषाओं में आपने खूब लिखा है, प्रोफेसर शफी शौक।
1: His translations include his series of books under the title The Best of Kashmiri Literature. He has also written scripts for numerous TV serials and films.
2: श्री बलदेव सिंह खेल, हॉकी कोच।
0: बलदेव सिंह जी ने बहुत सारे हॉकी खिलाड़ी इस राष्ट्र को दिए हैं। एक अनुभवी कोच हैं और आज इन्हें मिलता हुआ पद्मश्री और ये तालियां इस बात का प्रमाण कि उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा।
1: श्री बलदेव सिंह जी इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर डेवलपिंग द शहबाग मारकंडा हॉकी नर्सरी इनटू वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट प्रोडक्टिव सेंटर्स फॉर हॉकी टैलेंट।
2: श्री यमनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत, कला नट संकीर्तन, उनके पुत्र श्री यमनाम बिशन भोर सिंह।
0: आप मणिपुर के पारंपरिक वैष्णव नृत्य और संगीत के प्रतिष्ठित प्रतिपादक थे और बीते वर्ष 11 अक्टूबर को हमारे बीच नहीं रहे, सम्मानित होते हुए यमनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत।
1: His contributions to Nata Sankirtan are timeless. His efforts played a significant role in UNESCO's recognition of Sankirtan as an intangible cultural heritage in 2013.
2: Dr. Ashok Kumar Singh, Vigyan एवं Engineering.
0: अशोक जी ने भारत में बासमती चावल की खेती का कायाकल्प करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और इस कंट्रीब्यूशन के लिए आज राष्ट्र उन्हें सम्मान दे रहा है पद्मश्री का।
1: डॉक्टर सिंह हैज गाइडेड 34 पीएचडी एंड 5 एमएससी स्टूडेंट्स मेकिंग सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशंस टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मेंटरिंग न्यूमरस यंग प्रोफेशनल्स।
2: श्रीमती शिव शंकरी, साहित्य एवं शिक्षा।
0: अब बारी श्रीमती शिव शंकरी जी की। आप 1942 में जन्मी हैं और चेन्नई में इन्होंने बहुत कार्य किया है और खास तौर पर लेखन में सभी भाषाओं में, खास तौर पर तमिल में बहुत सारा इन्होंने लिखा है। 30 से ज्यादा उपन्यास, 40 से ज्यादा लघु उपन्यास, 100 से ज्यादा लघु कथाएं, 16 यात्रा वृत्तांत बहुत लिखा है इन्होंने।
1: Shrimati Shiv Shankari completed her Bachelor of Science degree as a university rank holder, reflecting her early academic excellence. She was also selected as the Woman of the Year 2000 by the International Women's Association. She was also one of the four writers who were recorded in her own voice for the archives of the U.S. Library of

0: see if everybody's standing.
1: राष्ट्रपति जी इस वक्त धीरे धीरे दरबार इस गणतंत्र मंडप से प्रस्थान करती हुई, सबका अभिवादन करती हुई, उनके ठीक पीछे उपराष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी अभिवादन करते हुए, ठीक पीछे अमित शाह जी और मनसुख मांडविया जी, ये तमाम और अब आ रहे हैं ओम बिरला जी, पीछे श्री वेंकैया नायडू जी, तमाम गणमान्य अतिथि धीरे धीरे सबका अभिवादन करते हुए गणतंत्र मंडप से बाहर जाते हुए.
0: And there is a palpable excitement in the hall, which was jam-packed with the awardees and their relatives who had come to receive the prestigious Padma Awards. It is indeed a moment of pride.
2: So please pay your attention, please. I request all the award winners to move towards your right side. Second part of this
1: ceremony. तकनीकी टीम के सदस्य थे अशोक कुमार मिश्र, कमल सिंह और हेमराज मीणा. ओबी इंचार्ज हमारे साथ तुषार पराशर और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर प्रमोद कुमार. मैं महेंद्र सिंह लालस अपनी साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ अब आपको लिए चलता हूं आकाशवाणी के स्टूडियो वापस. नमस्कार.
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से विशेष प्रसारण FM 103 MHz पर आकाशवाणी का यह डाल्टनगंज केंद्र है.

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से, शाम के 6 बजने वाले हैं। शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा प्रादेशिक मुख्य समाचार।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। देवघर एम्स ने आज अपना 8वां स्थापना दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया। समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और सांसद निशिकांत दुबे शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने एम्स की विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं की सराहना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची में वित्त और वाणिज्य कर विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में राज्य की वित्तीय स्थिति और राजस्व संग्रह बढ़ाने पर गंभीर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बजट को सही तरीके से लागू करने और कमाई बढ़ाने के लिए नई तकनीक का उपयोग करने सहित कई जरूरी सुधारों के सुझाव दिए। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल रूप से बदले हुए उस वीडियो को फर्जी बताया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि सभी आधार कार्ड धारकों को इलेक्ट्रिक साइकिलें मिलेंगी। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री और सरकार ने कोई ऐसी घोषणा नहीं की है। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रमा खलखो ने आज धनबाद के सर्किट हाउस में जिला महिला कांग्रेस कमेटी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में संगठन को मजबूत करने और आने वाले चुनावों को लेकर चर्चा हुई। प्रवीण कुमार प्रकाश ने खूंटी जिले के 25वें उपविकास आयुक्त के रूप में आज पदभार ग्रहण किया। उन्होंने निवर्तमान डीडीसी आलोक शिकारी कच्छप से कार्यभार संभाला। पदभार ग्रहण करने के बाद नए डीडीसी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। गढ़वा जिले में पड़ रही भीषण गर्मी और 44 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। आम जनता को लू और तपती धूप से बचाने के लिए राज्य सरकार के मुख्य सचिव के निर्देश पर जिले भर में पानी की पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला

0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक मुख्य समाचार। FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती।

ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेतीबारी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। सभी को कल्याण कुमार का नमस्कार जोहार। श्रोताओं, आज के इस खेतीबारी कार्यक्रम के तहत चर्चा में आप सुनेंगे हरी खाद के प्रकार और उसकी खेती, साथ ही साथ आप सुनेंगे खरीफ की तैयारी। और इसी कार्यक्रम की कड़ी में हम आपको सुनवाएंगे आदर्श ग्राम पदाधिकारी पलामू के डॉक्टर प्रमोद कुमार से ली गई भेंटवार्ता। विषय है मुर्गियों की देखभाल और इनसे बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हुए ये जानते हैं हरी खाद के प्रकार और उसकी खेती। जी हाँ श्रोताओं, हरी खाद एक ऐसी फसल होती है जिसे खेत में उगाकर और फूल आने से पहले मिट्टी में पलट दिया जाता है और इस कारण से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, भूमि में जैविक पदार्थ की मात्रा भी बढ़ती है। हरी खाद प्राकृतिक और टिकाऊ कृषि का एक बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण इससे भाग माना जाता है, क्योंकि इस तरीके से करने से मिट्टी की जो संरचना है वह सुधरती है, नमी भी बरकरार रहती है और रासायनिक उर्वरकों पर भी निर्भरता प्रायः कम होते चली जाती है। हरी खाद के लिए हम महत्व की बात करें श्रोताओं, तो हरी खाद मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करती है। देखा जाए तो दलहनी हरी खाद फसल जो है वह वायुमंडल से नाइट्रोजन को भूमि में स्थिर करती है। इस कारण से मिट्टी जो है वह प्रायः उपजाऊ बनते चली जाती है और फसल को भी पर्याप्त पोषण मिलता है। हरी खाद से मिट्टी में जैविक कार्बन भी बढ़ता है, मिट्टी भुरभुरी और उपजाऊ बनती है, साथ ही साथ खरपतवार भी नियंत्रित होते हैं, जलधारण की क्षमता बढ़ती है और सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ाने में भी हरी खाद जो है वो काफ़ी सहायक सिद्ध होती है। हरी खाद को प्राय दो भागों में बांटा गया है श्रोताओं। पहला जो भाग है वो है दलहनी हरी खाद। इसमें इनके इस प्रकार के जो फसल होते हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को मिट्टी में ही स्थिर करते हैं। यानी कि कहा जाए कि दलहनी फसल जो भी होते हैं उनमें एक राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण कर मिट्टी में से स्थिर करते हैं, सुरक्षित करते हैं। और इसमें यदि देखा जाए श्रोताओ तो सनई, मूंग, उड़द, लोबिया, बरसीम जो है ये प्रमुख दलहनी फसल है। और गैर दलहनी हरी खाद की हम बात करें श्रोताओं तो इसमें प्राय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कम होता है लेकिन जैविक पदार्थ इनमें ज़्यादा पाया जाता है। और इसमें जो आ जाते हैं मक्का, बाजरा, सरसों, ज्वार, तो इस प्रकार के जो गैर दलहनी फसल है इनसे भी हमारी मिट्टी की जो संरचना है वो काफ़ी सुधरती है। श्रोताओं, यदि हम मूंग और उड़द की बात करें तो मूंग और उड़द को हरी खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। इससे खेत में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो बढ़ती है और पशुओं के लिए भी चारा की प्राप्ति हो जाती है श्रोताओं। साथ ही साथ श्रोताओं, हरी खाद से होने वाले लाभ की जब हम बात करते हैं तो इसमें

0: मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है, क्योंकि हरी जो खाद है वह नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ मिट्टी को देती है, जिससे कि जो भूमि है हमारा, जो खेत है, वह उपजाऊ बनते चला जाता है। साथ ही साथ रासायनिक उर्वरकों की भी बचत होती है, क्योंकि हरी खाद के उपयोग से यूरिया या फिर जो भी अन्य रासायनिक जो खाद होते हैं उनकी आवश्यकता कम हो जाती है। मिट्टी की संरचना में भी सुधार होता है, मिट्टी नर्म और भुरभुरी बनती है, इससे इनके जड़ों का विकास भी अच्छा होता है। हरी खाद के उपयोग से मिट्टी में नमी बनी रहती है, और कहीं ना कहीं ये हरी खाद ही है जो मिट्टी में नमी बनाए रखने में मदद करती है। साथ ही साथ मिट्टी में कई ऐसे लाभकारी सूक्ष्म जीव होते हैं जो जैविक पदार्थ बढ़ाने में सहायक होते हैं, तो हरी खाद इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हरी खाद के उपयोग से श्रोताओं ये भी देखा गया है कि खरपतवार की जो वृद्धि है वो प्रायः रुक जाती है, कम हो जाती है। हालांकि देखा जाए श्रोताओं तो हरी खाद के भी कुछ सीमाएं हैं। हरी खाद को उगाने में समय लगता है, साथ ही साथ पानी की भी यानी कि सिंचाई की भी ज़्यादा जरूरत पड़ती है, और मुख्य फसल के लिए समय का प्रबंधन करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशन है। तो इन चीज़ों को यदि देखा जाए तो हमारे किसान भाई अगर समय का सही तरीके से प्रबंधन कर ले तो हरी खाद के साथ साथ अपनी मुख्य फसल को भी ले सकते हैं, और जब आप हरी खाद ले लेते हैं तो निश्चित रूप से इससे आपके खेत की जो उपजाऊपन क्षमता है वो बढ़ती है श्रोताओं। और हरी खाद जो है वो काफ़ी उपयोगी और पर्यावरण के भी अनुकूल होती है, और हरी खाद के उपयोग से श्रोताओं मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है वो काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है, कृषि में लागत में कमी हो जाती है। सनई, मूंग या उड़द जैसे जो फसलें हैं काफ़ी उत्तम हरी खाद के रूप में जानी जाती है, और हमारे किसान भाई यदि नियमित रूप से हरी खाद का उपयोग करें तो भूमि की उत्पादकता तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ रासायनिक खादों का निर्भरता जो है वह प्रायः कम होते चली जाती है, और इस प्रकार से देखा जाए तो खेती जो है वो टिकाऊपन खेती में बढ़ते चला जाता है। तो निश्चित रूप से हरी खाद के उपयोग से फसल के लागत में भी कमी आती है, हमारा पर्यावरण भी अनुकूल होता है, और खरपतवार के नियंत्रण की बात आती है, कीट प्रबंधन के नियंत्रण की बात आती है, तो वो भी काफ़ी हद तक नियंत्रित हो जाती है श्रोताओं। तो निश्चित रूप से श्रोताओं यदि आपके पास समय का प्रबंधन या फसल का प्रबंधन अच्छे तरीके से कर सकते हैं, या खाली जमीन है जिस पर आप प्रायः खेती नहीं कर पाते हैं, तो उन जगहों पर भी आप हरी खाद का फसल लगाकर इसका लाभ ले सकते हैं श्रोताओं, क्योंकि हरी खाद काफ़ी उपयोगी और काफ़ी लाभकारी फसलें मानी जाती है। तो श्रोताओं ये तो थी बातें हरी खाद के प्रकार और उसकी खेती के बारे में, और अब आइए हम आपको सुनवाते हैं आदर्श ग्राम पदाधिकारी पलामू के डॉक्टर प्रमोद कुमार से ली गई भेंटवार्ता। विषय है मुर्गियों की देखभाल, और इनसे बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार।
1: घर के कार्य में लगे सभी किसान भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसानवाणी में। ग्रामीण भाइयों, कार्यक्रम में आज हम लोग बातें करेंगे स्वरोजगार की, और स्वरोजगार में बातें होंगी मुर्गी पालन की। विशेषकर हमारे बहुत से ग्रामीण भाई बहन मुर्गी पालन करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक तकनीकियां नहीं अपनाते हुए वे देख रेख नहीं कर पाते, जिससे लगाई गई पूंजी का कई गुना लाभ उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता। अतः मुर्गियों की देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए जिससे बेहतर मुनाफा हमें प्राप्त हो सके, मुर्गियों के की जो उत्पादन और क्षमता है उसमें बढ़ोतरी हो सके, इन तमाम बातों से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ हैं पलामू जिला के आदर्श ग्राम पदाधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। स्वागत है आपका सर कार्यक्रम में, नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: हमारे ग्रामीण भाई बहन किस प्रकार मुर्गियां की देख रेख करें सर, किस प्रकार उनकी उत्पादन क्षमता जो उसमें बढ़ोतरी लाएं, इन तमाम बातों से संबंधित जानकारियां हमारे किसान भाइयों को दी जाए।
2: बिल्कुल, आपने सही कहा कि कैसे किसान भाई मुर्गी पालन कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से वैज्ञानिक रूप से करें कि उनकी आजीविका बेहतर हो सके। जब उनका उत्पादन अधिक होगा तभी उनकी आजीविका बेहतर हो सकती है। इस दिशा में मैं किसान भाइयों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी मुर्गी पालक हैं, अगर मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले उनके आवास पर ध्यान देना चाहिए। जब भी मुर्गियों के लिए आवास बनाने लगें, मुर्गी घर बनाना शुरू करें, तो आप उसे ये देख लें कि वो रोड्स के नज़दीक है कि नहीं, दूसरा

0: उसमें नीचे बरसात में जमीन में जो फर्श है वो उसमें सीलन नहीं हो, थोड़ी सी ऊंची जगह पर बनाएं।
1: जी
0: दूसरा ये ध्यान रखें कि बरसात के दिनों में छज्जा होता है वो 4 फीट से 9 फीट रखें, ताकि बरसात का जो पानी है वो मुर्गी घर के अंदर न जाए। और ध्यान रखना चाहिए कि बीच में

0: आप 30 फीट लंबा जो है पूरब से पश्चिम की ओर बना सकते हैं और 20 फीट उत्तर से दक्षिण की ओर चौड़ा करेंगे। तो इससे 600 स्क्वायर फीट का आपका मुर्गी फार्म बन जाएगा, जिसमें कि आप 400 अंडे देने वाली मुर्गी, जिसको कि अंडे देने वाली मुर्गी को हम लोग लेयर बर्ड कहते हैं,
1: जी
0: तो आप इस 400 अंडे देने वाली के लिए आप 600 स्क्वायर फीट का घर बनाएंगे। लेकिन इसी तरह से कोई हमारे मुर्गी पालक भाई चाहते हैं कि नहीं, हम अंडे पालन करने वाली मुर्गी नहीं रखें बल्कि इसके बजाय मांस वाली मुर्गियाँ रखें, तो वो 500 चूजे के लिए प्रति एक स्क्वायर फीट के हिसाब से 500 चूजों के लिए 500 स्क्वायर फीट का घर बनाना होगा। तो उसके लिए वो 20 फीट चौड़ा और 25 फीट लंबा पूरब से पश्चिम की ओर 500 स्क्वायर फीट का शेड बनाएं, तो ये उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। ये जब ऊंचाई अधिक रखने से क्या होता है, बीच में 14 फीट रखना है और साइड वाले दीवार 9 फीट रखेंगे, मुर्गी घर के अंदर गर्मी बहुत पैदा नहीं हुई गर्मी के दिनों में। और जाड़े के दिनों में आप उसमें चूंकि जाली लगाए हुए हैं तो उसके ऊपर प्लास्टिक देकर के हवा को रोक सकते हैं। अगर जाली आप नहीं लगाते हैं आवास में, तो चूंकि मुर्गियाँ जहाँ पर रहती हैं तो उनका लीटर है, मैंने जो हम हिंदी में कह सकते हैं उसका पेशाब और पैखाना दोनों एक साथ आता है, उसमें अमोनिया की बहुत मात्रा होती है। और अगर आप जाली नहीं देंगे तो ये अमोनिया की मात्रा अधिक होने से, ये भारी गैस है, उस स्थिति में मुर्गियों को बार बार अमोनिया लेने के कारण ऑक्सीजन कम होने लगती है, तो मुर्गियाँ हाँफने लगती हैं। तो ऐसे में मुर्गियाँ जब हाँफने लगेंगी तो उनका उत्पादन घट जाएगा। तो किसान भाइयों को आवास बनाते समय इतना जरूर सुनिश्चित कर लें कि जहाँ भी आवास है वहाँ पर बिजली, पानी, सड़क और सुरक्षा और बाजार की कितनी दूरी है, अगर इतना है तो आपका आवास सही है। इसके बाद दूसरी बात आती है कि आप अगर मुर्गी पालन करने चल रहे हैं तो फिर हम हैं कि चूजा, तो ये चूजे दो तरह के होते हैं, जैसा मैंने पहले बताया कि आप मांस के लिए मुर्गी पाल रहे हैं या अंडे देने के लिए। और तीसरा आपका विकल्प हो सकता है कि न मांस के लिए न अंडे के लिए बल्कि बीज का आप कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप पहले हम बात करें मांस वाली मुर्गी, अभी मांस वाली मुर्गियां चूंकि 25 दिन में अब 1 किलो के आसपास हो जा रही हैं और लोग 35 दिनों में उसे हटा दे रहे हैं, ब्रायलर मुर्गी कर रहे हैं तो ब्रायलर का चूजा खरीदेंगे। इसी तरह से दूसरा हुआ अंडे देने वाली मुर्गियां, तो कुछ जो अंडे देने वाली मुर्गियां हैं वो अभी सोलोनी वगैरह हैं जो कि आपको 280 अंडे प्रतिवर्ष देंगी। ये मुर्गियाँ 4 महीने के बाद, मतलब 5 महीने के आसपास ये अंडे देना शुरू कर देती हैं, तो आपको अगले 1.5 साल तक अच्छे अंडे देती हैं। इसके बाद इनके अंडे का उत्पादन घटने लगती है, तो इन दोनों में आप डिसाइड कर लेंगे। तीसरा जो हमने कहा वो है कि आप वन राजा, वन रानी, कैरी निर्भीक, ये किस्म की जो आ रही हैं नस्लें, ये आपको लगभग 150 से लेकर 200 तक अंडे साल में देंगी। इन्हें आप थोड़ा बहुत आंगन में चरा भी सकते हैं और उससे इनको रख सकते हैं। अब आती है बात तीसरा, मुर्गियों को हम टीकाकरण कैसे करेंगे। तो टीकाकरण में है कि आपका मेरिस डिजीज की टीका जो है, जो बाजार से आप चूजा खरीदेंगे, वो 1 दिन में ही वहाँ से कंपनी दे करके कहीं भेजती है, तो मेरिस बीमारी का टीका आपको लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा आता है रानीखेत, तो रानीखेत का टीका जो है सभी मुर्गियों को 3 से 4 दिन के अंदर आँख में या नाक में आपको एक एक बूंद पिला देना है,
1: जी
0: आँख या नाक में डालना है।
1: जी
0: इसके बाद आपको 21वां दिन जो है रानीखेत का, आप ये फोन हम लोग दे दिया है, अब इसके बाद हम लसोटा उसको जो है 21वां दिन पानी में घोल करके पिलाते हैं।
1: अच्छा,
0: और इसके बाद जो है मांस वाली मुर्गियाँ चूंकि इनके बाद ये रहती नहीं है तो इनमें तो वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने अंडे देने वाली मुर्गी को रखा है तो आपको तीसरा जो रानीखेत का वैक्सीन है वो 2 महीने पर R2B वैक्सीन हर एक मुर्गी को, जो उसका पंख है उसके डीएनए में या मांस में, आप उसको एक एक इंजेक्शन आपको देंगे तो रानीखेत से बचाव होगा। दूसरा, मुर्गियों में एक मुर्गी चेचक होता है जिसमें कि आपको कलगी में आप देखेंगे कि दाने दाने उभर जाते हैं, तो उसके लिए भी आपको 2 महीने पर एक एक पंख को निकाल करके वहाँ पर दवा लगा दी जाती है। तो
1: अच्छा।
0: इस तरह से मुर्गियों का ये टीकाकरण कार्यक्रम हुआ। इसके बाद आता है कि हम अगर चूजे लेके आते हैं तो हमें घर में क्या करना चाहिए। जैसे चूजा आने के पहले आप ये निश्चित रूप से कर लें कि जो आपका मुर्गी घर है उसमें नीचे जो है आप लकड़ी का बुरादा जो है या चावल का कोढ़ा है उससे 2 से 3 इंच तक उसको बिछा दें पूरी तरह से, और उसके बाद जो है वो पूरे घर को आप दो तरह से सैनिटाइज कर सकते हैं, चूना का पोचारा कर सकते हैं या फिर आप उसमें फॉर्मलिन मिला करके भी पोचारा कर सकते हैं। कुछ दवाइयाँ एंटीसेप्टिक्स आती हैं, उन्हें आप कोहरसोलिन TH नाम की, उसे आप 1 लीटर में 2 ml दवा मिला करके पूरा स्प्रे कर दीजिए दीवार पर, खिड़की पर, उसके जाली पर, ताकि वहाँ कोई और बीमारी ना हो। जब इतना हम कर ले

0: लेते हैं, बायो सिक्योरिटीज कर लेते हैं, और दूसरी बात की सावधानी रखें कि जहाँ भी आप फार्म वाली मुर्गी रखें वहाँ पर देसी मुर्गी ना रखें, क्योंकि देसी मुर्गियों में अगर टीकाकरण नहीं किया गया है तो वो आपके मुर्गियों को ग्रसित कर सकती हैं। जब आपके घर में चूजा आ गया है तो आप उसे आटे के साथ चूजे को पेपर बिछा दें, पेपर के ऊपर में जो है मुर्गियों को और बी कॉम्प्लेक्स का सिरप या लिवर टॉनिक का सिरप आप 1 लीटर पानी में 5 से 7 ml मिला कर करके जो मुर्गी का पिलाने का बर्तन है उसमें उसको दे दें। साथ में आप तुलसी के छोटे छोटे मुलायम पत्ते भी दे सकते हैं। इस तरह से जब आप एक दिन उसको मुर्गियाँ जब भी अंडे देती हैं तो उनके 72 घंटे के बाद ही उनको भोजन देना होता है
1: जी।
0: तो आप उस 72 घंटे कंपनी के रिकमेंडेशन के हिसाब से देखने के बाद तब भोजन आप देना शुरू करें। ये भोजन देने में आपको ध्यान रखना है कि 3 तरह का मुर्गियों का भोजन होता है। एक स्टार्टर हम लोग बोलते हैं जो हम लोग पहला दिन से 10वां दिन तक देते हैं, इसके बाद ग्रोवर देते हैं 10 से 20 दिनों तक, और 20 दिनों के बाद जो है हम लोग उसको फिनिशर राशन बोलते हैं, या आप लेयर मुर्गी में कहिएगा तो लेयर राशन कहलाएगा। पहला जो हम लोग ने स्टार्टर देते हैं उसमें हमारा जो प्रोटीन का ये होता है वह लगभग 23 से 24% होता है, और प्री स्टार्टर में जो है 21 से 22% होता है, और फिनिशर में 19 से 20% प्रोटीन होता है। इसी तरह से इसमें एनर्जी जो है प्री स्टार्टर में 2900 किलो कैलोरी होगा, स्टार्टर में जो है 2950 किलो कैलोरी होगा, और फिनिशर में जो है 3000 किलो कैलोरी होता है
1: जी।
0: तो ये भोजन हो गया। इसके बाद हम जब मुर्गियों को लाते हैं तो मुर्गियां चूंकि जाड़े के दिनों में खास करके जब लाते हैं तो उन्हें मुर्गी उनके साथ नहीं होती तो उनको गर्मी चाहिए, तो इसके लिए हम लोग ब्रूडर व्यवस्था करते हैं। तो ब्रूडर में आप बल्ब जला करके देखना है आपको कि अगर आपका बल्ब का पावर सही है, वो 95 डिग्री फॉरेनहाइट अगर रूम का टेम्परेचर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको आप ऐसे टेस्ट कर सकते हैं कि बल्ब लगाइए और ब्रूडर के घेरा बनाइए और घेरा बना करके देखिए कि अगर आपकी चूजे जो बच्चे हैं अगर एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं इसका मतलब है कि उन्हें ठंड लग रही है, तो आप पावर बढ़ा दीजिए। और अगर लगता है कि नहीं जहाँ बल्ब जल रहा है उससे दूर दूर आपके चूजे जा रहे हैं तो इस स्थिति में आप बल्ब के पावर को कम कर दीजिए ताकि उनको लग रहा है कि ज़्यादा गर्मी लग रही है तो किनारे भाग रहे हैं, तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात कि ये सावधानी रखने के लिए कि जाड़े के दिनों में थोड़ा पानी तो सभी दिनों सालों भर आपको साफ पानी पिलाना है, लेकिन इसका टेम्परेचर जो है वो कोशिश करिए कि 15 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हो। गर्मी के दिनों में अगर बहुत गर्म पानी देंगे तब भी वो नहीं पिएगा, और जाड़े के दिनों में ठंडा पानी हो तब भी नहीं पिएगा, तो इसको टेम्परेचर को निश्चित रूप से मेंटेन करने की कोशिश करें। और गर्मी के दिनों में 2 बार पानी को बदलें, और जाड़े के दिनों में 1 बार पानी का बर्तन को साफ करके बदल दिया करें। इस तरह से मुर्गियों में 7 दिन पर ही सफाई का ये किया जाता है, ऐसे ब्रॉयलर मुर्गी में तो हम लोग 1 बार ही ये करते हैं सफाई जैसो, क्योंकि हम लोग का उस फार्मूला ये है कि ब्रॉयलर मुर्गी रखे हुए हैं तो आप एक साथ ही 600 के 600 मुर्गी को बेच दीजिए और फिर नया का नया पूरा डालिए, इसको ऑल इन ऑल आउट कहता है।
1: अच्छा।
0: इससे फायदा क्या होगा कि अगर उसमें से कोई बीमारी है भी तो वो 7 बाहर जाएगी, और जो नई मुर्गी आएगी उसको हम सैनिटाइज करके करेंगे तो हमको दूसरी मुर्गियों में बीमारी नहीं फैलेगी, तो इसलिए ऑल इन ऑल आउट जो है यही बेस्ट अभी माना जा रहा है। इस तरह से किसान भाई अगर करेंगे, और दूसरी बात आती है अंडे देने वाली मुर्गी, तो आप अंडे देने वाली मुर्गी को 4 महीने के बाद आप रखते हैं तो उसमें अगर लाइट की व्यवस्था अच्छी रखते हैं, लाइट की व्यवस्था प्रकाश की व्यवस्था दोनों मुर्गियों में ज़रूरत है, क्योंकि जो ब्रॉयलर मुर्गी है अगर उसे लाइट अब 14 घंटे देंगे तभी वो भोजन करेगी और जल्दी जल्दी अपना वजन गेन करेगी बढ़ाएगी। इसी तरह से अंडे देने वाली मुर्गियों में भी अगर 14 घंटे का आप लाइट देते हैं तो उनका भोजन वो ज़्यादा लेंगे और उनके अंडे भी अच्छे आएंगे और अधिक मात्रा में उत्पादित होती है। इसी तरह से इनमें कुछ बीमारियां हैं जैसे कोक्सीडियोसिस की बीमारी है, तो आपके इस स्थिति में अगर आपके यहाँ पतला दस्त हो रहा है और उसमें लाल पैखाना हो रहा है तो ये कोक्सीडियोसिस है, तो आप अपने डॉक्टर से जो नज़दीक में पशु चिकित्सक हैं प्रखंड में या अस्पताल में उनसे मिल करके आप एम्प्रोलियम या फिर सल्फा मेथोक्साजोल विथ टाइमोथोप्रीम की दवा आती है आप उसे दे सकते हैं। इसी तरह से अगर मुर्गियों में सर्दी होती है तो आप सिफेलेक्सिन पाउडर आता है घोल करके, या इनरोफ्लोक्सासिन का भी आता है उसे घोल करके आप मुर्गियों को पिला सकते हैं। तो ये आप अपनी जानकारी किसान भाई अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय से प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी हाँ ग्रामीण भाइयों, जी हाँ किसान भाई बहन, बातें हो रही थी मुर्गियों की देखभाल हम किस प्रकार से करें कि ताकि हम ज़्यादा उत्पादन ले सकें मुर्गियों से, अंडे ज़्यादा उत्पादित कर सकें। और मालामाल हो सके।

0: जी हाँ किसान बंधु। और मुर्गियों की देखभाल किस प्रकार करें, किस प्रकार उत्पादन बेहतर रूप से प्राप्त करें, इन तमाम बातों पर जानकारियां साझा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में थे पलामू जिला के आदर्श ग्राम पदाधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। सर आप कार्यक्रम में आए और हमारे ग्रामीण भाइयों को मुर्गी पालन से संबंधित जानकारियां साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार जी। हर्षोत्तम, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रमोद कुमार से ली गई भेंटवार्ता। विषय था मुर्गियों की देखभाल और इस इनसे बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। और अब आइए जानते हैं खरीफ की तैयारी। जी हर्षोत्तम, खरीफ फसलें मुख्य रूप से वर्षा के ऋतु में ही बोई जाती है, यानी कि वर्षा काल में ही इसकी जो खेती है की जाती है और बुआई प्रायः जून से जुलाई के बीच होती है और कटाई जो है सितंबर से नवंबर माह तक के बीच में की जाती है। इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो धान, मकई, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, अरहर जैसे प्रमुख खरीफ फसलों की खेती की जाती है। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए खरीफ फसलों के लिए उचित तैयारी जरूरी हो जाता है। श्रोताओं, खरीफ फसलें हमारे खाद्य सुरक्षा और हमारे किसान भाई के आय की वृद्धि में ये काफ़ी प्रमुख भूमिका भी निभाती है। देखा जाए तो धान भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल के रूप में देखी जाती है। खरीफ मौसम में पर्याप्त वर्षा होने से सिंचाई पर होने वाला खर्च भी बचता है और मिट्टी में भी नमी बनी रहती है। श्रोताओं, खरीफ फसल की तैयारी के लिए हमें अपने खेतों की तैयारी यानी कि भूमि की भी तैयारी जरूरी हो जाती है। इसके लिए सबसे पहले तो है कि खेत की गहरी जुताई करना, जिससे कि मिट्टी भुरभुरी हो सके और साथ ही साथ पुराने खरपतवार भी इसमें नष्ट हो जाते हैं। इसलिए स्वतः 2 से 3 बार हल या कल्टीवेटर चला कर मिट्टी को समतल भी बनाया जाता है और इस प्रक्रिया के दौरान इस बात को भी सुनिश्चित किया जाता है कि पानी न रुके, यानी कि जल निकास की समुचित व्यवस्था हो। धान जैसी फसलों के लिए खेत का समतल होना जरूरी है, जिससे कि पानी समान रूप से सभी क्षेत्रों में फैल जाए। खरीफ फसल के बोने से पहले मिट्टी की भी जांच काफ़ी लाभकारी मानी जाती है श्रोताओं, क्योंकि इससे यह पता चल जाता है कि खेत में, मिट्टी में, भूमि में कौन से पोषक तत्वों की कमी है और उसी के अनुरूप खाद और उर्वरक का उपयोग किया जाता है। इससे लागत भी कम होती है और उत्पादन भी बढ़ता चला जाता है। जब भी आप खरीफ फसल में बीजों की बुआई करें तो इस बात को सुनिश्चित कर लें कि अच्छे गुणवत्तापूर्ण ही बीजों का चयन करें, यानी कि प्रमाणित और रोगमुक्त ही बीज का चयन करें और साथ ही साथ जो भी स्थानीय जो जलवायु है, जो भी मिट्टी है, उसके अनुसार ही उत्तम किस्मों का ही बीजों का चुनाव करें। श्रोताओं, इसमें धान, मक्का, बाजरा, सोयाबीन जैसे खरीफ फसलों के लिए काफ़ी उन्नत किस्में जो है वह मिल जाते हैं, बाजार में भी उपलब्ध है और कृषि विज्ञान केंद्र से भी या सरकारी बीज केंद्र से भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। और श्रोताओं, बीज को बोने से पहले इसे बीजोपचार जरूर कर लें, इससे बीज में जो भी रोग लगने की बातें आती है उससे कहीं ना कहीं सुरक्षा प्राप्त हो जाती है और साथ ही साथ इसका अंकुरण भी श्रोताओं काफ़ी अच्छा हो जाता है। खेत की तैयारी के समय गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट को डालें, इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के अनुसार ही करना जरूरी हो जाता है। श्रोताओं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का संतुलित उपयोग करें, क्योंकि यह फसल की वृद्धि के लिए बहुत ही जरूरी होता है। धान और मक्का जैसे फसल के लिए श्रोताओं नाइट्रोजन की ज़्यादा भी जरूरत पड़ती है। वहीं खरीफ फसलें देखा जाता है श्रोताओं, तो ये वर्षा पर, मानसून पर निर्भर करता है, इसलिए वर्षा जल का सही तरीके से प्रबंधन भी जरूरी हो जाता है। खेत में ज़्यादा पानी ना जमा हो, जल निकासी की उचित व्यवस्था हो और कम वर्षा होने पर सिंचाई की भी व्यवस्था का होना आवश्यक हो जाता है। श्रोताओं, मेड़बंदी और वर्षा जल संचयन से भी खेत में नमी बनी रहती है और मिट्टी का कटाव भी कम होता है। श्रोताओं, खरपतवार फसल के लिए पोषक तत्व और नमी को नुकसान पहुंचाते हैं। जहाँ श्रोताओं, खरपतवार जो है कहीं ना कहीं हमारे फसल को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए जरूरी हो जाता है समय समय पर निराई और गुड़ाई। बुआई के 20 से 25 दिन के बाद ही पहला बार इसकी निराई करें और आवश्यकता पड़े तो फिर खरपतवार नाशी का

खरीफ मौसम में नमी के ज़्यादा होने से स्वतः कीट और रोगों का प्रकोप बढ़ता है। इसलिए अपने फसल की निगरानी करते रहें और कोई भी फसल यानी कि कोई भी पौधा यदि आपको लगे कि वह रोगग्रस्त है तो उसे तुरंत हटाएं और साथ ही साथ संतुलित उर्वरक का ही उपयोग करें। जैविक कीटनाशक और नीम आधारित दवाओं का उपयोग करें क्योंकि यह पर्यावरण और फसल दोनों के लिए काफ़ी सुरक्षित मानी जाती है। खरीफ फसल की बुआई मानसून आने के तुरंत बाद करना चाहिए। समय पर बुआई करने से पौधों को पर्याप्त नमी मिलती है श्रोताओं और उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होता है। देर से बुआई करने पर रोग और कीटों का खतरा बढ़ता है। इसलिए श्रोताओं खरीफ मौसम में समय अनुसार बीजों का बुआई जरूर करें और आधुनिक कृषि तकनीक को अपनाएं जिसमें कि ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, पावर टिलर, स्प्रे मशीन, इन चीज़ों का उपयोग करें जिससे कि समय और श्रम दोनों की बचत हो जाती है। श्रोताओं खरीफ फसल की बुआई के समय कुछ सावधानियां भी रखें। हमेशा प्रमाणित बीज का उपयोग करें, जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें, संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें, समय पर निराई और गुड़ाई करते रहें, रोग और कीट पर ध्यान रखें और वर्षा के अनुसार स्वतः सिंचाई का प्रबंधन करें। तो देखा जाए स्वतः अगर इन बातों का अगर ख्याल रखा जाए तो निश्चित रूप से खरीफ के मौसम में भी ज़्यादा उत्पादन प्राप्त हो जाता है और इससे कहीं ना कहीं आय में बेहतर लाभ मिलता है। इसके लिए जरूरी है भूमि की सही तैयारी, उन्नत बीज, संतुलित खाद, जल प्रबंधन और कीट का नियंत्रण। और श्रोताओं यदि वैज्ञानिक तरीके से खेती करें तो यह खेती जो है वो काफ़ी कम लागत में हो जाती है और उत्पादन भी बढ़ जाता है। इसलिए श्रोताओं खरीफ की फसल के दौरान सावधानी और योजना दोनों के साथ कार्य करें तो निश्चित रूप से खरीफ की फसल से लाभ ही प्राप्त होते हैं। तो श्रोताओं ये तो थी बातें खरीफ की फसल की तैयारी और अब इसी के साथ खेती बाड़ी से हमें दीजिए इजाज़त।

जी हर्षो, तो अभी आप सुन रहे थे ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेती बाड़ी, और अब आइए सुनते हैं कृषकों को संबोधित कार्यक्रम ग्रामीण सभा। तो ग्रामीण सभा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है, सभी को पुनः कल्याण कुमार का नमस्कार जोहर। श्रोताओं, आज की इस ग्रामीण सभा के तहत चर्चा में आप जानेंगे मछली पालन हेतु तालाब की तैयारी, साथ ही साथ आज की बात का विषय है अंतर्वर्ती खेती से लाभ। और इसी कार्यक्रम की कड़ी में हम आपको सुनवाएंगे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार से ली गई भेंटवार्ता। विषय है मोटे अनाजों में शामिल फसलें एवं उसकी वैज्ञानिक खेती, और इनसे बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार, और आज का मौसम का मिजाज भी हम आपको आज के इस कार्यक्रम में बताएंगे। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं और आइए जानते हैं मछली पालन हेतु तालाब की खेती। जी हाँ श्रोताओं, मछली पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार का एक महत्वपूर्ण और सशक्त साधन है। वैज्ञानिक तरीके से यदि मछली पालन किया जाए तो कम लागत में ज्यादा लाभ मिल सकता है, और सफल मछली पालन के लिए तालाब की उचित तैयारी जरूरी हो जाती है, क्योंकि तालाब के सही प्रकार के या सही तरीके से होने से ही मछलियों की वृद्धि होती है, रोग कम लगते हैं और उत्पादन ज्यादा मिलता है। तो श्रोताओं, तालाब का चयन करने की जब बात आती है तो ऐसे स्थान पर इसका चयन करें जहां वर्षा भर पानी उपलब्ध रहे। तालाब ऐसी भूमि में हो जहां पानी लंबे समय तक रुका रहे। दोमट या चिकनी मिट्टी वाली भूमि तालाब निर्माण के लिए काफी उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इसमें पानी का रिसाव कम होता है। तालाब का स्थान सड़क और बाजार के पास हो, जिससे कि मछली बिक्री में सुविधा हो। तालाब में पानी भरने और निकालने की भी व्यवस्था अच्छे तरीके से होनी चाहिए। और अब बात आती है श्रोताओं तालाब के आकार और उसकी गहराई की। तालाब का आकार भूमि और उसके पालन के

उद्देश्य पर निर्भर करती है श्रोताओं। इसलिए प्राय देखा गया है कि आयताकार तालाब सबसे अच्छा माना जाता है, जिसमें तालाब की जो गहराई है 1.5 से 2 मीटर गहरी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गहराई होने पर सूर्य का प्रकाश नीचे नहीं जा पाता है, और जबकि कम गहराई होने पर पानी जल्दी गर्म हो जाता है। इसलिए श्रोताओं 1.5 से 2 मीटर की गहराई अपने तालाब का जरूर रखें। नई और पुराने दोनों प्रकार के तालाबों में मछली पालने से पहले तालाब की अच्छे तरीके से सफाई कर ले। तालाब में यदि घास उगी हो, खरपतवार हो या अनावश्यक पौधे हो तो उसे जरूर हटा दें, क्योंकि इससे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहती है, और जब ये रहते हैं खरपतवार वगैरह तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो प्रायः कम होती चली जाती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होने से ही मछलियों की वृद्धि भी अच्छे तरीके से होती है। और श्रोताओं यदि पुराना तालाब हो तो उसमें जमा कीचड़ को निकाल दें। अधिक कीचड़ होने से पानी दूषित हो जाता है और मछलियों में रोग लग सकते हैं। तालाब में पहले से हानिकारक या मांसाहारी मछलियां हों तो उसे जरूर हटा दें, क्योंकि यह छोटी मछलियों को खा सकती है और तालाब को भी सुखा सकती है। इन हानिकारक मछलियों को हटाने के लिए भी श्रोताओं तालाब को भी आप सुखा सकते हैं, और साथ ही साथ महुआ जैसी खली का भी प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि महुआ खली का उपयोग करने से जो भी अवांछित मछलियां हैं वह नष्ट हो जाती है और बाद में यह खाद का काम करती है। तो इस तरीके से भी हम हानिकारक या मांसाहारी जो जीव मछलियां हैं उन्हें हम हटा सकते हैं। तालाब की मिट्टी और पानी को रोग मुक्त बनाने के लिए श्रोताओं तालाब को कुछ दिनों के लिए सुखाना लाभकारी माना जाता है, क्योंकि धूप लगने से हानिकारक जीवाणु और परजीवी जो हैं वह नष्ट हो जाते हैं। तालाब के सूखने से तल की मिट्टी में ऑक्सीजन का संचार भी बढ़ता है, इसलिए श्रोताओं तालाब का सुखाना लाभकारी होता है। और साथ ही साथ श्रोताओं तालाब की मिट्टी और पानी की अम्लीयता को संतुलित करने के लिए चूना का उपयोग किया जाता है, क्योंकि चूना रोगाणु को तो नष्ट करता ही है, साथ ही साथ पानी की गुणवत्ता भी यह सुधारता है। तो चूना की जो मात्रा होती है श्रोताओं वह मिट्टी के प्रकृतिक पर निर्भर करती है। यह देखा गया है कि 200 से 500 किलोग्राम चूना प्रति हेक्टेयर उपयोग किया जाता है, क्योंकि चूना डालने के पश्चात तालाब को कुछ दिनों के लिए खाली छोड़ देना भी जरूरी माना जाता है। तालाब में प्राकृतिक भोजन उत्पन्न करने के लिए गोबर की खाद और रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया जाता है। गोबर की सड़ी खाद डालने से पलवक जो होते हैं वे ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, जो मछलियों का प्राकृतिक भोजन होते हैं। 5000 से 10000 किलोग्राम गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर डाली जानी चाहिए, और जरूरत पड़ने पर यूरिया और साथ ही साथ सिंगल सुपरफास्फेट का भी उपयोग किया जा सकता है। श्रोताओं तालाब में हमेशा स्वच्छ और प्रदूषण रहित पानी भरे, पानी धीरे धीरे भरे। तालाब में इतना पानी होना चाहिए कि मछलियां आसानी से तैरें और पर्याप्त ऑक्सीजन को प्राप्त करते रहे। पानी भरते दौरान श्रोताओं जाली का उपयोग करें, जिससे कि बाहरी हानिकारक मछलियां या जीव जो है वो प्रायः अंदर प्रवेश ना करें। और श्रोताओं जब तालाब की तैयारी पूरी हो जाती है तो उसमें स्वस्थ और उन्नत गुणवत्ता वाले बीज मछली के जो है वो बीज का उपयोग करें। बीज डालने से पहले तालाब के पानी के तापमान को जरूर जांच लें और अनुकूल होने पर ही मछली के बीज का उपयोग करें। देखा जाता है कि रोहू, कतला, मृगल इन मिश्रित मछलियों का पालन काफी लाभकारी माना जाता है। मछली की अच्छी वृद्धि के लिए श्रोताओं पानी की गुणवत्ता को बनाए रखना भी जरूरी है। पर्याप्त मात्रा में पानी में ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए। पानी का रंग हल्का हरा होना काफ़ी अच्छा माना जाता है श्रोताओं, और ज़्यादा पानी गंदा हो तो आंशिक रूप से पानी को बदलें और समय समय पर पानी की जांच भी करते रहें। श्रोताओं मछलियों में रोग फैलने से काफ़ी नुकसान हो सकता है, इसलिए तालाब को साफ रखें, संतुलित भोजन दें, स्वस्थ बीज डालें और रोग के लक्षण दिखाई पड़ने पर तुरंत विशेषज्ञ से इसकी सलाह लें। साथ ही साथ श्रोताओं तालाब में प्रदूषित पानी का उपयोग न करें, अत्यधिक खाद का भी प्रयोग न करें और नियमित रूप से तालाब की निगरानी भी करें।
मछलियों को संतुलित आहार दें और तालाब के किनारों को मजबूत रखें। श्रोताओं,

0: बातों का अगर ख्याल रखा जाए तो निश्चित रूप से इसका लाभ हमें प्राप्त होता है। तालाब की सफाई, चूना का उपयोग, खाद का प्रबंधन और जल गुणवत्ता, इन बातों का यदि ख्याल रखा जाए और साथ ही साथ वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन किया जाए तो निश्चित रूप से तालाब में मछलियाँ जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है और इससे ज़्यादा लाभ मिलता है श्रोताओं। और आज के समय में देखा जाए तो मछली पालन जो है वो काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र के लिए या हमारे जो भी युवा भाई है उनके स्वरोजगार का एक काफ़ी प्रभावी और सशक्त माध्यम बन गया है और लोग इस मछली पालन कर अपने जीविका को सफलतापूर्वक चला भी रहे हैं। तो श्रोताओं ये तो थी बातें कि मछली पालन हेतु तालाब की तैयारी, कि किस तरीके से हम तालाब की तैयारी करें और किस तरीके से हम मछली पालन कर इसका भरपूर लाभ लें। तो श्रोताओं अब इसी चर्चा के साथ आइए अब आपको हम सुनवाते हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार से लिखे भेंटवार्ता। विषय है मोटे अनाजों में शामिल फसलें एवं उसकी वैज्ञानिक खेती। इनसे बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार।
1: तो से घर वापस आए, गांव घर के कार्य में लगे, चौपाल में उपस्थित सभी किसान भाई बहन, बालकों, बुजुर्गों को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसानवाणी में। जी हाँ किसान भाइयों, हम बहुत सारी फसलों की बातें आपसे करते हैं, ढेर सारी योजनाओं की बात करते हैं, तरह तरह की बातें किसानवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपसे साझा करते रहते हैं। आज हम बातें करेंगे मोटे अनाजों की खेती की। जी हाँ, जिसकी आज आवश्यकता है और सरकार इस पर बहुत बल दे रही है ताकि हमारे किसान भाई मोटे अनाजों की खेती करके वो देश को स्वस्थ रख सकें और अधिक से अधिक मुनाफा भी प्राप्त कर सकें। और मोटे अनाजों में कौन सी फसलें मुख्यतः शामिल हैं और इसकी वैज्ञानिक खेती हम कैसे करें, इसके अतिरिक्त तो और भी ढेर सारी बातें हैं मोटे अनाजों से संबंधित। इस विषय पे संबंधित आज हम विस्तृत जानकारी साझा करेंगे पलामू जिला के क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चियांकी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार जी से। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: सर्वप्रथम तो हमारे श्रोताओं को, हमारे किसान भाइयों को ये बताया जाए कि हमारे किसान भाई मोटे अनाजों में किसको शामिल कर सकते हैं।
2: किसान भाई, मोटे अनाज का मतलब आप लोग जान जाए कि इसमें ज्वार, बाजरा, रागी और फॉक्सटेल बाजरा की चार चीजें आती है मुख्य रूप से। ऐसे तो बहुत सारे कोदो, सावा, आप लोग पलामू, लातेहार, गढ़वा के आसपास के किसान हैं तो ये जानते होंगे कि पहले लोग जो अनाज करते थे तो सावा, कोदो, ये सब चीजों की भी खेती करते थे। और ज्वार जिसको हम लोग बात कर रहे हैं उसको आप लोग जिनोर भी बोलते हैं। तो जिनोर, बाजरा, रागी और फॉक्सटेल मिलेट, इसके जो हम अब इसकी चर्चा करते हैं कि जो ये फसलें जो होती हैं, इस फसल में सभी जगह इसकी खेती की जा सकती है और खास करके इस फसल में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जलवायु परिवर्तन हम लोग बार बार सुनते हैं कि जलवायु परिवर्तन, मौसम हमारी पलामू की कम वर्षा हो रही है, ज़्यादा तापमान हो रही है, समय पर वर्षा नहीं हो रही है, कभी ज़्यादा वर्षा हो रही है, कभी कम वर्षा, इसी को जलवायु परिवर्तन करते हैं। और ये जलवायु परिवर्तन में आप ज्वार, बाजरा, रागी, मड़ुआ, ये सब की खेती बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं और इसकी जो है पानी की भी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, कम पानी में ये फसलें होती है और इसके लिए मिट्टी भी बहुत अच्छी मिट्टी नहीं चाहिए। आप जब देखते हैं टाण वाली मिट्टी जिसमें बहुत अच्छा उपजाऊ नहीं है, उस सब चीजों के लिए आप जो है ज्वार बाजरा की खेती करेंगे तो उसके लिए उपयुक्त है। और इसमें जो है कार्बन का उत्सर्जन कम भी होता है, इस फसल में और फसलों की तुलना में उर्वरक की मात्रा कम लगती है तो हम उर्वरक से भी बच जाएंगे। और पूरे भारत वर्ष में मिलेट का जो ज्वार बाजरा का उत्पादन है इसमें हमारा जो देश है जो है ये जो है बहुत अन्य देशों की तुलना में बहुत अच्छे पहले नंबर पे आता है। और रागी, कुटकी और इस सब के क्षेत्रों में झारखंड का जो है छठा स्थान पूरे अपने राष्ट्र में है। तो हम लोग देखें भाई किसान भाई कि बाजरा के इसके फायदे क्या है। हमारे प्रधान माननीय प्रधानमंत्री ने 2023 वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय जो है बाजरा दिवस के रूप में मनाने का घोषणा की है। ये हमारा प्रस्ताव, भारत ऐसा देश है जो इसने विश्व पटल पर प्रस्ताव को रखा और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस प्रस्ताव की स्वीकृति की गई और 75 से 90 देशों ने इसकी जो है मनाने का इसमें हाँ में हाँ मिलाई भारत का और ये अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया यूएनओ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। ये हमारे लिए बहुत, भारत वर्ष के सभी लोगों के लिए खुशी का विषय है कि इसको जो है 2023 को हम लोग बाजरा दिवस के, बाजरा ईयर के रूप में मनाने का निर्णय लिया। हालांकि किसान भाई आप देखते हैं कि हम लोग जो पहले तीन तरह के ग्रेन होते हैं, एक होता है कि निगेटिव ग्रेन, किसान भाई निगेटिव ग्रेन धान और चावल को बोलते हैं क्योंकि इससे खाने से आदमी बीमार पड़ते हैं।
1: जी जी।
2: और कुछ ग्रेन होते हैं जो कि न्यूट्रल ग्रेन होते हैं जिसको खाने से जो है हम ना स्वस्थ भी ज्यादा रहते हैं और अगर अस्वस्थ है तो स्वस्थ नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसके खाने से अस्वस्थ

0: नहीं होते, जैसे हमारा जो है ज्वार वगैरह हो गया, और रागी मिलेट्स ये सब जो है उसको पॉजिटिव ग्रेन बोलते हैं, यानी कि अगर पहले से हमें कोई रोग है तो उस रोग को ये सभी के आटा खाएंगे या इन सभी के प्रोडक्ट खाएंगे, दलिया खाएंगे, तो आपको ये स्वस्थ भी रहेंगे और जो कोई पहले से भी बीमारी है उसको भी ठीक करने की क्षमता इन मोटे अनाजों में है। और हम लोग देखते हैं किसान भाई कि मोटे अनाजों को हम लोग गेहूं के आटा को पहले मानते थे कि ये अच्छा चीज है चावल की तुलना में, लेकिन गेहूं के आटा में ग्लूटीन नामक तत्व होने के चलते वो तुरंत हमारे शरीर में जैसे ही जाता है घुल जाता है और शुगर की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है। अमूमन आप लोग चीनिया रोग जिसको बोलते हैं, शुगर की मात्रा बढ़ गई तो इसके खाने से बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर शुगर की शिकायतें आ रही हैं। तो हम लोग अगर मोटे अनाज की बात जिसको कहते हैं ज्वार बाजरा रागी जो हमारे 70 के दशक से पहले लोग अपने खेतों में करते थे और बीच में गेहूं को हम लोग खाना शुरू कर दिए क्योंकि गेहूं के अनाज में जो है ग्लूटीन होने के चलते थोड़ा सा हमारा मुलायम हो गया, रोटी खाने में मुलायम हो गया, तो हमारा जीभ का टेस्ट हमने देखा लेकिन इससे बीमारियां हमारी बढ़ती गई। तो मैं यही कहूंगा कि ज्वार बाजरा का जो है इसमें जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है 52 है और गेहूं के आटे में ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 है, यानी कि हमारा जो है ज्वार बाजरा खाने से बहुत ज्यादा अच्छा, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना कम रहेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हमारा है। तो किसान भाई इसमें देखिए एंटीऑक्सीडेंट है, प्रचुर मात्रा में विटामिन है, आयरन है, मिनरल्स है, हम जो खाना खाते हैं हमारा पोषक तत्व जो है ये पोषण के लिए भारत सरकार ने इसको जो कहा है कि हम इसकी एमएसपी को बढ़ा दिए, एमएसपी भी भारत सरकार आपको जो खरीदेगी तो ये ज्यादा रेट पे खरीदेगी और साथ साथ हमारे जो जितने भी राशन के दुकानों में या मिड डे मील स्कूलों में है, अपने माननीय प्रधानमंत्री और झारखंड सरकार भी इस दिशा में हमारे कदम उठा रही है कि इसको वहां तक भी पहुंचाना, उपलब्ध कराने की बात हो रही है, इसके फायदे इतने हैं। तो हम लोगों को शुगर की बीमारी भी नहीं होगी, हम लोगों को एंटीऑक्सीडेंट है और हम एंटी कैंसरस है, इन सारे फायदों के हो रही है अगर हम मिलेट की खेती करते हैं। और हमने देखा कि ये सारी खेतियों के अगर हम करते हैं तो ये सारे हमको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कितने फायदेमंद है। अब रही हम लोग जो किसान भाई कि जो पलामू ऐसे क्षेत्र में है जहाँ की कम वर्षापात होती है और कम वर्षापात में इन फसलों की वाटर रिक्वायरमेंट कम है, यानी कम पानी और खराब मिट्टी में ये हो जाती है, तो जरूरत है इन फसलों की करने की। जैसे कि हम लोग ज्वार की अगर खेती करते हैं किसान भाई खरीफ के मौसम में, तो ज्वार के साथ अगर अरहर दे देते हैं कितनों पलामू में, पिछले बार देखिए धान का रोपा आप लोग के यहाँ 5% पूरे पलामू में गढ़वा में हुआ, यानी कि हम लोग पानी के अभाव में धान की खेती नहीं कर पाए जिससे हमारा मनुष्य का तो अनाज नहीं पूर्ति हुआ और जानवरों का चारा भी उपलब्ध नहीं हो पाया। तो इसमें दोनों चीजों में क्या है कि आपको चारा भी बहुत मिलेगा जानवरों के लिए और अनाज भी मिलेगा। तो ज्वार की अगर खेती करते हैं वैज्ञानिक तरीके से तो हम लोगों को जो है बहुत ही ज्यादा फायदे, 110 से 115 दिन की फसल है और इसका बीज दर जो है ये 12 kg प्रति हेक्टेयर, यानी 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपने खेतों में लगाएंगे अपलैंड में, टाण भूमि में, जिस तरह आप मक्का को लगाते हैं। तो इस मक्के को लगा के आप करेंगे तो हमको जो है ज्वार की खेती जिसको जिनोर भी आप बोलते हैं, तो इसे घबराना नहीं है कि हमको जिनोर है और इसमें उर्वरक की भी जो कम मात्रा लगती है 60-40-20 की रहती है, तो 110 से 115 दिन की है। और इसे सबसे खास बात यह था कि किसान भाई इससे जो चारा जो है 140 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ये अनाज के साथ चारा भी हमको मिलता है।
1: इसकी किस्में क्या होंगी?
0: इसके 20 से हाँ इसके किस्में है, CSB 17 है, CSB 20 है, SG 998 है और CO 29 जो है ये चारे के लिए बहुत ही अच्छा उपयुक्त है। ये क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र चियाकी में भी हम लोग इसका बीज का उत्पादन करते हैं और कितना भी कम वर्षा हो तो ये फसलें होना निश्चित है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कभी कभी कि इसके खेती जो है अरहर के साथ भी आप करते हैं, अरहर और ज्वार के साथ में एक लाइन अरहर एक लाइन ज्वार या 2 लाइन अरहर 2 लाइन ज्वार, तो आपको क्या होगा किसी विषम परिस्थितियों में अगर खूब पानी नहीं पानी यहाँ पड़ा तो आपकी ज्वार की फसल होना निश्चित है और अरहर की फसल होना निश्चित है। अगर हम लोग जो है ज्वार अगर फसल हो गए तो कम से कम हम भूखे नहीं मरेंगे, ज्वार की आटा खाएंगे तो आप इसमें रोग और व्याधियां भी कम लगती है। तो हम लोग किसान भाई इसकी खेती को हम लोग जो है चारे के रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देंगे किसान भाई इसकी ज्वार की जब भी कटाई करेंगे तो 45 दिन के अंदर किसानों को चारा के रूप में नहीं खिलाना है, यानी जानवरों को 45 दिनों के बाद खिलाएं या फिर अगर आप पटवन सुविधा हो रही है, बारिश हो रही है अच्छी, तो फिर आप खिला सकते हैं। नहीं तो इसमें एक जहरीला तत्व भी रहता है जो कि पानी की कमी के चलते एसियन का फॉर्मेशन होता है। तो हम आपको सावधान करते हैं कि 45 दिनों के बाद ही चारे के रूप में इसको काट के आप जानवरों को खिलाएं। और अगर हम लोग अनाज के रूप में लेते हैं तो अनाज के रूप में ये जो फसलें हैं, 25 से 30 क्विंटल हमको जो है ज्वार की पैदावार प्रति हेक्टेयर

0: होगी तो आप ज्वार की खेती, और सरकार जब इस पे आपको एमएसपी ज्यादा दे रही है, खरीदने का वादा दे रही है, राशन के दुकानदारों में सप्लाई करने की बात कर रही है, तो हम लोग ज्वार की खेती करके भी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं।
1: अच्छा, एक बात हम ये जानना चाहेंगे, अभी हमारे किसान भाई खेत की तैयारी कैसे करें?
0: हाँ किसान भाई, अभी मई का महीना हमारा जो चल रहा है, अब कोई किसान अगर गर्मा जुताई नहीं किए हैं तो आप अपने खेतों में गर्मा जुताई कर दें। सबसे उपयुक्त समय ये होता है कि अगर गर्मी के दिनों में अप्रैल महीना में देखे होंगे कि बारिश कुछ हुई थी, तो जस्ट बारिश खत्म होने के बाद अपने खेतों में जुताई कर दें। अगर गर्मा जुताई कर देते हैं तो कीट वगैरह का प्रकोप सब खत्म हो जाएंगे, घास खत्म हो जाएंगे, और इसके बाद अगर खेतों में थोड़ा जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। जैसे ही जून जुलाई के महीना आएंगे, 15 जून से 15 जुलाई के बीच में इसका उपयुक्त समय लगाने का होता है, तो आप इसके जो है लगा सकते हैं। और घास निकालने के लिए हम लोग एट्राजीन का भी प्रयोग कर सकते हैं, अगर ज़्यादा हमारे पास में घास की समस्या आती है तो। ये सारी फसलों को अगर करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो हम लोग करते हैं, तो हम यही सलाह देते हैं कि पलामू में पहले ज्वार बाजरा मोटे अनाज, इसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है तो हमको जो है गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। अन्य लाभों के साथ में तो आप लोग जरूर ज्वार बाजरा की खेती कीजिए। सरकार इसके लिए मोटे अनाजों के लिए जिला कृषि कार्यालय में बीज की भी व्यवस्था कर रही है झारखंड सरकार के द्वारा, और इसको प्रोत्साहित करने के लिए जिला कृषि कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय ज्वार बाजरा दिवस मना रहा है, और क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र में प्रशिक्षण पाकर इसकी खेती हम लोग बीज उत्पादन का करते हैं। जो किसान भाइयों को जो हमने प्रभेद बताया, पुनः बता दें, CSB 17 और CSB 20, ये जो प्रभेद जो है क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र से अगले वर्ष, इस साल तो नहीं, अगले वर्ष उपलब्ध होगा। आप बड़े पैमाने पर यहाँ से अच्छे बीजों को लेकर आप अपने यहाँ खेती कर सकते हैं
1: जी। और इस प्रकार से हमें जो उम्मीद है कि हमारे किसान भाई अगर इसकी खेती करेंगे तो जिस तरह से इसकी मांग बढ़ रही है, निश्चित रूप से वो भरपूर लाभ कमाएंगे।
0: हाँ,
1: आप थे पलामू जिला क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चियांकी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और मोटे अनाजों की खेती से संबंधित जानकारियां हमारे किसान भाइयों के साथ साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोटे अनाजों में शामिल फसलें एवं उसकी वैज्ञानिक खेती, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार, और इनसे बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। और श्रोताओं, आइए जानते हैं अंतर्वर्ती खेती से लाभ। जी हाँ श्रोताओं, अंतर्वर्ती खेती का तात्पर्य ही हो जाता है कि दो या दो से अधिक फसलों का एक साथ खेती करना, एक ही समय में, एक ही खेत में। यह खेती श्रोताओं वैज्ञानिक तरीके से काफी लाभकारी मानी जाती है, क्योंकि मुख्य फसल के साथ सहायक फसल बोई जाती है, जिससे कि भूमि, पानी, पोषक तत्व और श्रम दोनों का बेहतर तरीका से उपयोग हो सके। हालांकि देखा जाए तो किसान भाई काफ़ी लंबे समय से अंतर्वर्ती खेती को अपना रहे हैं, और जिस हिसाब से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, कृषि योग्य भूमि की कमी होती जा रही है, सीमित भूमि बचते जा रही है, तो कहीं ना कहीं अंतर्वर्ती खेती का महत्व भी बढ़ता चला जा रहा है। श्रोताओं, अंतर्वर्ती खेती में कम भूमि में ज़्यादा उत्पादन को प्राप्त करना, खेती के जोखिम को कम करना, और एक फसल किसी कारण से यदि खराब भी हो जा सकता हो तो दूसरे फसल से उसका लाभ प्राप्त हो, और साथ ही साथ भूमि की उर्वरा शक्ति भी इसमें बनती है, और पर्यावरण के संरक्षण में भी ये काफ़ी मददगार साबित होती है। श्रोताओं, अंतर्वर्ती खेती के लिए आप मक्का के साथ अरहर की खेती कर सकते हैं, गेहूँ के साथ चना, गन्ना के साथ आलू, सरसों के साथ चना। साथ ही साथ आप अपने क्षेत्र और अपने मिट्टी के प्रकृति के हिसाब से भी अंतर्वर्ती खेती का लाभ ले सकते हैं। अंतर्वर्ती खेती से श्रोताओं कई तरीके से लाभ हमें प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम कि खेत की खाली जगह का भरपूर उपयोग हो जाता है, अलग अलग ऊंचाई और जड़ जो सिस्टम होती है, फसलें एक साथ लगाई जाती है, तो जिससे कहीं ना कहीं भूमि का पूरा उपयोग हो जाता है। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि मक्का ऊंची फसल है जबकि दाल वाली फसलें नीची फैलती है, इसलिए दोनों फसलों में किसी प्रकार से कोई प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता नहीं होती है, तो इसका लाभ हमें प्राप्त हो जाता है कि भूमि का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होता है। इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, क्योंकि एक ही खेत में दो या उससे अधिक फसल के होने से उत्पादन बढ़ता है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति में भी सुधार होती है, क्योंकि दलहनी फसल जो है वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेती है, और अन्य फसलों को जब इस मिट्टी में लगाया जाता है तो इसका लाभ उस फसल को प्राप्त हो जाता है। अंतर्वर्ती खेती में खेत का ज़्यादा भाग फसल से ढका रहता है, इस कारण से खरपतवार का बढ़ने का

अवसर नहीं मिलता है, तो निश्चित रूप से खरपतवार का भी या खरपतवार पर भी नियंत्रण हो जाता है। श्रोताओं, कीट और रोगों का भी प्रायः प्रकोप जो है कम होता है, क्योंकि एक ही फसल बड़े क्षेत्र में लगाने से कीट और रोग काफ़ी तेजी से फैलते हैं, लेकिन मिश्रित फसल के कारण कीटों का जो फैलाव है श्रोताओं वो कम हो जाता है। विभिन्न प्रकार की फसलों को लगाने से श्रोताओं मिट्टी की नमी भी संतुलित रहती है, भूमि के ढके होने से पानी का वाष्पीकरण कम होता है, तो निश्चित रूप से मिट्टी में नमी जो है वो लंबे समय तक रहती है। इसमें जोखिम भी कम होता है और आय में भी वृद्धि होती है। श्रोताओं, पशुओं के लिए चारा की भी उपलब्धता बढ़ जाती है, क्योंकि अंतर्वर्ती फसल से चारा भी हमें प्राप्त होता है, और पर्यावरण के लिए भी श्रोताओं ये काफ़ी सुरक्षित मानी जाती है, क्योंकि इसमें रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का जो उपयोग है प्रायः कम होता है, तो निश्चित रूप से मिट्टी, पानी और पर्यावरण के लिए भी अंतर्वर्ती खेती जो है वो काफ़ी लाभकारी है श्रोताओं। हालांकि अंतर्वर्ती खेती को करते समय कुछ बातों का ख्याल भी रखना होगा, क्योंकि इसमें फसल का चयन वैज्ञानिक तरीके से करना होगा। ऐसा फसल को चुनना होगा जिसमें पोषक तत्व की आवश्यकता जो है वो दोनों, जो भी आप फसल चुने उनकी अलग अलग हो। सिंचाई और उर्वरक का उचित प्रबंधन भी जरूरी है, समय पर निराई गुड़ाई और रोग और कीटों पर भी नियमित निगरानी करनी होगी श्रोताओं। तो देखा जाए श्रोताओं, तो अंतर्वर्ती जो खेती है वो आज के इस कृषि के क्षेत्र में काफी उपयोगी और लाभकारी है। भूमि, पानी और पोषक तत्वों का इसमें काफी अच्छे तरीके से उपयोग होता है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने में, खरपतवार और कीट को नियंत्रण करने में, साथ ही साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित करने में यह अंतर्वर्ती जो खेती है काफ़ी लाभकारी हो जाती है। हमारे जो भी छोटे और सीमांत किसान श्रोताओं, विशेष रूप से इनके लिए काफ़ी लाभकारी हो जाता है, क्योंकि छोटे से क्षेत्रों में आप दो या दो से अधिक प्रकार की खेती लेते हैं तो निश्चित रूप से उसका लाभ प्राप्त होता है। तो श्रोताओं, अंतर्वर्ती खेती को अपनाएं और इसका लाभ लें। और अब श्रोताओं, चलते चलते हम आपको बता दें डाल्टनगंज का तापमान। जी हाँ श्रोताओं, डाल्टनगंज का आज का अधिकतम तापमान रहा 46 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, और आर्द्रता का जो प्रतिशत था वो 8 रहा। तो श्रोताओं, अब इसी के साथ आज के इस ग्रामीण सभा से अपने भाई कल्याण कुमार को दीजिए इजाजत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण सभा FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र की प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: श्रोतो, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से, शाम के 7 बजने वाले हैं, आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
8: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा। अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत मिला पद्म विभूषण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की वित्त और जल संसाधन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए तकनीक के उपयोग पर दिया जोर। देवघर एम्स का 8वां स्थापना दिवस सम्पन्न। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और सांसद निशिकांत दुबे ने स्वास्थ्य सुविधाओं को सराहा। मौसम विभाग ने राज्य के 11 जिलों में अगले दो दिन आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। कई हिस्सों में लू का भी प्रकोप। और रांची में चल रही राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का ऐतिहासिक प्रदर्शन। अब तक 12 एथलीटों ने पक्का किया कॉमनवेल्थ गेम्स का टिकट। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें 2 को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री दिए गए। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला, जिसे उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने लिया। वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण मिला। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण और महिला क्रिकेट कप्तान हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री से नवाजा गया। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रालय में 2 उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकें संपन्न हुई। पहली बैठक में वित्त और वाणिज्य कर विभाग के साथ राज्य की वित्तीय स्थिति और राजस्व संग्रह बढ़ाने पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बजट को सही तरीके से लागू करने और कमाई बढ़ाने के लिए नई तकनीक का उपयोग करने के सुझाव दिए। वहीं दूसरी बैठक में जल संसाधन विभाग की संचालित योजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं और पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने जैसे कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी काम समय पर पूरे करने के निर्देश दिए। देवघर एम्स ने आज अपना 8वां स्थापना दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया। समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और सांसद निशिकांत दुबे शामिल

0: हुए। केंद्रीय मंत्री ने एम्स की विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं की सराहना की। इस अवसर पर चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले डॉक्टरों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। इससे पहले भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने आज देवघर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल बांग्लादेशियों को भारत का वोटर बनाना चाहते हैं, लेकिन भाजपा ऐसा कभी नहीं होने देगी।
1: कांग्रेस और जेएमएम बांग्लादेशी को वोटर ही बनाने का प्रयास करते हैं, तो हम कामयाब नहीं हो। ममता बनर्जी जी इसी तरह से वो जो है दौड़ती रही। कल डायमंड हार्बर मॉडल की तरह से फ्लॉप हुआ, आपने देखा कि 1 लाख से ज्यादा जो है पाल्टा का दर्द बाहर ले लिया। और इस बार जो कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ बसाने का प्रयास और जेएमएम दोनों ने सुना।
0: गिरिडीह नगर निगम के बोर्ड की दूसरी बैठक आज नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में पूरी हुई। इस बैठक में राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद, मेयर प्रमिला मेहरा, डिप्टी मेयर सुमित कुमार और सभी वार्ड पार्षद शामिल हुए। मौके पर नगर विकास मंत्री ने कहा कि शहर के विकास के लिए अधिकारियों और जनता के प्रतिनिधियों के बीच तालमेल होना बहुत जरूरी है।
2: निगम की आज दूसरी बैठक निगम के सभागार में हुई। तमाम सम्मानित वार्ड पार्षद उपस्थित हुए। शहर की विभिन्न समस्याओं के बारे में समग्र चर्चा हुई और इस चर्चा के फलाफल में गिरिडीह को और बेहतर और सुंदर और विकसित बनाने की दिशा में निगम और निगम के तमाम साथी प्रयास रहे।
0: ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने रांची के राज्य ग्रामीण विकास संस्थान में आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल की राज्य स्तरीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी अधिकारियों और कर्मियों के कौशल विकास को बढ़ावा देना और सुशासन को मजबूत करना है। मौके पर मंत्री ने कहा कि इस डिजिटल लर्निंग और लगातार ट्रेनिंग के माध्यम से सरकारी योजनाओं को जमीन पर बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लोहरदगा के सलगी चूल्हापानी में आज दामोदर महोत्सव 2026 का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दामोदर नदी के उद्गम स्थल पर पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि प्रकृति की गोद में आकर उन्हें बहुत खुशी मिल रही है। राज्यपाल ने इलाके की पुरानी संस्कृति और धार्मिक पहचान को बचाने पर जोर दिया।
3: बल्कि जीवन दायिनी शक्ति है। दामोदर स्वयं भगवान विष्णु का नाम है, इसलिए इस नदी के प्रति हमारी श्रद्धा केवल परंपरा नहीं बल्कि इससे हमारा एक गहरा आध्यात्मिक संबंध भी है।
0: केंद्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत राज्य के 50 छात्रों का एक दल मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गया है। इन छात्रों को धनबाद स्थित IIT ISM से IIT इंदौर भेजा गया है। IIT ISM के निदेशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को वहां की संस्कृति, शिक्षा और परंपराओं को करीब से समझने का अवसर मिलेगा।
4: इसका मेन एम ये है कि डिफरेंट स्टेट को जाके उसका कल्चर के बारे में, उसका एक्टिविटी के बारे में झारखंड बच्चों को पता हो, एंड वो एक्वेंटेंस बहुत इम्पोर्टेंट है इंटरमिक्सिंग इन द सोसाइटी। 50 बच्चे यहीं से जाए।
0: प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रमा खलखो ने आज धनबाद के सर्किट हाउस में जिला महिला कांग्रेस कमेटी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में संगठन को मजबूत करने और आने वाले चुनावों को लेकर चर्चा हुई। रमा खलखो ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद भी सरकार परिसीमन का बहाना बनाकर इसे टाल रही है। राज्य सरकार ने ईद उल जुहा यानी बकरीद के अवसर पर घोषित सरकारी छुट्टी की तारीख में बदलाव की अधिसूचना जारी की है। अब राज्य सरकार के सभी कार्यालयों और संस्थानों में 28 मई को बकरीद की आधिकारिक छुट्टी रहेगी। इससे पहले यह

काश 27 मई को तय किया गया था। गिरिडीह पुलिस ने खंडोली मोड़ से अपहृत तस्लीम अंसारी को 24 घंटे में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जंगल से सुरक्षित छुड़ा लिया है। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि अपराधियों ने 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने एसआईटी गठित कर 5 अपहरणकर्ताओं को गाड़ी और मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। और अब मौसम का हाल। राज्य में मौसम का दोहरा रूप देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां राज्य में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, वहीं मौसम विभाग ने राज्य के 11 जिलों गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गुड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में अगले दो दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। दूसरी ओर राज्य के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का असर बना हुआ है। डाल्टनगंज 44 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में चल रही राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने नया इतिहास रच दिया है। शानदार प्रदर्शन के दम पर गुरिंदर सिंह, अनिमेश कुजूर, रवीना और सीमा सहित कुल 12 एथलीटों ने अब तक आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस बीच आज महिलाओं के 500 मीटर दौड़ में रिलायंस की सीमा ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। पुरुष वर्ग की दौड़ में कर्नाटक के शिवाजी परशुरामम्मा ने पहला स्थान प्राप्त किया है। लखनऊ में आयोजित दूसरी अखिल भारतीय बैडमिंटन और टेबल टेनिस क्लस्टर प्रतियोगिता में झारखंड पुलिस के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल दिखाते हुए राज्य के लिए कई कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा। अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत मिला पद्म विभूषण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की वित्त और जल संसाधन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए तकनीक के उपयोग पर दिया जोर। देवघर एम्स का 8वां स्थापना दिवस संपन्न। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और सांसद निशिकांत दुबे ने स्वास्थ्य सुविधाओं को सराहा। मौसम विभाग ने राज्य के 11 जिलों में अगले दो दिन आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। कई हिस्सों में लू का भी प्रकोप। और रांची में चल रही राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का ऐतिहासिक प्रदर्शन। अब तक 12 एथलीटों ने पक्का किया कॉमनवेल्थ गेम्स का टिकट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: इस अंक में आप सुनेंगे रांची जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे रांची संवाददाता।
1: राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने रांची में आयोजित दो दिवसीय कुलपति सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में राज्य के सभी विश्वविद्यालय के कुलपति और उनके प्रतिनिधि मंडल ने हिस्सा लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अक्सर देखने को मिलता है कि गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा पाने के लिए आज भी झारखंड के युवाओं को दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। अपने संबोधन में राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में वित्तीय अनुशासन और शैक्षणिक कैलेंडर के सही तरीके से अनुपालन पर ध्यान देने को कहा। रांची के सीसीएल सभागार में रोजगार मेला का आयोजन किया गया। मेले में केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों के लिए चयनित 132 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। कार्यक्रम में रांची के सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। रांची में आयोजित रोजगार मेला में सबसे ज्यादा 103 नियुक्तियां रेलवे सेक्टर में मिली। इसके अलावा डाक विभाग, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और भारतीय खाद्य निगम समेत कुछ अन्य विभागों से जुड़ी नियुक्ति पत्र युवाओं

0: लोकप्रिय नेता हमारे लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दे रहे हैं और नियुक्ति पत्र पर प्रधानमंत्री की फोटो है। यह सौभाग्य है, जीवन भर के लिए उनके लिए एक एसेट है कि हमको नियुक्ति पत्र देश के प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है।
1: आनंद मार्ग प्रचारक संघ की ओर से रांची में गुरुदेव आनंद मूर्ति का 105वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया।
2: परम आराध्य गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी का जन्म दिवस 105वां जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। सुबह से अभी तक जो है हम लोग उनका जन्मदिवस मनाए, अभी हमारा शोभा यात्रा निकला है, उसके बाद से यहाँ पर बहुत तरह के कल्चरल प्रोग्राम होंगे, बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा, तब नारायण सेवा होगा, नारायण सेवा के बाद ये कार्यक्रम समाप्त होगा।
1: इस मौके पर संस्था के धर्म प्रचार सचिव विजयवर्धन ने बताया कि विश्व के 180 देश में गुरुदेव आनंद मूर्ति के सेवा कार्य और प्रचार प्रसार वर्तमान समय में चल रहे हैं।
3: आनंद मार्ग ग्लोबल संस्था है, ये 180 देशों में फैला हुआ है और इसको यूएनओ के द्वारा भी स्वायत्तता प्राप्त है और ये अपने सेवा क्षेत्र के लिए ही पूरे विश्व में माना जाता है आज गुरुदेव।
1: गौरतलब है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन 1921 में गुरुदेव आनंद मूर्ति का जन्म हुआ था, जिसे संस्था की ओर से आनंद पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची।
4: अभी आप सुन रहे थे रांची जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र का प्रसारण एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

0: बुनियाद।
1: नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से बुनियाद कार्यक्रम लेकर हंसते खेलते आपके घर आंगन में आ गया। हंसना खेलना इसलिए जरूरी है कि उससे आप खुश रहेंगे और पॉजिटिव सोच रखेंगे और इसी सोच के साथ बुनियाद कार्यक्रम को सुनेंगे, जिसमें हम नए नए कोर्सेज की आज चर्चा कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से पिछले एपिसोड में हमने बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, जी हाँ, इसके बारे में बताया था। बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में बताया था। इसके अलावा एक कोर्स और है, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, और हमारे साथ एक्सपर्ट भी होंगे। लेकिन उससे पहले दो बातें हम कर लें। बहुत सारे फोन कॉल्स आए जब हमने बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में बातचीत की थी। हाँ, डॉक्टर नीरज से हमने बातचीत की थी और जानकारियां दिलवाई थी। पूरे बिहार से फोन आया वैसे युवा साथियों का जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया था। अच्छा लगा, सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे सोमवार के दिन बने रहना होगा इसी समय इसी मीटर पर। एकदम आपके लिए खोज कर ऐसे कोर्सेज को हम लाएंगे और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जिनकी तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार में ये कोर्सेज इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं आप युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर फ्यूचर के लिए। जी हाँ, और तीन कोर्सेज हम बार बार कह रहे हैं, हमने बातचीत कर ली है।

0: बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी पर ढेर सारे फोन आए हैं, सारे सवाल हमने रखे हैं। इसके अलावा परफ्यूजन टेक्नोलॉजी एक नया कोर्स है और आज जिस पर चर्चा करेंगे वो है फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। जी हाँ, इस पर आज चर्चा करेंगे, विशेषज्ञ को बुलाएंगे। लेकिन फिर भी हम बार बार कहते हैं, राजेश बार बार कहता है कि भैया, छोटे छोटे भाई बड़े बड़े चाचा, बड़े बड़े दादा, अब आप समझ लीजिए कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है। टेक्निकल पढ़ाई कर लीजिए, हाँ, बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी, ऐसा हम समझते हैं। अगर अच्छे से पढ़ाई की गई ना तो विशेषज्ञता हासिल होगी और वो विशेषज्ञता आपको जीवन में खड़े होने का आधार, मजबूत बुनियाद देगी। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। टोल फ्री नंबर पहले बता रहा हूँ, 1800-121-0051, 1800-121-0051। और एक जो मोबाइल नंबर है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, वो है 9431899002। और एक वेबसाइट भी है, www.gnsu.ac.in। ढेर सारे फोन कॉल्स आते हैं कि बहुत सुलभ कर दिया, अब सुनते सुनते जानकारियां मिल जाती हैं। किसी दूसरे माध्यम में तो पढ़ना पड़ता है, काम छोड़ना पड़ता है, और ये तो काम करते करते बाजा बज रहा होता है और जानकारियां मिल जाती हैं। धन्यवाद आपका कि आप इतना कंसर्न हैं इस कार्यक्रम से, क्योंकि हम आपके फायदे की बात करते हैं। बहरहाल, चलिए आज बातचीत करते हैं फिजिशियन, हाँ, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, इस विषय में क्या पढ़ाई है, कितने दिन की पढ़ाई है, रोजगार की क्या संभावनाएं हैं, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में अगर इसे इंट्रोड्यूस किया गया है तो क्या सिस्टम है, सारी चीजों पर बात करेंगे। चलिए आज के अतिथि से सबसे पहले जानते हैं उनका परिचय।
1: नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार, डायरेक्टर नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जमुहार।
0: उम्मीद है आप ठीक से होंगे। एक व्यक्तिगत सवाल हम आपसे करना चाहते हैं। उस जमाने में, हाँ, ये कोर्स जो है ना, न कोविड था न कुछ और चीजें थी, तो इस तरीके के कोर्सेज को चुनने के लिए आपको किसने प्रेरित किया, क्या सोच थी उस समय?
1: नहीं, वो तो जब मैं बचपन में जब क्रिकेट देख रहा होता था या कोई भी स्पोर्ट्स देख रहा होता था, तो जैसे किसी खिलाड़ी को चोट लगी तो मैं देखा कि कोई जना आया, उसने कुछ लगाया, करा एक्सरसाइज, कुछ कराई, नौ खिलाड़ी वो फिर से खेल रहा है। तो उस वक्त मुझे लगा कि ये क्या है, तो पता चला कि ये फिजियो है। तो फिर मेरा उस वक्त से थोड़ा सा इंक्लिनेशन आया कि इस कोर्स के प्रति, कि मुझे ये कोर्स करना चाहिए, और फिर जाके फिर मैंने ये कोर्स।
0: नीरज जी, जमाना बदल गया, बहुत पानी बह गया, हाँ, आज टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, और टेक्निकल पढ़ाई के विषय में क्या कहना चाहिएगा?
1: क्योंकि अब हर कोई चाह रहा है कि हमें इमीडिएटली पढ़ाई के बाद कुछ ना कुछ तो हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले, और इसके लिए टेक्निकल पढ़ाई इज द अल्टीमेट ऑप्शन। उसी के बाद ही हमारे पास ये ऑप्शन आएंगे।
0: टेक्निकल पढ़ाई इज द अल्टीमेट ऑप्शन फॉर जॉब, फॉर ए बेटर फ्यूचर, है ना? इसीलिए कहते हैं, भैया टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, इधर उधर मत तको। इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ अगर आपने किया है तो हेल्थ सेक्टर में टेक्निकल पढ़ाई की भरमार है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, और आज चर्चा करने जा रहे हैं बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट्स स्टडीज, और अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, हाँ, इस विषय में क्या, कहाँ, कैसे हो सकता है, कुछ भी बताएंगे। बहरहाल, नंबर एक बार बताएं, फिर डॉक्टर नीरज से हम पूछेंगे बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज के बारे में। नंबर नोट करें, 9431899002, 9431899002, और 1800-121-0051। डॉक्टर नीरज बताइए, हाँ, हमारे सुनने वालों को, युवा साथियों को, उनके माता पिता को बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज के विषय में।
1: हाँ, ये बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज ये 4 साल का कोर्स है, और इसमें जिस 3 साल की पढ़ाई और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। ये एक बहुत ही बढ़िया अल्टरनेटिव है MBBS का। जैसे इस कोर्स को करने के बाद जो फिजिशियन एसोसिएट होते हैं वो पेशेंट

0: की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, ये दोनों काम करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ फिजिशियन। यानी इनका काम है फिजिशियन को एसोसिएट करना, यानी फिजिशियन को असिस्ट करना। कई दफा ऐसा होता है, बहुत सारे दूर दराज के सेंटर होते हैं जहां पर प्रोफेशनल या हाईली प्रोफेशनल जो फिजिशियन की पहुंच नहीं हो पाती है, तो वैसे दूर दराज के सेंटर में, कम्युनिटी सेंटर्स में, ये फिजिशियन एसोसिएट अपना रोल अदा कर सकते हैं, जहां वो छोटी मोटी बीमारियों के लिए पेशेंट को देख के उनकी डायग्नोसिस कर सकते हैं और कंसल्ट करके जिनके अंडर वो काम कर रहे हैं, जिस फिजिशियन के अंडर वो काम कर रहे हैं, उनसे कंसल्ट करके उनको वो इलाज भी दे सकते हैं।
1: कितने सीटों के साथ आपने इसकी शुरुआत की है इस यूनिवर्सिटी के अंदर?
0: ये हमने अभी 30 सीटों के साथ स्टार्ट किया है।
1: क्या एलिजिबिलिटी है?
0: हाँ, इसकी एलिजिबिलिटी है 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, 45% मार्क्स एग्रीगेट।
1: कैसे बच्चे आ सकते हैं?
0: जो बिल्कुल जो अपने सोसाइटी के लिए, अपने समाज के कल्याण के लिए और पेशेंट वेलफेयर के लिए, जिनका मोटो है कि वो चाहते हैं कि हम समाज का कल्याण करें, हम पेशेंट का कल्याण करें, वो बच्चे इसमें एडमिशन लें, क्योंकि इसका मेन उनका रोल है पेशेंट वेलफेयर, पेशेंट ट्रीटमेंट, पेशेंट केयर।
1: अपॉर्चुनिटीज पढ़ने के बाद?
0: इनकी अपॉर्चुनिटीज इतनी हाई डिमांड बढ़ी हुई है कि भारत में, जैसे आप सबको पता है, आप लोग न्यूज़पेपर में भी, हम लोग न्यूज़ में भी देखते हैं कि डॉक्टरों की कमी है और अस्पतालों में, इसलिए ट्रेंड फिजिशियन एसोसिएट की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक रिसेंट डेटा कहता है कि अभी तक 28% इनकी डिमांड बढ़ी है फिजिशियन एसोसिएट की हमारे अस्पतालों में। साथ ही मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों, इमरजेंसी सेवाओं और डायग्नोस्टिक सेंटरों में भी 90% तक संभावना है प्लेसमेंट की। और साथ ही साथ इनकी विदेशों में भी ऑप्शन है, जैसे इनकी यूके, यूएसए जैसे देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करियर बनाने की बहुत ही अच्छी संभावना है।
1: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, मैं हूं राजेश और हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर नीरज। जानकारियां दी जा रही है, एक नया कोर्स आया है, सिर्फ 30 सीट है, ओनली 30 सीट्स है, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। जी हाँ, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज का, इसके बारे में जानकारियां दी जा रही हैं। टेक्निकल पढ़ाई बार बार कहते हैं, जैसे पिछले एपिसोड में हमने बताया था आपको, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, ढेर सारे सवाल आए हैं, आने वाले सोमवार के दिन हम उसका उत्तर देंगे। इसके अलावा परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के विषय में आने वाले सोमवार को एकदम बताएंगे ही बताएंगे। फिलहाल आइए जानते हैं डॉक्टर नीरज से, जहां 30 सीट ही आया है गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में। सबसे पहले नंबर बता दें एक बार, 9431899002 और 1800121001। हाँ डॉक्टर नीरज, नया कोर्स आया है, हाँ सारा कुछ नया नया है, बच्चे नए होंगे, सब कुछ नया होगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या तैयारी है आपके यहाँ ओवरऑल?
0: फिजिशियन एसोसिएट के लिए हमारे पास ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर सारे अवेलेबल, जो हमारे पास क्लासरूम चाहिए वो हमारे पास है, जो लैब चाहिए वो हमारे पास है। इसके अलावा क्लिनिकल पेशेंट प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास अपना हॉस्पिटल NMCH हॉस्पिटल है, नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो 1200 बेडेड हॉस्पिटल है लगभग, वहाँ हमारे बच्चों का हैंड्स ऑन एक्सपोजर होने हम कराएंगे हमारे बच्चों का। क्लासेस कराने के लिए, टीचर्स के लिए हमारे पास अपने फिजिशियन एसोसिएट टीचर प्रोफेशनल्स हैं। साथ ही साथ जो मेडिकल सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हमारे पास मेडिकल फैकल्टी है, मेडिकल टीचर्स हमारे पास। चूंकि आपको पता है कि हमारा गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत ही बड़ा कैंपस है, इस कैंपस के अंदर हमारे पास सारी बेसिक सुविधाएं हैं, हमारे यहाँ हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, साथ ही साथ स्टाफ टीचर और उनके लिए भी एकोमोडेशन है, फ्लैट्स हैं, क्वार्टर्स हैं, और जो भी बेसिक नीड की जरूरत होती है सब हमारे कैंपस के अंदर मौजूद।
1: डॉक्टर नीरज, बहुत बहुत पहले तो बधाई कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, और हमें पता है कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार में जब तक पूरी तैयारी नहीं होती कोई कोर्स शुरू नहीं किया जाता। लेकिन एक सवाल हम बच्चों की तरफ से पूछना चाहते हैं कि बच्चे रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल पढ़ाई, अंग्रेजी में बातचीत, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट या पर्सनालिटी जो लेकर आते हैं और यहाँ आकर, क्या उन बच्चों के झिझक को आपके कॉलेज में, आपके यूनिवर्सिटी में तोड़ने के लिए कोई व्यवस्था, उनकी अंग्रेजी या कोर्सेज के बारे में जानकारी या उनके ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए कोई सिस्टम?
0: नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है सर आपने। नहीं, हमारे यहाँ हम लोग जैसे बच्चे हमारे एडमिशन होता है तो शुरू के एक महीने हम उनका सिर्फ इंडक्शन प्रोग्राम चलाते हैं ताकि उनको हम इस कोर्स के बारे में अवगत कराएं। हम सिलेबस स्टार्ट नहीं करते हैं शुरुआत में, पहले हम कोर्स को अवगत कराते हैं। ब्रिज कोर्स काइंड आप कह सकते हैं कि अभी चूंकि जस्ट वो इंटर पास करके इस प्रोफेशन में, मेडिकल प्रोफेशन के कोर्स में आए हैं, तो उसका जो गैप है उसको हम लोग फुलफिल करते हैं। रहा बात इंग्लिश का, तो हमारे यहाँ के जितने भी टीचर हैं वो ड्यूअल मोड में पढ़ाते हैं, दोनों मोड में, इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में पढ़ाते हैं। साथ ही साथ हम लोग इंग्लिश कम्युनिकेशन इंग्लिश की क्लासेस भी लगाते हैं बच्चों के। और हमारे पास एग्जांपल्स हैं सर, आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जितने भी फाइनल ईयर के बच्चे हैं जब वो फर्स्ट ईयर में यहाँ आते हैं तब उनसे आप पूछेंगे जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो उनका क्या स्टैंडर्ड या क्या लेवल रहता है, और अभी उनका आप देखेंगे लेवल और स्टैंडर्ड, तो पीरियोडिकली दे आर इम्प्रूविंग themselves। और इस पे हमारे टीचर हम लोग बिल्कुल मिलजुल कर काम करते हैं, और हमारा मेन उद्देश्य यही रहता है कि हमें बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है।
1: थैंक यू प्रोफेसर नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें विश्वास है कि आप सबों के गाइडलाइन में जो बच्चे आएंगे, 30 बच्चे आएंगे, उनका सही मार्गदर्शन होगा, सही पढ़ाई होगी और करियर की नई अपॉर्चुनिटी खुलेगी। अभी हमारी बातचीत चल रही थी बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, ये एक नया कोर्स आया है, इस पर सिर्फ 30 ही सीट है इंटरमीडिएट बायोलॉजी के लिए। अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो नंबर डायल करें, टोल फ्री नंबर 1-800-121-0051 और दूसरा नंबर है 9431899002, ये नंबर है। और अगले एपिसोड में हम बताएंगे एक नया कोर्स आया है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, इसके विषय में तो ढेर सारी संभावनाएं हैं टेक्निकल पढ़ाई में। युवा साथियों सोचिए, विचारिए और निर्णय लीजिए, फोन से बात कीजिए। फिलहाल थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम लेकर आने का मौका दिया। नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
3: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद, FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का यह डाल्टनगंज केंद्र है। सुनते हैं कार्यक्रम कल्याणी। तो आइए इस प्रोग्राम में हम आपको सुनाते हैं डॉक्टर सुंदरम से ली गई बातचीत, विषय अनिद्रा, कारण और उसका

0: भागम भाग जिंदगी में हर तरफ हम तनाव से घिर जाते हैं। हमें चारों ओर सिर्फ अपना काम दिखता है और काम के बोझ के तले हम बहुत चीज़ें भूल जाते हैं और ऐसे में हम भूलते हैं पर्याप्त समय अपने नींद के लिए। सही
1: श्रोताओं, जमा करेंगे बुनियाद कार्यक्रम, हम आपको कुछ ही पलों में सुनाएंगे। इससे पहले आइए सुनते हैं एक वार्ता। विषय है मानव सभ्यता का नया आयाम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI। वार्ताकार हैं जयप्रणा विश्वकर्मा।
2: कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मानव सभ्यता का नया अध्याय। प्रस्तावना। मानव जीवन निरंतर परिवर्तनशील है। आदिकाल से ही मनुष्य ने अपने जीवन को सरल, सुरक्षित और उन्नत बनाने के लिए नए नए आविष्कार किए हैं। कभी पत्थरों के औजारों का निर्माण हुआ, फिर पहिए का आविष्कार हुआ, उसके बाद बिजली, टेलीफोन, कंप्यूटर और इंटरनेट जैसे महान आविष्कारों ने संसार को बदल दिया। आज मानव जिस युग में जी रहा है वह तकनीक और डिजिटल क्रांति का युग है। इस आधुनिक युग की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण और चर्चित तकनीक है कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल एक तकनीक नहीं बल्कि मानव सोच का विस्तार है। यह ऐसी प्रणाली है जिसमें मशीनों और कंप्यूटरों को इस प्रकार विकसित किया जाता है कि वे मनुष्य की तरह सोच सके, सीख सके, निर्णय ले सके और समस्याओं का समाधान कर सके। आज AI ने मानव जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, उद्योग, व्यापार, न्याय, सुरक्षा, बैंकिंग, परिवहन, मनोरंजन और

संचार हर क्षेत्र में एआई का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। कुछ लोग एआई को मानव जीवन के लिए वरदान मानते हैं, क्योंकि इसने जीवन को सरल और सुविधाजनक बना दिया है। वहीं कुछ लोग इसे चुनौती और खतरे के रूप में देखते हैं, क्योंकि यह मानव रोजगार, गोपनीयता और सामाजिक संरचना पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। इसलिए एआई के लाभ और हानि दोनों समझना अत्यंत आवश्यक है। आज संसार डिजिटल युग से आगे बढ़ एआई युग में प्रवेश कर चुका है। आने वाला समय में यह तकनीक मानव जीवन को और अधिक प्रभावित करेगा, इसीलिए यह आवश्यक है कि हम एआई को केवल तकनीक के रूप में न देखें, बल्कि उसे सामाजिक, नैतिक, आर्थिक और मानवीय प्रभावों को भी समझें। एआई क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो शब्दों से मिलकर बना है। आर्टिफिशियल अर्थात कृत्रिम या मानव द्वारा निर्मित, और इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धिमत्ता अर्थात ऐसी कृत्रिम प्रणाली जो बुद्धिमानी से कार्य कर सके, और उसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो जब मशीनें मानव की तरह सोचने, समझने, सीखने और निर्णय लेने लगे, तो ये उसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। एआई का उद्देश्य ऐसी मशीनों और कंप्यूटर प्रणालियों का निर्माण करना है जो मानव मस्तिष्क की तरह कार्य कर सके। ये मशीनें अनुभवों से सीखती है, डेटा का विश्लेषण करती है और समय के साथ अपने कार्यों में सुधार करती जाती है। उदाहरण के रूप में मोबाइल का वॉइस असिस्टेंट, गूगल मैप, ऑनलाइन चैटबोट, स्वचालित कारें, रोबोट, मेडिकल जांच प्रणाली, सोशल मीडिया, ऑनलाइन ट्रांसलेशन, डिजिटल बैंकिंग, सुरक्षा प्रणाली इत्यादि एआई के उदाहरण हैं। एआई का इतिहास। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विचार नया नहीं है। प्राचीन काल में भी मनुष्य ऐसी मशीनों की कल्पना करता था जो स्वयं कार्य कर सके, परंतु आधुनिक एआई की शुरुआत 20वीं शताब्दी में हुई। प्रारंभिक विकास 1950 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक एलन टूरिंग ने यह प्रश्न उठाया कि क्या मशीनें सोच सकती है। उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट प्रस्तुत किया, जिसके माध्यम से यह जांचा जाता है कि कोई मशीन मानव जैसी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित कर सकती है या नहीं। 1956 में अमेरिका के डार्टमाउथ सम्मेलन में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग किया गया। इसके बाद वैज्ञानिकों ने ऐसी मशीनों के निर्माण पर कार्य शुरू किया जो स्वयं सीख सके। आधुनिक युग में एआई, इंटरनेट, बड़े डेटा, तेज कंप्यूटर और मशीनी लर्निंग तकनीक के विकास में एआई को नई गति दी। आज एआई केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों के मोबाइल फोन और दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है। एआई के प्रमुख प्रकार। नैरो एआई, सीमित एआई। इसे केवल विशेष कार्य करने के लिए विकसित किया जाता है, जैसे गूगल असिस्टेंट, चैटबोट, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। आज अधिकांश एआई इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरा जनरल एआई, तीसरा सुपर एआई। जनरल एआई यह ऐसी बुद्धिमत्ता होगी जो मानव की हर तरह, हर प्रकार का कार्य कर सके। वर्तमान में यह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है। सुपर एआई यह भविष्य की कल्पना है, जिसमें मशीनें मानव से भी अधिक बुद्धिमान हो सकती हैं। इस विषय पर वैज्ञानिक और दार्शनिक लगातार चर्चा कर रहे हैं। एआई वर्तमान समय में कैसे उपयोग हो रहा है? आज एआई का उपयोग संसार के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में एआई ने क्रांति ला दी है। ऑनलाइन शिक्षा, स्मार्ट क्लास रूम, भाषा अनुवाद, परीक्षा प्रणाली इत्यादि। चिकित्सा के क्षेत्र में एआई, चिकित्सा विज्ञान एआई मानव जीवन के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है, जैसे रोग पहचान, रोबोटिक सर्जरी,
दवा निर्माण, स्वास्थ्य निगरानी इत्यादि। न्याय और कानून के क्षेत्र में AI। आज AI कानून और न्याय व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कानूनी रिसर्च, ड्राफ्टिंग, न्यायिक विश्लेषण इत्यादि। कृषि के क्षेत्र में AI। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में AI किसानों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है, जैसे मौसम की जानकारी, फसल रोग पहचान, स्मार्ट सिंचाई इत्यादि। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में AI व्यापारिक क्षेत्र में अत्यंत प्रभावशाली बन चुका है, जैसे ग्राहक सेवा, ऑनलाइन शॉपिंग, उत्पादन प्रणाली इत्यादि। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में आज बैंकिंग प्रणाली पूरी तरह से डिजिटल होती जा रही है। ऑनलाइन लेन देन सुरक्षा, डिजिटल भुगतान, निवेश विश्लेषण इत्यादि। परिवहन और सुरक्षा, ट्रैफिक नियंत्रण, ड्राइवरलेस कार सुरक्षा प्रणाली इत्यादि। मनोरंजन और मीडिया के क्षेत्र में AI मनोरंजन उद्योग में भी क्रांति ला रहा है। फोटो और वीडियो एडिटिंग, संगीत निर्माण, फिल्म विशेष प्रभाव, सोशल मीडिया, यूट्यूब सुझाव प्रणाली, ये सब AI के माध्यम से संचालित होते रहे हैं। मानव जीवन पर AI का सकारात्मक प्रभाव, समय की बचत, कार्य की सटीकता, जीवन को सरल बनाना, नई खोज का विकास, दिव्यांग लोगों के लिए सहायता। AI के नकारात्मक प्रभाव। AI के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, जैसे बेरोजगारी, मानसिक निर्भरता, साइबर अपराध, गोपनीयता का संकट, मानवीय संवेदनाओं की कमी। AI और नैतिक चुनौतियाँ। AI के विकास के साथ कई नैतिक प्रश्न भी उठ रहे हैं। क्या मशीनें मानव पर शासन करेंगी? क्या AI मानव स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा? क्या AI का दुरुपयोग युद्ध और अपराध में होगा? क्या मशीनें मानव निर्णय को नियंत्रित करेंगी? इन प्रश्नों का समाधान केवल तकनीक से नहीं बल्कि नैतिकता और कानून से संभव है। AI और रोजगार। यह सत्य है कि कुछ पारंपरिक नौकरियां समाप्त हो सकती हैं, परंतु AI नए रोजगार भी उत्पन्न कर रहा है। डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, AI ट्रेनर, डिजिटल विश्लेषक। इसलिए आवश्यक है कि लोग नई तकनीकी सीखें और स्वयं को आधुनिक युग के अनुसार विकसित करें। भारत में AI का विकास। भारत तेजी से AI तकनीकी की ओर बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया अभियान, स्मार्ट सिटी परियोजना, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल न्याय प्रणाली, स्वास्थ्य तकनीकी, इन सभी क्षेत्रों में AI का उपयोग बढ़ रहा है। भारत के युग AI के क्षेत्र में विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। क्या AI मानव का स्थान ले सकता है? यह प्रश्न आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। AI मानव की तरह गणना और विश्लेषण कर सकता है, परंतु प्रेम, करुणा, संवेदना, नैतिकता, रचनात्मकता जैसी मानवीय विशेषताओं का पूर्ण रूप से स्थान नहीं ले सकता। मशीनें आदेश का पालन कर सकती हैं, लेकिन मानव हृदय की भावनाओं को नहीं समझ सकती। इसीलिए AI मानव का सहयोगी हो सकता है, विकल्प नहीं। भविष्य में AI की भूमिका। भविष्य में AI और अधिक शक्तिशाली होगा। स्मार्ट शहर, रोबोटिक अस्पताल, स्वचालित वाहन, डिजिटल न्यायालय, वर्चुअल शिक्षक, अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे क्षेत्र में पूरी तरह AI आधारित हो सकते हैं। यदि AI का उपयोग मानव कल्याण के लिए किया जाए तो यह विश्व की नई दिशा दे सकता है। AI और मानवता। तकनीक का उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। यदि AI का उपयोग केवल लाभ और शक्ति के लिए किया जाएगा तो यह समाज में असमानता और संकट पैदा कर सकता है। हमें यह समझना होगा कि तकनीक तभी उपयोगी है जब वह मानवता के की सेवा करे। निष्कर्ष। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
आधुनिक युग की सबसे बड़ी वैज्ञानिक

0: उपलब्धियों में से एक है। इसने मानव जीवन को नई गति, नई दिशा और नई संभावनाएं दी है। आज AI शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, कृषि, व्यापार और विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत परिवर्तन ला रहा है। आज AI मानव जीवन को सरल और आधुनिक बना रहा है, वहीं इसके दुरुपयोग से सावधान रहना भी आवश्यक है। बेरोजगारी, साइबर अपराध, गोपनीयता का संकट और नैतिक चुनौतियां इसके नकारात्मक पक्ष हैं। इसीलिए आवश्यकता है इस बात की कि मानव विवेक, नैतिकता और संवेदनशीलता के साथ AI का उपयोग करें। अंत में यही कहा जा सकता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव की बुद्धि का विस्तार है, उसका प्रतिस्थापन नहीं। यदि मानव सही दिशा में AI का उपयोग करे तो आने वाला भविष्य ज्ञान, विकास, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो सकता है।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे जय प्रणाम विश्वकर्मा की वार्ता। विषय था मानव सभ्यता का नया आयाम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। अब आइए सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम पर आधारित हमारा प्रोग्राम कल्याणी। इस प्रोग्राम में लीजिए सुनिए डॉक्टर सुंदरम श्री हर्ष से ली गई बातचीत। विषय है अनिद्रा, कारण और उसका निदान।

0: कि भागम भाग जिंदगी में हर तरफ हम तनाव से घिर जाते हैं। हमें चारों ओर सिर्फ अपना काम दिखता है और काम के बोझ के तले हम बहुत चीज़ें भूल जाते हैं और ऐसे में हम भूलते हैं पर्याप्त समय अपने नींद के लिए। सही समय पर हम सो नहीं पाते हैं, सही समय पर हम उठ नहीं पाते हैं और कितना हमें समय सोने के लिए देना चाहिए वो हम दे नहीं पाते हैं। होता क्या है, हम थकान महसूस करते हैं और तनाव से घिर जाते हैं। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आज का विषय है हमारा अनिद्रा यानी स्लीपलेसनेस। तो एक व्यक्ति को कितना घंटा सोना चाहिए और जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती है क्या कारण है इसका और कौन कौन सी बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर सुंदरम श्रीहर्ष।
1: नमस्कार,
0: साहब स्वागत है। डॉक्टर साहब, अनिद्रा एक कॉमन बीमारी होती जा रही है दिन प्रतिदिन। लोग सही से सो नहीं पाते हैं, बहुत लोग गोलियों का सहारा लेते हैं जो हमारे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो एक स्वस्थ जीवन के लिए कितना घंटा व्यक्ति को सोना चाहिए?
1: अनिद्रा या इंसोमनिया, इसको हमारे मेडिकल भाषा में या अंग्रेजी में कहते हैं इंसोमनिया, नींद ना आना। इसमें इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसको उनीदापन कहते हैं या निंद्रा लोप भी कहते हैं या निंद्रा अभाव भी कहते हैं। ये सारे नींद नहीं आने के अलग अलग नाम हैं। हम सब जानते हैं अच्छी नींद स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है शांतिपूर्ण नींद ही स्वास्थ्य का आधार है। हम लोग तकनीकी बहुत तरक्की कर गए हैं, अब बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन ये तकनीकी तरक्की किस कारण हुई? अपना स्वास्थ्य और नींद को गंवाकर। तो ऐसी तरक्की क्या हमारे लिए एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल नहीं। किसी कारण भी अपना स्वास्थ्य से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। जैसा कि आपने पूछा कितने घंटे सोना चाहिए, जब शिशु या बच्चा जन्म लेता है तो देखते हैं मैक्सिमम समय वो सोए रहता है 18 से 20 घंटा, सिर्फ खाने के लिए, थोड़ा देर के लिए पीने के लिए उठता है फिर सो जाता है। तो उन लोग 18 से 20 घंटे सोते हैं। क्यों सोते हैं? उस सोने के दौरान में उनका मानसिक विकास होता है। तो हमारे यंग लोगों में, बड़े लोगों में सोना कम से कम 6 से 10 घंटे सोना जरूरी है। कहते हैं 8 से 10 घंटे सोए तो आपका शरीर का संपूर्ण विकास होगा, शरीर से निगेटिव एनर्जी दूर होगी और शरीर अपने हीलिंग की ओर, अच्छे की ओर, स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ेगा। किसी किसी लोगों में देखा जाता है 6-7 घंटे भी सो के स्वस्थ रहते हैं। ये इंडिविजुअल वेरिएशन है, कई लोगों को 8 से 10 घंटे, तो ऑन एन एवरेज कहते हैं 8 घंटे सोना चाहिए या कम से कम सप्ताह में 3 दिन तो भरपूर नींद लेना ही चाहिए, वरना आप बहुत सारे मानसिक रोगों के शिकार आगे चल के हो सकते हैं।
0: सही से नींद हम नहीं निकाल पाते हैं, सही से हम सो नहीं पाते हैं तो कौन कौन सी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है?
1: पहले हमको जानना है कि नींद नहीं आने के मरीज कैसे आपको लक्षण लेके आएंगे। कुछ लोग पढ़े कहेंगे डॉक्टर साहब मुझे नींद शुरू में नहीं आती है लेकिन एक बार सो जाता हूँ तो ठीक से आती है। कई लोग कहता हूँ सो तो जाता हूँ सर लेकिन रात में बीच में उठ पाता हूँ, वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं नींद को। कई लोग सो भी जाते हैं, कुछ हद तक मेंटेन करते हैं लेकिन फिर सुबह उठ जाते हैं अर्ली मॉर्निंग। तो नींद नहीं आने के ऑनसेट मेंटेनेंस और तुरंत उठने की बीमारी होती है। कई लोग इसके बाद कहते हैं सर मैं पूरा सोता हूँ फिर भी हमको थकान महसूस होती है। ये सब इंसोमनिया के ही लक्षण में आते हैं जो मरीज आके शिकायत करता है। मरीज शिकायत करने के बाद अगर ये नहीं, अगर इसका ध्यान दिया जाए तो ऐसे मरीज एंग्जाइटी और डिप्रेशन और तरह तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में चले जाते हैं। इन सब के निदान के लिए आपको चिकित्सक परामर्श लेने की अत्यंत आवश्यकता है।
0: कुछ व्यक्ति स्वतः ही दवा लेकर अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, वो कितना हद तक जायज है?
1: ओवर द काउंटर मेडिसिन सरासर गलत है, खासकर नींद की मेडिसिन ना लें। अच्छे फार्मासिस्ट, अच्छे दुकान वाले कभी भी किसी मरीज को बिना प्रिस्क्रिप्शन के नींद के दवा नहीं देती है। ऐसा नहीं मेट्रो में, ऐसा अपने झारखंड में भी कई दुकान पर जाइए, आप मांगिए आपको नींद की दवा नहीं देगी। नींद की दवा लेना क्यों जरूरी है? अगर कोई आदमी प्रॉपर तरीके से सोता नहीं है तो कार्य क्षमता पे असर पड़ता है। तो कभी कभी किसी को शॉर्ट टर्म इंसोमनिया, थोड़े दिन के लिए अनिद्रा जो दिनों से 2-3 हफ्तों तक रहता है, दीर्घकालीन अनिद्रा जो क्रोनिक इंसोमनिया कहते हैं जो महीनों सालों भर रहता है, तो शॉर्ट टर्म इंसोमनिया जो साइकिल चेंजेस, किसी का ड्यूटी शिफ्ट हो गया, प्लेन से एक जगह से इधर गए, जेट लैग हो गया, जिसमें शॉर्ट टर्म इंसोमनिया होते, कुछ इन्फेक्शन के कारण हो गया, कभी किसी को चोट लग गई, पेन के कारण हो गया, तो शॉर्ट टर्म इंसोमनिया उपचार करने से स्वतः दूर हो जाती है। लेकिन क्रोनिक जो दीर्घकालीन इंसोमनिया होती है, उसमें लगातार अगर वर्क शिफ्ट हो गया, उसमें कभी अच्छी नींद आ रही, कभी ख़राब नींद आ रही, कभी अच्छी, तो साल भर उसको नींद की साइकिल डिस्टर्ब रहती है। इसको वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ स्लीप कहते हैं, जिसके मल्टीपल कारण है, बहुत सारे कारण हैं, जिसमें मुख्यतः नेजल एलर्जी, साइनोसाइटिस, अगर नाक का इन्फेक्शन रहा, जीआई रिफ्लेक्सेस हुए, हाइपरथायरॉइड के मरीज को, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के मरीज को, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, पार्किंसनिज, ज्वाइंट प्रॉब्लम, अर्थराइटिस, सांस के मरीज को, और कुछ लोगों को मेंटल डिसऑर्डर में भी नींद की, क्रोनिक नींद की प्रॉब्लम होती है। तो नींद की प्रॉब्लम में ओवर द काउंटर दवा लेने से पहले अपने चिकित्सक से मिलें, वो आपको तरह तरह के तरीके बताएंगे जिससे आप प्रॉपर नींद ले सकें। सर्वप्रथम हम नींद लेने जाते हैं तो हम शारीरिक परिश्रम नहीं करते हैं, इसलिए हम लोगों को नींद नहीं आती है। तो अगर आप एक्सरसाइज या शारीरिक परिश्रम करेंगे तो आपको सही नींद आएगी। और एक और नया कंसेप्ट अभी डेवलप किया है कि पुअर स्लीप हाइजीन, मतलब सोने वाले जगह को हम स्लीप के अनुसार लाइट नहीं रखते हैं, ज़्यादा लाइट रखते हैं, शोर शराबा रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखते हैं, टीवी चलते रहेगा, ऐसे माहौल में नींद नहीं आएगा। कई लोग सोने से पहले नहा लेते हैं तब भी नींद नहीं आएगा, चाय कॉफ़ी धूम्रपान का सेवन करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ये सब भी नींद में डिस्टर्बेंस पैदा करती है, तो इन सब से हम बचें। कभी कभी रात में अगर 20 मिनट से ज़्यादा नींद टूट गया, उठ गए, तो अपने माइंड को डिस्ट्रक करें, दूसरे चीज़ में लगाएं, कुछ पढ़ने लगे, नहीं लगे, कुछ क्रिएटिव वर्क करने लगे, फिर धीरे धीरे थोड़ी देर बाद आपको नींद स्वतः आ जाएगी। तो ये सब बिहेवियर और साइकोलॉजिकल चेंज करके हम अपने एंग्जाइटी को और नींद की समस्या को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, तनाव का नींद से गहरा संबंध है। कहते हैं किसी व्यक्ति को तनाव हो गया या हम तनाव से घिर जाते हैं तो रातों की नींद हराम हो जाती है। तो ऐसे समय व्यक्ति क्या करे, किस तरह के उपाय अपनाए, क्या क्या जतन करे वो कि उसको सही से नींद आए?
1: आपने सही समय पूछा। आज की समस्या तनाव और स्ट्रेस की समस्या है, दिन चूहे की दौड़ है, हम लोग 99 के चक्कर में भागे जा रहे हैं। ये चक्कर कब ख़त्म होगा पता नहीं, यही तनाव को जन्म देता है। तो अपने लाइफ का उद्देश्य और कार्य को निश्चित करें और बहुत ज़्यादा आगे पीछे दौड़े नहीं, और योगा और एक्सरसाइज पर ध्यान दें, आउटडोर एक्टिविटीज़, मतलब कहने का है शारीरिक परिश्रम करें, जिससे कि आपको थकान होगी और खुद नींद आएगी और सोने का

0: जगह जैसे मैं बताया शांत और आरामदायक वातावरण रखें जिससे नींद आए, और जो भी चीज़ आपको एंग्जाइटी करती है उससे दूर भागें, उससे बचें, उसमें इन्वॉल्व नहीं हों। अगर इसके बाद भी समस्या बनी रहती है तो चिकित्सक से परामर्श रह के उसके अनुरूप हर को अलग अलग तरह की दवाई दी जाती है, जो आप दवा का सेवन कुछ दिनों तक कम मात्रा कम डोजेज में आप प्रयोग कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, रात्रि के भोजन के कितने समय उपरांत व्यक्ति को शयन कक्ष में चला जाना चाहिए?
0: रात्रि के भोजन के 1 से 2 घंटे के भीतर आपको शयन कक्ष में चले जाए। तुरंत इसलिए नहीं जाना चाहिए कि आप थोड़ा एक्टिव रहेंगे तो फूड मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगा। उसके आधे घंटे बाद आपने सोने के बेड पे चले जाए, जो बेड आरामदायक रहे। ऐसा नहीं रहे कि बेड गंदा रहे, सामने टीवी चलता रहे, लाइट जलता रहे, कम वातावरण में जिसको जैसा सुचार, किसी को कम लाइट रहती, किसी को बिल्कुल लाइट नहीं पसंद नहीं रहती है, उस वातावरण बना के जिसको स्लीप हाइजीन कहते हैं मेंटेन करके आप धीरे धीरे सो सकते हैं। एक अंग्रेजी में लाइन है, इफ़ यू कैनॉट स्लीप यू कैनॉट हील। अगर आप सोएंगे नहीं तो स्वस्थ और हील नहीं होंगे, इसलिए सोना बहुत ज़रूरी है। अपने लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज को ध्यान दें, डाइट को ध्यान दें, गलत आदतों से बचें और सही नींद लें, और आप सही लंबी आयु को प्राप्त करेंगे अगर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे।
1: हम तनाव से दूर रहें और सही वक्त पर हम यदि सो जाते हैं और पर्याप्त समय यदि हम अपनी नींद को देते हैं तो हमारे कार्य क्षमता में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। हम अधिक समय तक काम कर पाएंगे और जो भी हम कार्य करेंगे वो दक्षतापूर्वक हम कर पाएंगे।
0: बिल्कुल सही।
1: डॉक्टर सुंदरम श्रीहर्ष, आज आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: श्रोताओं, कल्याणी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सुंदरम श्रीहर्ष से ली गई बातचीत, विषय था अनिद्रा, कारण और निदान। बातचीत कर रहे थे संजीव कुमार लाल, FM 103 MHz पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। सुनते हैं फिल्मी गीतों का प्रोग्राम चित्र।

ये प्रोग्राम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं लता मंगेशकर और पंकज उदास की आवाजों से। गीतकार हैं अंजान और संगीतकार बपी लहड़ी। फिल्म का नाम है घायल।

घायल फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और पंकज उदास की आवाज़ों में। गीत के बोल थे अनजान और संगीतकार थे बापी लहड़ी। अब भाई सुनते हैं राहत इंदौरी का लिखा हुआ गीत, संगीतकार है अनु मलिक, फिल्म का नाम है घातक, आवाज़ें हैं सुरेश वाडेकर और साधना।

सुरेश वाडेकर और साधना सरगम की आवाज़ों में आप सुन रहे थे गाथा फिल्म का गीत। बोल थे राहत इंदौरी की और संगीतकार थे अनु मलिक। एक बार फिर से सुनते हैं अनु मलिक के संगीत निर्देशन में समीरी का लिखा हुआ गीत। गायक कलाकार हैं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल। फिल्म का नाम है घर वाली बाहर वाली।

घर वाले ही और बाहर वाले। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल और अनु मलिक की आवाज़ों में। गीतकार थे समीर और संगीतकार अनु मलिक। अब आइए सुनते हैं इतिहास फिल्म का गीत। आवाज़ें हैं अलका याग्निक और सुखविंदर एवं शंकर महादेवन की। बोल हैं समीर के और संगीतकार हैं दिलीप सेन समीर सेन। दीजिए सुनिए इतिहास फिल्म का यह गीत।

नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा और आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का प्रोग्राम चित्रपट से। लीजिए सुनिए, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अनुराधा पटवाल की आवाज़। फिल्म है नगीना, गीत के बोल आनंद बख्शी के और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारे।

लीजिए सुनिए, श्रेया घोषाल की आवाज़ है बोल नीलेश मिश्रा की और संगीतकार है अनु मलिक। फिल्म का नाम कृष्णा कार्टेज़।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गंगा जमुना सरस्वती फिल्म का गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ में बोल थे इंदिवर के और संगीतकार थे अनु मलिक। तो इसी के साथ ही हमारा आज का फिल्मी गीतों का प्रोग्राम चित्रपट से समाप्त होता है। शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहाँ से आप सुनिएगा कुछ ही पलों में समाचार संध्या, न्यूज 8 और उर्दू में खबरें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली

0: खराबी। सेना और एसडीआरएफ की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: पद्म विभूषण डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
0: पद्म भूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
2: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथधारी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल, भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
3: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस एंड
4: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है। इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
3: फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फॉरेन एक्सचेंज।
0: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
5: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
6: Several key agreements were signed.
7: यात्रा के दौरान

0: कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
1: Again, given a boost to our defense partnership with UAE.
2: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया, उर्वरक
3: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुँच चुकी है।
4: Like metric tons of imports have reached our shores.
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गईं और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दो दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
3: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: वियतनाम में एशिया 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमानगेल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेरजोत पोयनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, अब आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन अशतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादिका डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरम मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. President Draupadi Murmu presents Padma Awards 2026 at Rashtrapati Bhavan. Noted film actor late Dharmendra and legendary violin maestro Dr. N. Rajam honored with Padma Vibhushan. Finance Minister Nirmala Sitharaman launches initiatives aimed at strengthening MSMEs and accelerate modernization of rural industries. Joint operation underway to evacuate stranded tourists at Gulmarg following technical fault in

0: Myanmar following technical fault in cable car system concludes. All tourists rescued safely. Foreign ministers of India, Australia, Japan and US to participate in Quad meeting in New Delhi tomorrow. IMD forecasts severe heatwave conditions over Haryana, Delhi, Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan during next 2 to 3 days. And in wrestling, Indian grapplers Vicky and Akshay Dhere clinched gold in men's freestyle category at Asian Under 23 Championships in Vietnam. That's all in the news at 9. Good night. Operation to evacuate stranded tourists at Gulmarg following technical fault in cable car system concludes. All tourists rescued safely. Foreign ministers of India, Australia, Japan and US to participate in Quad meeting in New Delhi tomorrow. IMD forecasts severe heatwave conditions over Haryana, Delhi, Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan during next 2 to 3 days. And in wrestling, Indian grapplers Vicky and Akshay Dhere clinch gold in men's freestyle category at Asian Under 23 Championships in Vietnam. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमी मेहमान। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आज पद्म अवार्ड 226 पेश किए। मारूफ फिल्म अदाकार आजहानी धर्मेंद्र और शोहरा आफाक वायलिन की माहिर उस्ताद डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से नवाजा गया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने MSMEs को मुस्तहकम करने और देही सनअतों की जदीद कारी में तेज रफ्तारी लाने की गरज से कई स्कीमों का इफ्तिताह किया है। गुलमर्ग केबल कार सिस्टम में तकनीकी खराबी के बायस वहां फंसे सयाहों को बहिफाजत निकालने के लिए मुश्तरका कार्रवाई जारी है। सभी 300 सयाहों को बहिफाजत निकाल लिया गया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के वज़राए खारजा नई दिल्ली में कल क्वाड मीटिंग में हिस्सा लेंगे। महकमा मौसमियात ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इंतहाई शदीद गर्मी की पेशगोई की है। और कुश्ती में भारत के पहलवान विकी और अक्षय धीरे ने वियतनाम में 23 साल से कम उम्र की एशियन चैंपियनशिप में मर्दों के फ्री स्टाइल जुमरे में सोने के तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा सिविल इन्वेस्टर तकरीब में साल 2026 के लिए 66 अहम शख्सियात को आज पद्म अवार्ड से नवाजा। इनमें से 2 को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 शख्सियात को पद्मश्री से नवाजा गया। तकरीब के दौरान नायब सदर CP राधा कृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वज्रा अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत और HD कुमारास्वामी इस मौके पर मौजूद थे। मारूफ फिल्म अदाकार धर्मेंद्र सिंह देओल को फन के शोबे में उनकी खिदमात के लिए बाद अजमर पद्म विभूषण से नवाजा गया। अदाकार की अहलिया और लोकसभा की मेंबर पार्लियामेंट हेमा मालिनी ने ये अवार्ड हासिल किया।
2: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
1: भारत की शोहरा आफाक वायलिन की माहिर उस्ताद डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से नवाजा गया। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: पद्म भूषण के जुमरे में उत्तराखंड के साबिक वजीर आला और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को अवामी उमूर के शोबे में उनकी खिदमात के लिए ये अवार्ड दिया गया, जबकि विजय कुमार मल्होत्रा को बाद अजमर्ग अवामी खिदमात के जुमरे में इस अवार्ड से नवाजा गया। शतावधानी डॉक्टर आर गणेश को फनून लतीफा के शोबे में, जबकि एडवर्टाइजिंग से वाबस्ता पीयूष पांडे को बाद अजमर्ग ये अवार्ड दिया गया। सनतकार उदय सुरेश कुमार कोटक को तिजारत और सनत के शोबे में खिदमात के लिए और डॉक्टर कल्लीपट्टी रामास्वामी पलानी स्वामी को अद्वियात के शोबे में खिदमात के लिए अवार्ड दिया गया। पद्मश्री का एजाज हासिल करने वालों में भारत की ख्वातीन क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर भी शामिल हैं। 2026 के लिए सदर जमहूरिया ने 131 पद्म अवार्ड मंजूर किए थे, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड शामिल हैं। बाकी पद्म अवार्ड तकरीब

0: दूसरे मरहले में दिए जाएंगे जो बाद में मुनक्किद होगी। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीरुल फरीद।
1: मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज अंग्रेजी हर्फ एफ से शुरू होने वाली तीन चीजों के नामों पर मजीद तवज्जो मरकूज करने की जरूरत को उजागर किया है। ये तीन चीजें हैं ईंधन, कीमियावी खाद और जर मुबादला। इन दिनों जारी मगरबी बहरान की सूरत हाल के दौरान उन्होंने ये बात कही है। वजीर खजाना ने वाजह लफ्जों में अलबत्ता ये भी कहा कि भारतीय मीशत ने मजाहमती सूरत हाल बरकरार रखी है। भारत के छोटी सनतों की तरक्यात से मुतल बैंक सिडबी के क्याम के 37वें साल के मौके पर मुंबई में एक तकरीब से खिताब करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कलीदी नौयत के कई पोर्टल और स्कीमों का इफ्तिताह किया, जिनका मकसद MSMEs के निजाम को मुस्तहकम करना, मुल्क के दूर दराज हिस्से तक क्रेडिट डिलीवरी को वसत देना और देही सनतों की जदीदकारी के काम को तेज रफ्तारी अता करना है। जिन स्कीमों का आज आगाज किया गया उनमें सिडबी मैकफिन मार्ट शामिल है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद MSMEs को तआवुन देना है। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि भारत का पॉलिसी रद्द अमल पूरी देखभाल के साथ इस तरह तैयार किया गया है कि आलमी चैलेंजों के बावजूद मुल्क की तरक्की का तहफ्फुज़ किया जा सके। भारतीय फौज और कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त करने वाली कौमी फोर्स NDRF और रियासती फोर्स SDRF जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग गंडोला में राहत और बचाव की एक कार्रवाई की सरबराही में शामिल थे। गंडोला केबिर कार के निजाम में तकनीकी खराबी के बाद ये कार्रवाई की गई। बेस स्टेशन और फेस वन के दरमियान खिदमात के अचानक मुअत्तल हो जाने के सबब पैदा होने वाली खराबी के बायस आज कई सयाह वहां फंस गए थे। एक बयान में भारतीय फौज ने कहा है कि मकामी हुक्काम की तरफ से मिली इत्तला के बाद राहत और बचाव टीमें जाय मौका पर फौरन पहुंच गईं। भारतीय फौज के मुताबिक तकनीकी खराबी के बायस कुल 65 केबल कारें मुतासिर हुई थीं। इसमें मजीद कहा गया है कि बचाव टीमों ने सभी 300 सयाहों को बहिफाजत महफूज मकाम तक पहुंचा दिया है। इधर तकनीकी टीमें इस खराबी का जायजा ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट इम्तिहान मुनक्किद किए जाने के सिलसिले में बार बार होने वाली गलतियों पर तश्वीश का इजहार किया है और कहा है कि यह अफसोसनाक बात है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पेपर लीक के इससे पहले के तनाजों से कोई सबक नहीं लिया। जस्टिस PC नरसिम्हा और आलोक आराधे पर मुश्तमिल एक बेंच ने मरकज, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA और CBI से उन दरखास्तों पर जवाब तलब किए हैं जिनमें इस टेस्टिंग एजेंसी की जगह मेडिकल दाखिले का इम्तिहान मुनक्किद कराने के लिए किसी ज्यादा वसी तजर्बे वाले और खुद मुख्तार इदारे को मुकर्रर किए जाने का मुतालबा किया है। अदालत ने NTA को हिदायत दी है कि वह जुमेरात तक एक हलफनामा दाखिल करे जिसमें एजेंसी के कामकाज को चुस्त दुरुस्त करने से मुतालिक इसरो के साबिक सरबरा के राधा कृष्णन की सदारत वाली एक कमेटी की जानिब से पिछले साल दाखिल करदा सिफारिशात पर अमल आवरी की तफसीलात पेश की जाए। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को NEET UG 2026 के अगले माह की 21 तारीख को होने वाले दोबारा इम्तिहान को महफूज, सिक्योर और कामयाबी के साथ मुनक्किद कराने के सिलसिले में एक खत लिखा है। जनाब प्रधान ने मुल्क भर के तमाम वज़राए आला, लेफ्टिनेंट गवर्नरों और एडमिनिस्ट्रेशन को खत लिखकर इस सिलसिले में उनका तआवुन तलब किया है। मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा ने इबोला वायरस से होने वाली बीमारी की रोकथाम के सिलसिले में तैयारियों और निगरानी के इकदाम का आज नई दिल्ली में जायजा लिया। वजारत के सीनियर एहलकारों के साथ मीटिंग के दौरान जनाब नड्डा ने हिदायत दी कि दाखिले के तमाम पॉइंट्स जिनमें हवाई अड्डे, बंदरगाहें और जमीनी सरहदें शामिल हैं पर जाँच पड़ताल के इंतजाम होने चाहिए। उन्होंने एहलकारों से यह भी कहा कि वह पूरी तरह मुस्तैद और चौकस रहें। आलमी सेहत तंजीम WHO ने इबोला वबा को बैनुल अक्वामी तशवीश की अवामी सेहत से मुतालिक एक इमरजेंसी करार दिया है। मरकजी वजारत सेहत ने वजाहत की है कि अब तक मुल्क में इबोला के किसी मामले की कोई इत्तला नहीं है। कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA ने आज जम्मू कश्मीर में कलदम जमात इस्लामी तंजीम से मुंसलिक दहशतगर्दी की माली मुआवनत के एक मामले में 3 मकाम पर तलाशी की कार्रवाई की। कश्मीर के श्रीनगर और शोपियां जिलों में 3 मकाम पर की गई तलाशी की कार्रवाई के दौरान कई काबिल एतराज दस्तावेजात اور الیکٹرانک آلات برآمد ہوئے، جس کے بارے میں شبہ ہے کہ ان کا تعلق ریاست میں جماعت اسلامی اور اس کے متعدد ٹرسٹ اور تنظیموں کی سرگرمیوں سے ہے۔ ایجنسی کے مطابق اب تک کی تفتیش سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ ممنوعہ تنظیم وادی کشمیر اور ملک کے دیگر حصوں میں دہشت

0: गर्दी के लिए फंड इकट्ठा करने और दहशतगर्दी को फरोग देने में सरगम रही है। ये तंजीम तालीम और सेहत जैसी फलाही सरगर्मियों के नाम पर अंदरून और बैरून मुल्क से चंदा इकट्ठा करने के काम में मुलव्विस थी। ये आकाशवाणी है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर नई दिल्ली में कल क्वाड वजराय खारजा की मीटिंग की मेजबानी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के वजीर खारजा पैनी वॉन्ग, जापान के वजीर खारजा तोशी मिसो मोतेगी और अमरीका के वजीर खारजा मार्को रोबियो इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। वजरा तमाम तरजीही शोबों में क्वाड तआवुन को फरोग देने, इन दिनों जारी क्वाड स्कीमों की पेशरफ का जायजा लेने और भारत बहरुल काहिल खित्ते में रूनुमा होने वाली हालिया तब्दीलियों पर इजहार ख्याल समेत बाहमी नौयत के दीगर बैनुल अक्वामी मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। एक आज़ाद और खुले भारत बैरुल काहिल के क्वाड तसव्वुर के पेश नज़र वुज़रा पिछले बरस 1 जुलाई को वाशिंगटन डीसी में हुई तबादले ख्याल को आगे बढ़ाएंगे। हमारे नुमाइंदे ने इस सिलसिले में ये रिपोर्ट पेश की है। इस बरस वज़राए खारजा की मीटिंग आलमी गैर यकीनी और मगरबी एशिया के बहरान के वक्त मुनक़िद हो रही है। भारत, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान पर मुश्तमिल क्वाड एक अहम ग्रुप के तौर पर उभरा है, जिसकी ज्यादातर तवज्जो भारत बहरुल काहिल खित्ते में अमन सलामती और इस्तेहकाम है। इत्तेहाद के मौजूदा सदर की हैसियत से भारत ये मीटिंग मुनक़िद कर रहा है। क्वाड मुल्क इस अज़्म के साथ यकजा हुए हैं कि पूरी दुनिया की बेहतरी और एक खुले, आज़ाद और सबकी शमूलियत वाले भारत बहरुल काहिल खित्ते को ताउन देने की गरज से एक ताकत के तौर पर काम करेंगे और इसे एक ऐसा खित्ता बनाएंगे जो खुशहाल और मुजाहिम हो। क्वाड ने एक मुस्बत और अमली एजेंडा अख्तियार किया है, जिसमें हम असर मसाइल और चैलेंजों पर तवज्जो दी जा रही है। इन मामलों में सेहत से मुतालिक सिक्योरिटी, आबो हवा की तब्दीली, अहम और भारतीय और उभरती हुई टेक्नोलॉजी और इलाकाई ममालिक के दरमियान समंदरी सरहद के निज़ाम से मुतालिक बेदारी को मुस्तहकम करना शामिल है। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज हिमाचल प्रदेश में 1947 किलोमीटर तवील कौमी शाहराह प्रोजेक्ट के मेयार और देखभाल की पेशरफ का जायजा लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गडकरी ने जमीनी सतह पर अमल दरामद में तेजी लाने, मेयार की निगरानी को मजीद मौसर बनाने और असासों की पायदारी को बढ़ाने के लिए जदीद तामीराती तरीक़ेकार इख्तियार करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने सफरी मेयार को बेहतर बनाने और अहम राहदारियों में बिला रुकावट रबते को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। सरकार मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की बिला रुकावट सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। मगरबी एशिया में हालिया सूरत हाल के बारे में आज नई दिल्ली में मुनाकिदा बैन वजारती मीटिंग से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि मुल्क में LPG की रिफाइनरी प्रोडक्शन बढ़ाकर 50,000 टन योमिया कर दी गई है।
1: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय सिफारतखाना और कौंसुलेट भारतीय बिरादरी की खैर आफियत के लिए उनसे राबते में है। दिल्ली जमखाना क्लब के मेंबरान ने आज मरकज के उस हुक्म के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू किया है, जिसमें क्लब से कहा गया था कि वो अगले माह की 5 तारीख तक जमखाना की इमारत हुकूमत के सुपुर्द कर दें। अदालत ने इस मामले की समाअत के लिए कल की तारीख मुकर्रर की है। दिल्ली की एक अदालत ने आज कांग्रेस लीडर अलका लांबा को 2024 में जंतर मंतर पर एक एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकार पर हमले से मुतालिक एक मामले में कसूरवार करार दिया है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्वनी पंवार ने लांबा को कसूरवार करार दिया और सजा के मुतालिक दलाइल की समाअत के लिए 5 जून की तारीख मुकर्रर की है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक गर्म रात की सूरत हाल रहने से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद से शदीद गर्म लहर की सूरत हाल रहने के बारे में पेशगोई की है। छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और उत्तराखंड में भी कल तक इसी तरह की सूरत हाल रहने का इम्कान है। वियतनाम के दा नांग

शहर में एशियाई अंडर 23 रेसलिंग चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवानों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के दो तमगे हासिल किए हैं। 57 किलोग्राम के फ्री स्टाइल जुमरे में अक्षय तनाजी धीरे ने अपने हरीफ येलामेन को 2 के मुकाबले 4 से हराकर टॉप पोजीशन हासिल की। 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल जुमरे में विकी ने शेरजोत को सख्त मुकाबले में 5 के मुकाबले 7 से हराकर सोने का तमगा हासिल किया। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आज पद्म अवार्ड 2026 पेश किए। मारूफ फिल्म अदाकार आजहानी धर्मेंद्र और शोहरा आफाक वायलिन की माहिर उस्ताद डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से नवाजा गया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने MSMEs को मुस्तहकम करने और देही सनतों की जदीदकारी में तेज रफ्तारी लाने की गरज से कई स्कीमों का इफ्तिताह किया है। गुलमर्ग केबल कार सिस्टम में तकनीकी खराबी के बाइस वहां फंसे सयाहों को बहिफाजत निकालने के लिए मुश्तरका कार्रवाई मुकम्मल हो गई है। सभी 300 सयाहों को बहिफाजत निकाल लिया गया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के वज़राए खारजा नई दिल्ली में कल क्वाड मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता से लेकर आज के फनकार। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है संगीतकार लक्ष्मीकांत पर। लक्ष्मीकांत की चर्चा प्यारे लाल के बगैर अधूरी है। जब जब लक्ष्मीकांत के गानों का जिक्र होता है तब तब प्यारे लाल का नाम भी आता है। इस जोड़ी ने हिंदी सिनेमा में बेमिसाल गाने दिए।

मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत शांताराम कुदालकर का जन्म 3 नवंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। लक्ष्मीकांत दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के दिन पैदा हुए थे तो परिवार ने उनका नाम लक्ष्मीकांत रख दिया, इस उम्मीद से कि एक दिन लड़का अपने नाम को सार्थक करेगा। लक्ष्मीकांत का बचपन मुंबई के विले पार्ले की झोपड़पट्टी में गरीबी में बीता। 9-10 साल की उम्र में उनके पिता नहीं रहे थे। लक्ष्मीकांत और उनके बड़े भाई ने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए संगीत सीखना तय किया। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन सीखने लगे और उनके बड़े भाई तबला। लक्ष्मीकांत ने 2 बरस तक हुसैन अली से फिर बाल मुकुंद इंदौरकर से मैंडोलिन की तालीम ली। बाद में हिंदी फिल्मों की पहली मशहूर संगीतकार जोड़ी हुस्न लाल भगत राम के हुस्न लाल के पास जाकर वायलिन बजाना सीखने

40 और 50 के दशक में हुस्नलाल भगतराम के शागिर्दों में सिर्फ लक्ष्मीकांत ही नहीं थे, शंकर जयकिशन, खयाम जैसे संगीतकार और महेंद्र कपूर जैसे गायक भी थे। लक्ष्मीकांत की मुलाकात प्यारे लाल से रेडियो क्लब कोलाबा में लता मंगेशकर के एक संगीतमय कार्यक्रम के दौरान हुई थी। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन बजाते थे, प्यारे लाल वायलिन वादक थे और महान वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन के वे भक्त थे। लता मंगेशकर ने दोनों की प्रतिभा को देखते हुए अपने भाई हृदयनाथ के ग्रुप में उन्हें बजाने का मौका दिलवाया और इसके साथ ही एसडी बर्मन, सी रामचंद्र, मदन मोहन, शंकर जयकिशन जैसे कई संगीतकारों से दोनों की सिफारिश भी की, लिहाजा उन्हें वादक के रूप में छिटपुट काम मिलने लगा था। पहले इस जोड़ी ने चेन्नई जाकर अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वहां रास नहीं आया, इसलिए दोनों लौटकर मुंबई आ गए। प्यारे लाल ने अपने पिता से वायलिन बजाना सीखा। उनका सपना वियना जाकर किसी सिंफनी ऑर्केस्ट्रा में काम करने का था। उन्होंने खुद को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर संगीतकार बनने का सपना देखने वाले लक्ष्मीकांत को भरोसा था कि एक दिन वो संगीत के आसमान में चमकते सितारे के रूप में निकल

के रास्ते अलग अलग होने जा रहे थे, लेकिन दोस्ती ने जोर मारा और लक्ष्मीकांत जिद पर अड़ गए। उन्होंने किसी तरह प्यारे लाल को देश छोड़कर जाने से रोका। अपने दोस्त की जिद देखकर प्यारे लाल ने भी वियना जाने का विचार छोड़ दिया। इस तरह लक्ष्मीकांत को दोस्त मिल गया और प्यारे लाल को अपना देश नहीं छोड़ना पड़ा। दोनों की ये दोस्ती उनकी ही फिल्म दोस्ताना में मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के गाए गाने सलामत रहे दोस्ताना हमारा दोस्ती का कालजयी गीत बन गया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वादक से सहायक बने, फिर अरेंजर, उसके बाद फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करने लगे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने असिस्टेंट के तौर पर सट्टा बाजार, छलिया, दिल भी तेरा हम भी तेरे और मदारी जैसी कई फिल्मों में काम किया। काम के सिलसिले में उनकी मुलाकात भोजपुरी फिल्मों के निर्माता के परवेज से हुई, जिन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी को 4 फिल्मों में संगीत देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से इनमें से किसी भी फिल्म में उन्हें म्यूजिक देने का मौका नहीं मिला।

1963 में एक छोटे बजट की फिल्म पारस मणि उन्हें मिली तो उनके शुभचिंतकों ने उन्हें समझाया कि छोटे बजट की फिल्म से उनका करियर खराब हो सकता है, लेकिन ये फिल्म सुपर हिट हुई। इसका गाना हंसता हुआ नूरानी चेहरा लोगों की जुबान पर चढ़ गया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सुरीला सफर शुरू हो गया।

1964 में इस जोड़ी को राष्ट्रीय प्रोडक्शन की छोटे बजट की फिल्म दोस्ती मिली। इसी साल उनके प्रेरणा स्रोत रहे शंकर जयकिशन राज कपूर की भारी बजट की फिल्म संगम से फिल्म जगत में धूम मचा दिया। संगम और दोस्ती फिल्म फेयर पुरस्कारों की दौड़ में शामिल थी, पर बाजी मारी फिल्म दोस्ती ने।

संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीतकार जोड़ी बॉलीवुड की अब तक की सबसे सफल जोड़ियों में से एक मानी जाती है। इन दोनों की जोड़ी को 7 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1965 में फिल्म दोस्ती के लिए मिला फिल्म फेयर पुरस्कार, सन 1968 फिल्म मिलन, सन 1970 फिल्म जीने की राह, सन 1978 में मिला फिल्म फेयर पुरस्कार अमर अकबर एंथनी के लिए, सन 1969 फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम, सन 1980 फिल्म सरगम, सन 1981 कर्ज।

जाने माने निर्माता निर्देशक सुभाष घई की कई फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेमिसाल संगीत दिया। सन 1969 में आई फिल्म गौतम गोविंदा, सन 1980 की फिल्म कर्ज, 1982 की फिल्म विधाता, सन 1983 की फिल्म हीरो।

सन 1985 में आई फिल्म मेरी जंग। सुभाष घई के साथ कुछ और फिल्में भी हैं, जैसे कर्मा, रामलखन, खलनायक, सौदा।

मनोज कुमार की फिल्मों में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेजोड़ संगीत दिया। सन 1972 में आई फिल्म शोर, सन 1976 में आई थी फिल्म 10 नंबरी, सन 1974 की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, सन 1981 में आई फिल्म क्रांति में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेमिसाल संगीत दिया। राज कपूर की फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने बेमिसाल संगीत दिया। फिल्म बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम और प्रेम रोग, इन फिल्मों में इनके संगीत का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था।

संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी की टोली ने एक से बढ़कर एक गाने दिए फिल्म संगीत में, और इसीलिए आप रेडियो पर अक्सर सुनते हैं गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने आनंद बख्शी से कुछ फिल्मों में गाने भी गवाए, जैसे फिल्म मोम की गुड़िया का ये गाना।

फिल्म चरस में गाना गाया आनंद बख्शी ने। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में पान को लेकर ये मशहूर था कि लक्ष्मीकांत जी के लिए पान नहीं तो काम नहीं, ऐसा हिसाब रहता था। इनका पसंदीदा पान कलकत्ते का मीठा पत्ता कम चूने वाला हुआ करता था। किसी भी रिकॉर्डिंग, मीटिंग या स्टेज शो जैसे बड़े प्रोग्राम्स में वो हमेशा अपने साथ एक खूबसूरत डिब्बे में पान रखकर चलते थे। इनके पान की आदत का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब वे नहीं रहे इस दुनिया में, तब लक्ष्मीकांत के परिवार वालों ने उनके इस पसंदीदा पान को होठों से छुआया था अंतिम दर्शन के समय। सन 1998 में लक्ष्मीकांत इस असार संसार से अलविदा कह गए और ये जोड़ी हमेशा के लिए टूट गई। अपने जोड़ीदार लक्ष्मीकांत की अचानक मौत से प्यारे लाल को बड़ा गहरा सदमा लगा। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में संगीत देना छोड़ दिया।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत में जोड़ी की फिल्मों की लंबी फेहरिस्त है, एक से बढ़कर एक गाने हैं। आधे घंटे के इस प्रोग्राम के सफर में सारी फिल्मों और सारे गानों को समेटना बड़ा मुश्किल है। आज बस इतना ही। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मीकांत पर। चलने से पहले आपको बता दें, शोध आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। रात्रि के 10 बजे हैं। सुनते हैं फिल्मी गीतों का प्रोग्राम रजनीगंधा। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं गाइड फिल्म के गाने से। गायिका हैं लता मंगेशकर, बोल शैलेंद्र के हैं और संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन।

गाइड फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। लीजिए सुनिए आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आशा भोसले की आवाज़ है, फिल्म है लोफर।

नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा और आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का प्रोग्राम रजनीगंधा। लीजिए सुनिए गीता दत्त और लता मंगेशकर के साथ मुकेश की आवाज़। फिल्म है जिस देश में गंगा बहती है। गीत के बोल शैलेंद्र के हैं और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

ऑन मिलो सजना, ये नाम है फिल्म का और इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का प्रोग्राम रजनीकांत और मैं हूं संजय सिन्हा। लीजिए सुनिए सूरज फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीत के बोल हंसराज जयपुरी के हैं और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है सूरज।

अभी आप सुन रहे थे सुहाना सफर फिल्म का गीत, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज़ों में। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं चिराग फिल्म का गाना। आवाज़ें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की है, गीत के बोल मजरू सुल्तानपुरी के और संगीतकार हैं।

लीजिए, सुनिए कार्यक्रम के आखिर में लता मंगेशकर की आवाज में समाधि फिल्म का गीत बोल मसरूर सुल्तानपुरी के संगीतकार राहुल देव बर्मन।

श्रोताओं इसी कहने के साथ ही हमारा आज का फिल्मी गीतों का प्रोग्राम रजनीकंदा समाप्त होता है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं, शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचो सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
0: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देश भर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। नेपालगंज में भेरी अस्पताल में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की आशंका है। वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu today conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, two were conferred with Padma Vibhushan, six with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honored with the Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam were also honored with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were also present on the occasion. In Jammu and Kashmir, all tourists stranded in cabins of the Gulmarg Gondola ropeway were rescued safely after a major technical snag halted operations at the famous tourist resort. Officials today said more than 300 tourists were trapped inside 65 cabins of the cable car, some hanging nearly 500 feet above the ground, triggering panic among tourists, including women and children. Emergency evacuation protocols were activated immediately. A massive seven-hour rescue operation was launched jointly by teams of NDRF, SDRF, Jammu and Kashmir Police, Army's Chinar Corps, and local administration. All passengers were brought to safety without any injuries. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha said he monitored the rescue operation continuously and directed senior officials, including the DGP, to oversee rescue efforts on the ground. Chief Minister Umar Abdullah announced a probe into the malfunction and said actions would be taken if any lapses were found. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has launched a set of strategic portals and initiatives aimed at strengthening the MSME ecosystem, enhancing last-mile credit delivery, and accelerating the modernization of rural industries. Speaking at an event in Mumbai to mark the 37th anniversary of the Small Industries Development Bank of India, SIDBI today, Mrs. Sitharaman called for increased focus on the three Fs: fuel, fertilizer and forex amid the ongoing West Asia crisis, while asserting that the Indian economy remains resilient.
1: The West Asia crisis not only is a diplomatic or a geopolitical issue. For businesses and common people, it can mean higher fuel cost, delayed cargo, costlier shipping, shortage of inputs, pressure on working capital and uncertainty in export orders. All of them coming together, it's a big challenge, not just for India, for many other countries. We must also recognize that India's domestic economic situation remains positive and resilient even today.
3: External Affairs Minister Dr. Ajay Shankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi tomorrow. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi, and Secretary of the State of United States Marco Rubio will participate in the meeting. The ministers will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives, and reflect on recent development in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. Home Minister Amit Shah will visit India's border region over the next few days and hold security-related meetings. Sources said he will reach Bikaner, Rajasthan tonight and will visit the BSF's Sancho border outpost in the morning tomorrow, where he will interact with the security forces and inaugurate welfare schemes for them. In the afternoon, he will review the security situation in the border region of Bikaner. Officials said the Home Minister and the Rajasthan government, BSF officials along with the district collectors and superintendent of police from five borders district will attend the meeting. At Asian Under-23 Wrestling Championships in Da Nang, Vietnam, Indian wrestlers put up a dominant show, securing two gold medals today. And that's the end of the news bulletin.
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार FM 103 MHz पर आकाशवाणी का ये डाल

कॉन्फ्रेंस केंद्र है। स्टूडियो के घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल सुबह 5:55 पर हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे।